दाई नासिका बंद कर लें और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। सूक्ष्म व्यायाम अनुलोम विलोम के अंतर्गत 5 मिनट लगातार प्रथम चक्र की भांति ही करना होगा। द्वितीय चक्र सूक्ष्म व्यायाम, दोनों हाथ ऊपर ले जाकर, दोनों हाथ ऊपर ले जाकर आपस में कलाई पकड़कर अंगड़ाई की मुद्रा में दोनों कंधों की तरफ कम से कम दो दो बार स्ट्रेच करें। फिर दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर सर के पीछे लगाकर सर का दबाव हथेली की तरफ और हथेली का दबाव सर की तरफ बनाएं। दायां हाथ दाहिनी कनपटी पर रखकर दबाव बनाएं, बायां हाथ बाईं कनपटी पर रखकर दबाव बनाएं एवं दोनों हाथों की उंगलियां आपस में जोड़कर मत्थे से ले जाकर लगाएं। हाथ से मत्थे पर उसी हाथ को विपरीत बल लगाने पर मेरुदंड में कंपन होने पर छोड़ दें। 3 अभ्यास करें। हाथ घुटनों पर रखकर कंधे का संचालन करें। यह सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज्यादा आवश्यक होता है हमारी शरीर की पूरी नस नाड़ियों के लिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट लगातार प्रथम चक्र की भांति, द्वितीय चक्र, तृतीय चक्र साथ में। सूक्ष्म व्यायाम पैर फैलाकर नी कप सिकोड़ना और छोड़ना, जांघ को नीचे से पकड़कर पैर से साइकिलिंग करना, पैर को गोल दाएं व बाएं घुमाना, तितली आसन करना। लाभ, डिप्रेशन, माइग्रेन तथा आँखों के रोगों में अत्यंत लाभ देता है। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की उपाशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह योगशाला में भी आज मैं जो आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ वो है समय सारणी, मतलब योग की समय सारणी। अब आप सोच रहे होंगे कि योग की समय सारणी क्या होती है। समय सारणी का मतलब होता है कि किस समय कितना और कौन से प्राणायाम को करना है और उसका लाभ भी एक साथ हम आज आपको बताएंगे। प्राणायाम के साथ साथ आसन और सूक्ष्म व्यायाम हम एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले बैठने की विधि, सभी प्राणायाम सिंहासन, सुखासन और पद्मासन में ही करना चाहिए। यदि इन आसन में बैठने में परेशानी हो तो अपनी सुविधा अनुसार आसन में बैठ सकते हैं। तो सबसे पहला आसन जो होता है वो है भस्त्रिका प्राणायाम, 5 मिनट और बच्चों के लिए 2 मिनट। सुविधा अनुसार आसन में बैठकर मुंह बंद रखकर नासिका से लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरें तथा उसी गति से नासिका से श्वास को छोड़ें। फेफड़ों में जब हम श्वास भरेंगे तो उसी गति से हम श्वास को छोड़ेंगे। आइए दोस्तों, अब हम आपको बता दें भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ। दमा, अस्थमा व फेफड़ों से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। साथ ही साथ में आज हम आपको सूक्ष्म व्यायाम भी एक बार ये कराते रहेंगे। उसका कारण पता है आपको, एक प्राणायाम के बाद में एक सूक्ष्म व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए, हमारी मानसिक स्थिति के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। सूक्ष्म व्यायाम, श्वास भरते हुए गर्दन को 5 बार ऊपर नीचे, 5 बार दाएं बाएं, 5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। यानी कुल मिलाकर के ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये हमें सर्वाइकल में बहुत ज्यादा आराम देता है। जिन लोगों को गर्दन में अकड़न रहती है, गर्दन के आसपास एरिया में दर्द रहता है, आप एक जगह काम करते हैं काफी घंटे बैठकर, तो ये देखा गया है कि गर्दन में और पीठ में यानी रीढ़ की हड्डी में अकड़न हो जाती है। जिन लोगों को ये चीजें होती हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सूक्ष्म व्यायाम ये वाला कर सकते हैं जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमाना है। दूसरा समय सारणी में आता है कपालभाति, यानी कपालभाति प्राणायाम। समय लगातार 5 मिनट 1 सेकंड में।

नमस्कार प्रभु प्रेमियों, आप सुन रहे हैं पहली किरण और आज की ये भोर समर्पित है देवों के देव महादेव को। आज है शिवरात्रि, वो रात्रि जो अंधकार को भी प्रकाश बना देती है। बिल्कुल, और आपके साथ में मौजूद है आपकी अपनी आरजे आकांक्षा, जो लेके आ गई है आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम यानी सुबह की पहली पहली भोरे भोरे वाली पहली किरण, जो कि है आपका भक्तिमय कार्यक्रम। आज पर्व वो पर्व है जो महा है, अपने आप में ही महान है, यानी शिवरात्रि, वो रात्रि जिसका इंतजार हमको होता है, प्रकृति को होता है, हर किसी को होता है, हर पशु पक्षी को होता है। और जब बात शिव की होती है तो आदि से अनंत तक सब होता है। तो चलिए उनको याद करते हुए मैं आपको एक वंदना सुनाना चाहूंगी और उसके उपरांत सुनेंगे एक प्यारा सा भजन अपने भोले बाबा के लिए। कर

I'm gonna go to the bathroom.

0: 什么？
1: हाँ जी दोस्तों, आज है शिवरात्रि। शिवरात्रि यानी शिव की रात्रि, वो रात्रि जिसका इतिहास अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है शिवरात्रि। मान्यता है कि इसी दिन शिव जी लिंग रूप में भी प्रकट हुए थे और इस दिन शिव पार्वती का विवाह भी माना जाता है। और खासकर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो हम उत्साह मनाते हैं वो इसी का मनाते हैं, शिव और पार्वती जी के विवाह का। समुद्र मंथन का हलाहल पान भी आज ही के दिन हुआ था। अनादि काल से योगिनियों की रात्रि भी इसी दिन को कहते हैं, है ना। कितना कुछ समेट रखा है शिवरात्रि ने अपने इतिहास में। यह रात्रि अशुभ नहीं बल्कि अशुभता का अंत करने वाली है। और कहीं ना कहीं जिसने अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लिया है वही सच्चा शिव भक्त है। तो चलिए चलते हैं शिव

भाई आज है शिवरात्रि और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम पहली किरण। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। अब बात कर लेते हैं शिवरात्रि के पूजन विधान की। तो शिवरात्रि का पूजन जो होता है वो कई प्रहरों में होता है। विशेषता चार प्रहर माने जाते हैं और चारों प्रहर हम शिव जी का पूजन करते हैं। कुछ लोग इसे निराजल रहकर करते हैं और कुछ लोग इसका उपवास, जो माना जाता है जो बराती है वो खान पान के साथ में, मतलब फलाहार लेके और इस तरह से अपने उपवास को पूर्ण करते हैं। और जो लोग होते हैं कन्या पक्ष के, यानी वर पक्ष ने तो एंजॉय कर लिया बरात में जाके, और जो हमारे कन्या पक्ष के लोग होते हैं वो रखते हैं इस व्रत को निराहार होकर के। चार प्रहर की पूजा होती है, मतलब चारों प्रहर आप इस पूजन का पालन करते हैं। सबसे पहले तो सुबह सुबह उठ के, जितनी सुबह हो सके, 3 बजे अगर कम से कम उठ जाइए, उसके बाद में आप पहले प्रहर की पूजा करते हैं। फिर जब दूसरे प्रहर की बारी आती है तो 12 बजे से पहले, दोपहर 12 बजे से पहले ये हमारी दूसरे प्रहर की पूजा होती है। पूजा आप जैसे करना चाहे वो आपकी इच्छा पर है। वैसे भी भोले बाबा तो बड़े ही भोले हैं, आप जैसे भी पूजा करते हैं वो स्वीकार करते हैं। तीसरे प्रहर की पूजा जो हमारी होती है वो होती है हमारी शाम की पूजा, और उसके बाद में आती है हमारी चौथे प्रहर की पूजा, यानी हमारी रात की पूजा, आधी रात की पूजा, अर्ध रात्रि की पूजा, 12 बजे के करीब की पूजा। और उसके बाद में हम एक पूजा और करते हैं, सुबह सुबह उठ के, भोरे भोरे उठ के अगले दिन भी हम पूजा करते हैं और उसको मानते हैं कि हमारी दक्षिणा स्वरूप पूजा है। इसके अतिरिक्त क्या करना होता है पूजन विधि में, प्रातःकाल स्नान करते हैं, व्रत का संकल्प करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध गंगा जल इत्यादि अर्पण किया जाता है। बेलपत्र विशेषता इसमें अर्पण किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि पहले तो हमारी पार्वती जी ने जब शिव जी के लिए तपस्या की थी, लगातार 16 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की थी, बहुत ही कठोर तपस्या थी। तपस्या कुछ यूं थी कि पहले तो इन्होंने आहार ग्रहण किया, फिर थोड़ा थोड़ा आहार त्यागा, बिल्वपत्र खाने लगी, बिल्वपत्र के बाद में इन्होंने बिल्वपत्र के समुचित नहीं टूटे फूटे रूप को खाना स्वीकार किया। और इसीलिए कहीं ना कहीं हमने देखा है, विशेषता हमारे यहाँ देखा जाता है, भारतीय लोगों में चलन है कि बिल्वपत्र जो है वो टूटा ना हो, कटा पिटा ना हो। लेकिन आपको बता दूं श्रोताओं कि ये हमारे शिव पुराण में लिखित है कि पार्वती जी ने चूंकि इसका चूर्ण भी खाया है, और चूर्ण खा के इस बिल्वपत्र का और अपने पूजन को नियमित रूप से जारी रखा है, तो इसलिए बेल कैसा भी हो हमारे भोले बाबा को समर्पित आप कर सकते हैं, उन्हें बहुत ही प्रिय होता है। उसके बाद में पार्वती जी ने जो हमारे अंगूठे के ऊपर की जगह पाई जाती है, एक गड्ढा होता है जब हम ऐसे हाथ को फैलाते हैं पूरी तरह से, उस जगह पर मात्र पानी जितना आए उतने का ही सेवन करके, केवल जीवन को चारू रूप से जारी रखने के लिए उतने ही पानी का, मतलब एक बूंद पानी या जितना भी आए 2-4 बूंद उतने का ही सेवन करते हुए उन्होंने इस व्रत का पालन किया। कितनी कठोर व्रत का पालन किया तब जाके उन्होंने शिव को प्राप्त किया। जी हाँ, सदाशिव और हमारे शिव भोले भंडारे, इनको प्राप्त करने के लिए इतना सब कुछ हमारी पार्वती जी ने किया। इसके अलावा आप धतूर, आग, भस्म या फिर शमी के पत्र को, अक्षत हो गया, गंगा जल हो गया, आप अपनी स्वेच्छा से जो भी चढ़ाना चाहे चढ़ा सकते हैं। और इन्हें जो नहीं चढ़ता है वो है तांबे के लोटे से दूध नहीं चढ़ता, और इसके अतिरिक्त केवड़े का पुष्प नहीं चढ़ता, इसके लिए विशेष मनाही है, और हल्दी भी नहीं चढ़ती। और अगर आपको हल्दी चढ़ानी भी है, जैसे बोला जाता है कि कुछ जो कुंवारी कन्याएं हैं वो विवाह योग्य हो गई हैं, अपनी इच्छा लेकर अगर भोलेनाथ की पूजा के लिए जा रही हैं, तो वो अर्घे पर, अर्घा माना जाता है हमारी पार्वती जी का स्वरूप, उन पे हल्दी लगा सकती हैं। तो इन सभी विशेष बातों का ध्यान रखिए और मनाइए आज के दिन को बम बम भोले करते हुए महाशिव।

श्रोताओं ओम नमः शिवाय। आज का दिन है शिवरात्रि का। अब चलिए हम आपको सुनाते हैं शिव जी की विवाह की कथा। जी हाँ, जो कि है शिव पुराण से प्रेरित। कहते हैं कि राजा हिमवान की पुत्री थी पार्वती जी, जिन्होंने कठोर तप किया था। नारद मुनि ने भविष्यवाणी की, आपका विवाह शिव से होगा। पार्वती ने हजारों वर्ष तक तपस्या की। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी ही वो दिन था जब आई थी हमारे भोले बाबा की बारात, और बारात इतनी शानदार कि वैसी बारात दोबारा कभी देखी भी नहीं गई। बाराती कैसे थे? बाराती थे भूत प्रेत गण नाग योगी सब के सब। कोई ऐसा नहीं था जो उस विवाह में आमंत्रित ना किया गया हो। माता मैना घबरा गई, पर पार्वती ने कहा, ये बाहरी रूप नहीं, ये ब्रह्म है। कहते हैं सच्चा प्रेम बाहरी रूप नहीं देखता, आत्मा देखता है। और इस दिन के लिए, कुंवारी कन्याओं के लिए जो महत्व है वो मैं आपसे जरूर साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले भोले बाबा की बारात के लिए विशेष भजन। आइए आनंद लेते हैं इसका। बम बम भोले।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका सुबह का सबसे पहला कार्यक्रम यानी पहली किरण। मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा और आज का जो महत्वपूर्ण दिन है वो है शिवरात्रि का। भाई पूरी तरह से आनंद उठाने का दिन है, तो चलिए आनंद के साथ साथ में कुछ विशेष हमारे मनोरथ भी होते हैं जो हम अपने भगवान जी से सिद्ध कराने की आकांक्षा रखते हैं। तो चलिए आकांक्षा ही आपको उस आकांक्षा वाले पथ पर लेके चलती हैं और बताएंगी कि कुंवारी कन्याओं के लिए इस दिन का क्या महत्व होता है। अगर किसी को उत्तम वर की प्राप्ति करनी है तो इस दिन भोले बाबा के पूजन को बहुत ही मन से करें और सच्चे ढंग से करें। कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप भी करें और 108 बिल पत्र का उसके बाद में अर्पण करते रहें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब अगर आप इससे भी ज़्यादा जप करना चाहते हैं आपकी श्रद्धा अनुसार, तो एक लोटे में जल रखें, 108 मंत्र होने के बाद में 108 बिल पत्र चढ़ जाने के बाद में थोड़ा सा जल अर्पित करें, उसके बाद पुनः से इसी प्रक्रिया को जारी रखें। संयम और आत्मबल की शक्ति प्राप्त करनी है तो भी हम भोले बाबा की पूजा करते हैं आज के दिन। मन चाहे जीवन साथी की कामना है तो भी आप भोले बाबा की पूजा करते हैं और पूजा के लिए विशेष मंत्र है ओम पार्वती पतये नमः और ओम गौरी शंकराय नमः, ये भी आप जप कर सकते हैं। ओम पार्वती पतये नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए उत्तम वर प्राप्ति की कामना करें, भोले बाबा जरूर से सिद्ध करेंगे। आइए चलते हैं एक और प्यारे से भजन की ओर और मनाते हैं बम बम भोले करते हुए आज की महाशिवरात्रि।

श्रोताओं, अब मैं आपसे वो चीज साझा करूंगी जो हमें माना जाता है कहीं ना कहीं विवाह के रूप में, जो हम आइडल मानते हैं, वो आदर्श जो जोड़ा है, वो जो आदर्श युगल जोड़ा है, वो है हमारे शिव और पार्वती का। और जब प्रेम युगल जोड़े की बात करते हैं तो वहाँ होते हैं राधा कृष्ण। आज के दिन हम जो विवाहित लोग हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण है बिंदु, वो ये हैं, दाम्पत्य सुख के लिए और विश्वास और समर्पण के लिए, कलह से मुक्ति के लिए आज के दिन आप पूजन कर सकते हैं शिव और पार्वती का। शिव पार्वती का संबंध, शिव शक्ति है और पार्वती उनकी शक्ति है, तो इन दोनों के बीच संतुलन बना रहता है और उसी संतुलन को बनाने के लिए आप इनकी आराधना कर सकते हैं अपने जीवन में। आधुनिक जीवन में अहंकार छोड़े बिना घर में शांति नहीं होती, तो कहीं ना कहीं प्रार्थना करिए और भोले बाबा

अब आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में और संतान प्राप्ति के लिए क्या महत्व सुझाए गए हैं शिव पुराण में, आइए मैं आपको बताऊंगी। श्रद्धा पूर्वक रुद्राभिषेक करने पर संतान सुख की प्राप्ति होती है। आज के दिन अगर आप श्रद्धा पूर्वक रुद्राभिषेक करेंगे और पूरी तरह से पूजा नियम का पालन करेंगे तो भोले बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप कोई महापंडित बुलाए या कोई पंडित ही बुलाए मंत्र जप के लिए, आपकी श्रद्धा, भोले की भक्ति और उसकी शक्ति और चमत्कार आपके जीवन में जरूर आएगा। विशेष मंत्र जप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्। इस मंत्र का 108 बार कम से कम जप करें ताकि आपकी मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूरी हो और चार प्रहर की पूजा भी करें। अभी मैं आपको बताऊंगी कि जल अभिषेक से क्या होता है। जल अभिषेक करने से मन की शुद्धि होती है, दधि अर्पित करने से समृद्धि मिलती है, घृत अर्पित करने से शक्ति मिलती है, मधु अर्पित करने से मधुरता बढ़ती है। तो इन सभी का समावेश करना मत भूलिएगा आज के शिवरात्रि पूजन विधान में। चलिए बढ़ते हैं एक और भजन की ओर करते हुए बम बम भोले, ओम नमः शिवाय।

श्रोताओं, कहीं ना कहीं रात्रि को माना जाता है कि यह अशुभ है, लेकिन आज का जो दिन है महाशिवरात्रि, वो इस बात को पूरी तरह से काटता है और कहता है कि रात ध्यान की है, रात आत्मा से मिलने की है। चूंकि समुद्र मंथन में विष निकला, शिव ने पिया, इसलिए ये रात्रि विष से अमृत बनने की है। और हाँ जी, महाशिवरात्रि को ध्यान करने से मन स्थिर होता है, कुंडलिनी जागरण का ये विशेष समय माना जाता है।

अब बात करेंगे शिवरात्रि के दिन इतिहास से लेकर आज तक कैसा माहौल पाया जाता है। वैदिक काल में रुद्र पूजा होती थी, शिवलिंग आराधना होती थी, काशी, उज्जैन, सोमनाथ परंपरागत पूजाएं होती थी। आज भी लाखों लोग जागरण करते हैं, पूजन करते हैं, शिव की बारात निकालते हैं, नृत्य करते हैं और आपके तो अपने दुखरनाथ मंदिर के पास में भोले बाबा की बारात आती है, हमारी पार्वती जी और भोलेनाथ का विवाह होता है और हम सभी भक्तगण बम बम भोले का उच्चारण करते हुए पूरे श्रद्धा के साथ में इस बारात में शामिल भी होते हैं। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है जीवन में चाहे कितना भी विष हो उसे पी कर भी मुस्कुराया जा सकता है। तो आज की इस पावन बेला में अपने भीतर के रावण को शांत कीजिए और शिवत्व को जगाइए। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे आकांक्षा, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो ज्ञानेश्वर 89.6 FM के साथ में महाशिवरात्रि स्पेशल पहली किरण। हर हर महादेव।

श्रोताओं, पूजन विधि हमने बता दी, इसका महत्व बता दिया आज के विशेष दिन का यानी शिवरात्रि का। अब शिवरात्रि के दिन की जाने वाली कथा जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जी हाँ, महाशिवरात्रि की भील शिकारी वाली कथा जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, जिसे शिव पुराण और लोक कथाओं में अलग अलग रूपों में बताया गया है। चलिए ये कथा मैं आपको बता देती हूँ, और ये कथा बताती है कि अनजाने में भी की गई सच्ची भक्ति स्वीकार होती है। तो चलिए करते हैं भोलेनाथ की भक्ति, लेकिन उससे पहले ये कथा सुनिए। ये वो कथा है जो है शिवरात्रि और भील की कथा। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक गरीब भील यानी शिकारी रहता था। वो अपने परिवार का पालन पोषण शिकार करके करता था। एक बार फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात थी यानी महाशिवरात्रि। उस दिन भील को दिन भर कोई शिकार नहीं मिला। भूखा प्यासा वो रात में शिकार की तलाश में एक पेड़ पर चढ़ गया। वह पेड़ था बेर का। बेर के पेड़ के नीचे एक बहुत ही पुराना शिवलिंग था जिसे वह देख नहीं पाया, क्योंकि वह बेर के पत्तों के नीचे दब गया था। अनजाने में ही हो गई उससे पूजा, यानी रात लंबी थी, जागते रहने के लिए वो कहीं ना कहीं बेरों को तोड़ तोड़ के खा रहा था, जिसके कारण उससे बेर टूट टूट के नीचे भोलेनाथ के ऊपर चढ़ रहे थे। हर बार जब वो बेल गिराता, वह सीधा शिवलिंग पर जाकर गिरता। उपवास भी था क्योंकि दिन भर उसने कुछ भी खाया नहीं था। जागरण भी था क्योंकि वो पूरी रात सोया नहीं था। बैर पत्र और बैर कहीं ना कहीं अर्पित भी हुआ, तो हो गई ना चार प्रहर में अलग अलग समय पर बैर के साथ में ये पूजा, और इस प्रकार पूरी रात्रि उसकी अनजानी पूजा पूर्ण हो गई। अब वो क्षण आया जब क्षण था करुणा का। रात के पहले प्रहर में एक हिरणी पानी पीने के लिए आई। भील ने तीर ताना। हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, बच्चे को जन्म देकर लौट आऊंगी। भील को दया आ गई, उसने उसे छोड़ दिया। दूसरे प्रहर में दूसरी हिरणी आई। तीसरे प्रहर में हिरण आया। सब ने परिवार की बात कही और लौटने का वचन दिया। भील ने सबको छोड़ दिया। सुबह होते ही वह सोचने लगा, मैं कितना कठोर हूँ जो इन मासूमों को मारता हूँ। उसका हृदय बदल चुका था। उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, हे भील, तुमने अनजाने में मेरा व्रत रखा, जागरण किया, बेर और बेर पत्र अर्पित किए, और सबसे बड़ी बात, दया दिखाई। आज तुम्हारे सारे पाप नष्ट होते हैं। भील को मोक्ष की प्राप्ति हुई, और मोक्ष से पूर्व उसने राजाओं की भांति अपना जीवन यापन किया। तो ये थी आज की शिवरात्रि की कथा, जो हम हर शिवरात्रि जरूर करते हैं। श्रोताओं, अभी मैंने आपसे जो कथा साझा की थी, उसका संदेश मात्र इतना था कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, भाव से होती है। दया सबसे बड़ा धर्म है। अनजाने में भी किया गया पुण्य फल देता है। महाशिवरात्रि की रात जागरण और उपवास अत्यंत शुभ होता है। अब चलेंगे एक विशेष भजन की ओर, और उसके उपरांत आएंगे एक विशेष कथा के साथ में।

श्रोताओं, आज का दिन बहुत ही विशेष है। जी हाँ, आज है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि यानी हम भक्तों के लिए वो दिन जो हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। हम व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं और कथा भी सुनते हैं। और आज का दिन विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि आज हमारे भोले बाबा यानी भोले भंडारी और माता पार्वती माँ अन्नपूर्णा का विवाह हुआ था। चलिए उस कथा की ओर मैं आपको लेके चलती हूँ। श्रोताओं, माँ पार्वती को पूर्व जन्म में माँ सती के नाम से जानते थे। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री। जी हाँ, माँ सती। बचपन से ही उनका मन शिव में रमा रहता था। दक्ष को शिव का वैरागी रूप पसंद नहीं था, पर सती ने तप करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। दोनों का विवाह हुआ, कैलाश आनंद से भर उठा। एक बार दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया, पर उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना निमंत्रण के पिता के घर गईं। वहां शिव का अपमान हुआ। पति का अपमान सती सह न सकी। उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। सती की मृत्यु का समाचार सुनकर शिव का हृदय टूट गया। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और विकराल तांडव किया। पूरी सृष्टि कांप उठी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए, जो कि शक्तिपीठ कहलाए। समय बीता। हिमालय और मैना के घर एक कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम था पार्वती, यानी माता सती का पुनर्जन्म। नारद मुनि ने कहा, ये वही सती है जो शिव को पुनः प्राप्त करेगी। पार्वती ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। पहले फल खाए, फिर पत्ते, फिर वायु पर निर्भर रही, इसलिए उनका नाम पड़ा अर्पणा, जिसने पत्ते भी त्याग दिए, उन्हीं को कहते हैं अर्पणा। देवता चिंतित हुए, तब शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा ली। शिव ब्रह्मा के रूप में आए और स्वयं की निंदा करने लगे। पार्वती बोली, आप शिव की निंदा ना करें, वे मेरे प्राण हैं। शिव प्रसन्न हुए, स्वयं प्रकट होकर वर दिया। फाल्गुन मास की पावन तिथि यानी आज का दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उपस्थित थे। ये केवल विवाह नहीं था, ये शिव और शक्ति यानी शिवा का पुनर्मिलन था। सती यानी आत्मा, शिव परमात्मा, विरह अज्ञान की वजह से, तपस्या यानी साधना, पुनर्मिलन आत्मज्ञान। जब तक आत्मा तप नहीं करती, वह परमात्मा से नहीं मिलती। ओम पार्वती पते नमः, ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, अब मैं आपसे बात करूंगी शिव के प्रमुख नाम और उनके महत्व की। महादेव यानी देवों के देव महादेव, देवों के भी देव सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च चेतना वाले महादेव। नीलकंठ, समुद्र मंथन का विष पीने से कंठ जिनका हो गया नीला, अर्थात जो दूसरों का दुख अपने भीतर समा सके, वो है नीलकंठ। भोलेनाथ, सरल स्वभाव शीघ्र प्रसन्न होने वाले, भक्त के भाव से तुरंत पिघल जाते हैं भोलेनाथ। रुद्र, रुदन रोना दूर करने वाले, वेदों में रुद्र रूप का वर्णन है और रुद्र ही वो हैं जो आपके आंसुओं को समेट देते हैं। पशुपतिनाथ, पशु यानी जीव जो समस्त प्राणियों के स्वामी है यानी पशुपतिनाथ। त्रिपुरारी, तीन असुरों के त्रिपुर का नाश किया, अर्थात अहंकार काम और क्रोध का विनाश करने वाले त्रिपुरारी। नटराज, नृत्य के देवता, सृष्टि स्थिति और संहार का तांडव नृत्य रचने वाले नटराज। विश्वनाथ, पूरे विश्व के स्वामी, काशी में विशेष रूप से इनकी पूजा होती है यानी हमारे विश्वनाथ। अर्धनारीश्वर, आधा शिव आधी शक्ति यानी पार्वती, स्त्री पुरुष ऊर्जा का संतुलन जिसमें निहित है वो है अर्धनारीश्वर। महाकाल, काल के भी स्वामी समय से भी परे महाकाल। भूतनाथ, भूत प्रेत अदृश्य शक्तियों के स्वामी, डर को समाप्त करने वाले भूतनाथ।

तो श्रोताओं, शिव के अलग अलग नाम हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं। जब हम दुखी हों, रुद्र को याद करें, जब डर लगे भूतनाथ को, जब समय कठिन हो महाकाल को, जब कल्याण चाहे शंकर को। ओम नमः शिवाय। अब बात करेंगे उस मंत्र का जिसे हम कहते हैं पंचाक्षरी मंत्र। ये मंत्र पांच तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का प्रतीक है। शिव केवल एक नाम नहीं, एक अवस्था है। जब मन शांत हो जाए तो समझ जाइएगा कि आप शिव के निकट हैं। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र केवल एक मंत्र नहीं, अपने आप में सब कुछ समाहित करता है, जिसमें ना का अलग अर्थ है, माँ का अलग अर्थ है, शी का अलग अर्थ है, वा का अलग अर्थ है और या का अलग अर्थ है, यानी ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के माध्यम से हम भोलेनाथ के हर एक स्वरूप का चिंतन वंदन कर सकते हैं। तो हुआ ना कितना सरल पंचाक्षरी स्तोत्र। करिए आज के दिन कम से कम 108 इसका जप और 108 बिलपत्री भी अर्पण करें भोलेनाथ को। और भोले तो वैसे ही भोले हैं, प्रसन्न करिए और अपने धुन में रम जाइए, ठीक वैसे ही जैसे भोले बाबा अड़भंगी होके भी सभी को प्रसन्न रखते हैं, शमशान निवासी होके भी सभी के कष्ट हरते हैं। हर हर महादेव।

पंचाक्षर मिदम पुण्यम यह पठेत शिव सन्निधो शिव लोक मापनोति शिवेन सह मोदते। ये स्तोत्र यानी शिव पंचाक्षरी स्तोत्र शिव के स्वरूप गुण तप करुणा और दिव्यता का वर्णन करता है। जो भक्त श्रद्धा से इसका पाठ करते हैं उन्हें शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो मन की शांति, भय का नाश और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा और आध्यात्म

एक विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन प्रत्येक पंक्ति में एक साथ किया गया है। यह ध्यान में रख के सुनिए, एक नया आनंद आएगा।

हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

यू, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग जूट को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: A very good morning to everyone, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजेतान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। और आइए ना इस खूबसूरत से दिन को, जो खुद कहीं ना कहीं बादलों को लेकर आया है अपनी खूबसूरती में इजाफा करने, इस डे का, इस दिन का शुक्रिया अदा करते हैं और चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और जानते हैं कि भाई आज का थॉट ऑफ द डे क्या है, आपके लिए क्या पैगाम लेकर के आया है और आज का थॉट ऑफ द डे अपने संग हमें किस दिशा में लेकर जाने वाला है, किस तरह से आज के दिन को बनाने वाला है और कितना हमारे संग हमारे दिल की गहराइयों में उतरने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गुंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गुंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक का आरजे अदनान। और आज का दिन, जैसा कि हमने भी बताया कि भाई देखते में तो बड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुदरत आज फिर से मेहरबान हो गई है। एंड लिटरली जब जब कुदरत मेहरबान होती है, अपने रंग को बदलती है, और वो बदले हुए रंग हमको बड़ा ही रास आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डेली लाइफ में शायद हम ऐसे रंगों को देख नहीं पाते, ऐसे रंग हमारे लिए थोड़ा सा विरले ही होते हैं। तो जिस तरह से लोग हमारे लिए कुछ ख़ास हो सकते हैं, उसी तरह से ये बदलते हुए मौसम, स्पेशली जो आपको पसंद हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं यही बातें इसको काफ़ी ज़्यादा अलग बनाती है। सो चलिए इसी कड़ी में आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, और जानने वाले हैं कि भाई आज का जो मॉर्निंग वाला थॉट है, यानी कि आज के फ्राइडे मॉर्निंग वाला थॉट आखिर में आपके लिए क्या लेकर के आया है और क्या कुछ होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि जिस तरह का मौसम है आज, काफ़ी कुछ ऐसा आप सुनने वाले हैं जो आपके दिन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने वाला है। इसका तो खैर वादा है, और वादा हम जो करते हैं वो निभाते ज़रूर है, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई इंसान का वादा निभाना ही उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है। तो चलिए फ़िलहाल आपको ले चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ, और बताते हैं कि आज का मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे आपके लिए गुड मॉर्निंग गोंडा में क्या है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये थॉट ही जो है, यही हमारे दिन को काफ़ी ज़्यादा अलग बना देते हैं और इसको अलग ही ले जाते हैं। आज गेम से जुड़ा हुआ एक थॉट है जिसको शायद हम एक गेम के ज़रिए जानेंगे। थॉट कहता है कि विश्वास, यकीन रखिए कि हर शॉट गोल में जाएगी। बास्केटबॉल, यकीन रखिए कि हर शॉट गोल में जाएगी, लेकिन अपने काम पर इतना भरोसा रखिए कि अगर गोल ना भी हो तो भी आप वहीं बने रहें। जी हाँ, ये ज़रूर यकीन रखिए कि आपकी हर शॉट जो है वो गोल में जाएगी, लेकिन अपने काम पर इतना भरोसा बनाए रखिए कि अगर गोल ना भी हो तो भी आप वहीं पर बने रहें। वहीं पर बने रहने का क्या सेंस है? वहीं पर बने रहने का सेंस ये है कि कहीं ना कहीं लाइफ में हम जो कुछ ट्राई करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये सोच कर करते हैं कि ये हो जाएगा, तभी ट्राई भी करते हैं, तभी हिम्मत भी होती है। लेकिन क्या हमारा सारा किया हुआ हो जाता है? नहीं। ये बड़ी ही नेचुरल सी बात है कि हमारा सारा किया हुआ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि नहीं होने पर हम छोड़ने लग जाते हैं, हटने लग जाते हैं वहाँ से। ये चीज़ गड़बड़ है, ये कहीं ना कहीं ध्यान देने लायक बात है कि अगर हमारी की गई कोशिश नहीं पूरी होती है तो क्या हम वहाँ से हट जाएंगे? नहीं, वहाँ बने रहना ज़रूरी है। हाँ, ये यकीन के साथ हर कोशिश करना है कि ये वाली कोशिश भी आप जिस सोच के साथ कर रहे हैं वो मुकम्मल ज़रूर होगी, लेकिन मुकम्मल नहीं होने पर वहाँ से हटना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। इसलिए याद रखो मेरे प्यारे, ये वहाँ बने रहना बहुत ज़रूरी है, और अपनी ही चीज़ों पर यकीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कहना है आज के मॉर्निंग यानी फ्राइडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे का। आई होप कि आप भी अपनी लाइफ में हर गोल के लिए डटे रहेंगे, और आपको यकीन रहेगा कि अगर नहीं भी हुआ तो भी आप वहीं रहने वाले हैं, और आपकी की गई हर कोशिश मुकम्मल होने वाली है। इतना छोटा सा है लेकिन बहुत ही प्यारा सा है ये थॉट ऑफ द डे। अब आपको कैसा लगा, आप इस थॉट से क्या समझ रहे हैं, ये आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आइए आपको ले चलते हैं अब अगले एक सॉन्ग की तरफ, जो कि आपके मूड को और भी ज़्यादा ब्राइट करने वाला है, क्योंकि मॉर्निंग वाला टाइम है, सो मॉर्निंग वाले सॉन्ग्स भी आने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ, जैसा कि हमने आपको बताया कि भाई आपको खुद पर यकीन रखते हुए शुरुआत करनी है, फिर वो चाहे जो भी हो,
और आई होप कि अब आप खुद पर यकीन ज़्यादा ही करने वाले हैं और ज़्यादा ही कर रहे हैं। चलिए, ये बात जो है वो मैं बिलीफ के साथ कह रहा हूँ, कोई मस्खरी नहीं कर रहा हूँ, ये बात आप समझने वाले हैं। तो चलिए आइए ये खूबसूरत सा गाना सुनते हैं, आपके मॉर्निंग वाले शो में वापस से आते हैं, फिर देखते हैं कि भाई इस थॉट को सुनने के बाद आपका क्या थॉट है और चैट बॉक्स पे आकर के आपने क्या लिखा है।

0: देखा, इस सॉन्ग ने ही बता दिया था कि भाई ये मस्खरी नहीं है। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और अब वक्त है आपके भेजे गए पैगामात को पढ़ने का और बताने का कि भाई इस थॉट को सुन लेने के बाद आपके क्या रिएक्शंस हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Ajay Khan.

सो एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ लिखा है, कौन कौन से मैसेजेस आए। सविता दुबे जी लिखती हैं, सुप्रभात, आपको भी सुप्रभात, मॉर्निंग वाले शो में आपका स्वागत करते हैं। सविता जी, प्रीति जी का आया है बहराइच से, आपने लिखा है सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू। अनोखी लिखती हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू अनोखी, आपका वेलकम है। एंड इरफान शाह का आया है, स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है चूँकि आज, आपको बता दें कि 31 जुलाई है और 31 जुलाई को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम और उसके सुनने वाले सभी श्रोताओं की तरफ से रफ़ी साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इसके बाद जो नेक्स्ट मैसेज आया है वो आप लोगों के आज के थॉट पर रिएक्शन का आया है और आशु जी ने कर दिया है सुप्रभात सर जी, याद आई फिर वही प्यारी सी बात, खुशियों से हर पल हो आपकी मुलाकात, इसलिए मुस्कुरा के करना दिन की शुरुआत। हमने तो कर दिया है, अब पूछना आपसे था कि आपने भी मुस्कुरा कर किया है दिन की शुरुआत। चलिए बताइएगा और साथ ही साथ आपके मैसेजेस अब पढ़ ले जो आपने आज के थॉट को लेकर के लिखे हैं। सबसे पहले जो रिएक्शन आया है वो आया अनोखी का, सुपर डुपर ऑसम थॉट, थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद हमारी प्रीति जी ने बहराइच से लिखा है ऑसम थॉट, मन ही है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब, जीवन अवश्य एक दिन, क्या बात है। सो जीवन में एक दिन कामयाब होंगे, ये बात तो खैर हम ज़रूर मानते ही हैं और अगर देखा जाए तो हर रोज़ का एक जो छोटा सा जीवन का हिस्सा है उसमें हमारी कामयाबी ज़्यादा मैटर करती है ना। आप ही, अच्छा आप ही के जैसा है ये सॉन्ग सर, मस्खरी, अच्छा थैंक यू। सविता दुबे जी ने बहुत सारे हार्ट इमोजीज भेजे हैं, उनको सॉन्ग और थॉट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बहुत शुक्रिया कि आपने इस थॉट को पसंद किया। एंड यस, आप इस वक्त सुन रहे हैं फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से, यानी तीन मैकेनिज्म से आप सुन सकते हैं अगर आप गोंडा के आसपास की परिधि में हैं और अगर आप थोड़ा सा भी दूर हैं लेकिन 89.6 एफएम के दिल के करीब हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो रेडियो गार्डन का और एक मिलता है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन का। और एप्लीकेशन की ख़ास बात है कि आप इसमें जो कमेंट करते हैं वो लाइव हम तक पहुंच जाता है। सो चलिए फटाफट से आइए और लिखते जाइए। अब हम ले रहे हैं अरिजीत की आवाज़ को आपके लिए इस दिन को और भी ज़्यादा ख़ास बनाने के लिए आपके मॉर्निंग वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, सिर्फ और सिर्फ गुड मॉर्निंग गोंडा में।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

हाँ जी सुभाई, मुझे एक बात बताइए, बहुत छोटा सा सवाल है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा, कि आपकी लाइफ का आखिर वो कौन सा बिना लिखा वाला नियम है जिसे आप बिना फॉलो करे यानी बिना भूले फॉलो करते हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन आपका नियम वैसा ही रहता है। जैसे कुछ लोगों का नियम है, या मैं कहूँ मेरा जो नियम है वो है समोसे को हमेशा पीछे से खाना। आप बिर या चाय जो होती है भाई, चाय के साथ खाते हैं, शाम की चाय के वक्त जो है वो, या फिर आप दिन में भी खाते हैं। सो हो सकता हो आपका भी ऐसा ही कोई अनरिटन रूल हो, यानी बिना लिखा हुआ नियम हो जिसे आप फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि भाई समोसे को हमेशा पीछे से खाने की शुरुआत मैं करता हूँ। सो ऐसा कौन सा रूल आपके लिए जो आपने लिखा तो नहीं है लेकिन उसे आप ज़रूर फॉलो करते हैं, फिर आप कहीं पर भी हों और कैसे भी हों, तो ज़रा फटाफट से कमेंट करके बताइए मुझे चैट बॉक्स पे आकर के। ऐसा कौन सा रूल आप फॉलो कर रहे हैं जो आपके लिए भी बिना लिखा है लेकिन तगड़े से फॉलो करते हैं। उसके बाद हम बताने वाले हैं आपको सिटी अपडेट्स, यानी गोंडा में जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ जानेंगे आपके मॉर्निंग वाले शो में। फिलहाल ट्यून कर लिया है गोंडा FM 89.6 FM।

क्या बात है भाई, हमारी गीता श्रीवास्तव जी ने और ताबिश ने लखनऊ से अपने जवाब भेज दिए। फटाफट से आप ही बताइए, ऐसा कौन सा अनरिटन रूल है जिसे आप दुनिया इधर की उधर होने के बावजूद भी आप उसे फॉलो करते ही करते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि मैं समोसा हमेशा पीछे से खाता हूँ, क्या आप भी शाम की चाय को पीते वक्त फोन साइलेंट करते हैं, या मॉर्निंग वॉक कहने के 10 मिनट बाद ही शुरू होती है? जरा फटाफट से बताइए तो, मैं सुन रहा हूँ।

0: यस ऑफ कोर्स, कहीं ना कहीं भाई ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा था जिसका जवाब आपसे जानना था। मैंने कहा था भाई ऐसा कौन सा बिना लिखा रूल है जिसे आप फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं मैंने अपने बारे में बताया था कि मैं जब भी समोसा खाता हूँ भाई मैं पीछे से खाना शुरू करता हूँ, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए मेरा रूल रूल ही रहता है। अब फिलहाल आपने अपने इन बिना लिखे हुए नियम कानून में क्या क्या बताया है या अभी आप क्या कमेंट करके बताने वाले हैं, चलिए हम आपको पढ़ के बताते हैं कि क्या क्या रिप्लाईज आपकी तरफ से आने शुरू हो गए हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो भाई सवाल बड़ा ही पेचीदा और बड़ा ही खूबसूरत सा था, इसका जवाब उतना ही बेहतरीन आप लोगों ने दिया है। सबसे पहले हमारी गीता श्रीवास्तव जी ने गोंडा से ही रिप्लाई किया और कहा है सांस। सो दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, आप सांस लेना नहीं बोलते। चलिए बहुत अच्छी बात है, हालांकि एक बहुत ही कॉमन रूल है। और ताबिश लखनऊ से लिखते हैं कि मैं हमेशा खाना खाने के बाद मीठा खाता हूँ। क्या बात है, दैट्स वेरी यूनिक। कई लोग करते हैं लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक माना जाएगा। सुजीत लिखते हैं एक्सरसाइज करना, ऑल राइट। और लिखते हैं कि सबसे अच्छा जवाब गीता जी का लगा मुझे, सांस लेना। आह क्या बात है, चलिए हम लोग भी गीता जी से सांस लेना सीख ही लिया जाए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जब खाने पीने की आदत की अगर हम बात करें तो सूखी पूरी तो हक है मेरा, वो नहीं मिली तो गोलगप्पे वाले से रिश्ता ख़त्म। आपके साथ भी ऐसा होता है? ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे हमारे ऐसे श्रोता हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं कान खोल करके और मन ही मन मुस्कुरा रहे, अजी ये आदत तो हमें भी है। ऐसे ही सोच रहे हैं आप, ऐसे ही है मेरी खुद है कि अगर सूखी पूरी नहीं तो भैया हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं, उस गोलगप्पे वाले के दोबारा हमें ठेले पे जाना ही नहीं है, रिश्ता ही ख़त्म हो जाता है जब तक कि सूखी पूरी नहीं मिलती है। चाय वालों की अगर बात करें तो अगर चाय ठंडी हो गई और उसे दोबारा गर्म करके नहीं पीना है, नई चाय ही बनेगी। यानी हम में से भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गर्म चाय को पीना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। फ्रेश बनाओ, वापस से बनाओ, उसको ही पीना है। इसके अलावा अगर मैं जैसे डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको अगर हम आपको जहन मिला के दिखाएं तो कुछ ऐसा होता है कि भैया अगर मान लीजिए ऑटो वाले भैया को कभी पहली बार में हाँ नहीं कहना है सो थोड़ा भाव खाना ही पड़ता है ना। सो पहली बार में आपके ऑटो वाले भैया हाँ नहीं बोलते

हैं, थोड़ा सा भाव खा के तब वो बताते हैं। इसके अलावा ऑफकोर्स अलार्म का तो मोस्टली लोगों के साथ है कि 7 बजे का है तो 7:15 बजे ही आपको उठना है, उससे पहले नहीं। और कहीं ना कहीं अगर हम बाहर की बात करें, मार्केट की बात करें, सो नया फ़ोन या नया सामान आए तो उसकी प्लास्टिक पन्नी खुद ही उतारनी है और कोई छू ही नहीं सकता। ये भी आदत होती है कि भैया नया सामान आया है, उसको अनपैकिंग उसकी मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगी। ये चीज़ें कई लोगों में पाई जाती है कि भैया मेरी परमिशन के बिना आप छू भी नहीं सकते। और उसको मज़ा, यार सच बताएं, अनपैकिंग का बहुत आता है। और अगर उस पर वो फोड़ने वाले चुट-चुट बोलने वाले चुटपुटिये लगे होते हैं तब तो समझ लीजिए मज़ा दोगुना तीन गुना चार गुना हो जाता है। फिलहाल कई सारी ऐसी आदतें होती हैं जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में बिना लिखे रूल के हिसाब से करते रहते हैं। एंड आई होप कि आप भी ऐसे कई सारी आदतों के शिकार आप भी होंगे। थोड़ा सा सोचेंगे तो शायद 2-4 आदतें अब आप भी और बता पाएंगे। सो अगर अभी भी आपको याद आ रही है अपनी कोई ऐसी ही बिना लिखी हुई आदत तो भी आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल अब जब लौटेंगे तो आपको बताने वाले हैं आपकी गोंडा अपडेट यानी सिटी अपडेट की तरफ चल करके कि आखिर शहर में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है लगातार। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। और अब आपको हम बताने वाले हैं कि क्या कुछ हो रहा है आपके अपने शहर गोंडा में। और साथ ही साथ अगर अभी भी आपको कोई और आदतें याद आ गई हो तो फटाफट से आप फिर से आ करके लिख सकते हैं चैट बॉक्स पर और बता सकते हैं कि भाई आपको आपकी कौन सी आदत जो है वो जहन में आ रही है और उस आदत को आप हमसे साझा भी करना चाहते हैं जो कि बिना लिखी है लेकिन है आपकी आदत ही।

0: अरे भाई बाजार में आज भीड़ बहुत ज्यादा है। ओफो, अरे अरे अरे भाई साहब।
1: हाँ बताइए।
0: अरे अरे भाई साहब जरा ये बताइए कि हाँ। जूते कहाँ मिलेंगे?
1: जूते हाँ, जूते हाँ, चाहिए
0: हाँ।
2: तने को पद्धर कह के देखो या तने जूता मिलिए कि नहीं ना पाइयो। वो सामने दुकान जा लेंगे।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: सो भाई अब देखिए ना, कुछ रिप्लाईज और आपने दिए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग से जवाब आए हुए हैं आपकी तरफ से। और उसके बाद गीता जी ने लिखा, सर मुझे खाने के साथ में हरी मिर्च खाना ज़रूरी है। अब ये आपका खुद का देखिए अपना रूल है, कोई इसे करे ना करे, आप कहीं पे भी जाए, जहाँ पे भी आपको मौका मिल जाए, आप हरी मिर्च खाते जाएँ खाते जाए खाते जाए। ये दुआ भी है और साथ ही साथ ये आपकी आदत भी है। एंड इसके साथ में हमारी प्रीति जी ने बहराइच से लिखा है, गोल गप्पे खाने के बाद मीठा और चटपटा पानी मांगना। आह क्या बात है, क्या देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं। ये चटपटा पानी मांगने की जो आदत है ये सच में मुस्कुराने पे मजबूर कर देती है। एंड इसके बाद गीता श्रीवास्तव जी लिखती है, फिर उसके चुटपुटिया फोड़ने में मज़ा आता है। ऑफकोर्स मैंने कहा था ना कि ये चुटपुटिया फोड़ने की कई लोगों की आदतें हैं जो हम लोगों में समाई रहती है और बहुत ही अच्छे से हम कहीं ना कहीं इस आदत को फॉलो करते हैं। एंड लिटरली मुझे लगता है कि भैया सच में ये आदतें हमारे लिए हमारे दिन को और हमारी लाइफ को थोड़ा सा ही सही लेकिन और ख़ास बनाती रहती। फिलहाल इस गाने को सुनेंगे थोड़ा सा और ख़ास बनाने के लिए, देन उसके बाद बताते हैं क्या कुछ चल रहा है गोंडा में।

0: लफ्ज़ पाकीज़ा यानी पवित्र, ये जब लफ्ज़ आता है तो आपको अपने जहन में आखिर क्या ख्याल आता है? आता तो है, डेफिनेटली आता है। अब वो आप कमेंट करके बताने वाले हैं कि ख्याल आखिर किसका और क्या आता है। चलिए फिलहाल हम बताते हैं गोंडा में क्या कुछ चल रहा है आपकी सिटी अपडेट्स में।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan.

सो आपको हम अब दे दे भाई बता दें ये बात कि किसानों के लिए निःशुल्क बोरिंग योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू हो गया है। सो भाई जो हमारे किसान भाई इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं, वो वेबसाइट UPMID पर जा करके आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में खसरा खतौनी आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ब्लॉक कार्यालय में जमा करना होगा। सो JEE लघु सिंचाई ने बताया है कि योजना का फ़ायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। सामान्य वर्ग के किसानों के पास 2.5 बीघे से ज़्यादा भूमि होनी चाहिए। अनुसूचित वर्ग के किसान 2.5 बीघे से कम भूमि होने पर भी पात्र होंगे। सो फिलहाल हमने ये बताया आपको, निःशुल्क बोरिंग योजना यानी जो बोरिंग कराई जाती है पानी को लेकर के, वो किसानों के लिए है। और स्पेशली जैसा कि बताया कि भाई JEE ने बताया है कि इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। सामान्य वर्ग के किसानों के पास चूंकि 2.5 बीघे से ज़्यादा भूमि होनी चाहिए इस योजना के तहत, और अनुसूचित वर्ग के किसान 2.5 बीघे से कम भूमि पर भी उनको ये फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा बात आती है अगले अपडेट की। सो प्राइवेट जो है एग्ज़ाम्स का, उसके लिए आवेदन शेड्यूल जारी हो गया है। सो माध्यमिक शिक्षा परिषद ने साल 2027 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम है, प्राइवेट जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी जारी कर दी है। सो ज़िले के 515 माध्यमिक विद्यालयों के ज़रिए अभ्यर्थी 5 अगस्त से अप्लाई कर सकेंगे। चूँकि DIOS डॉक्टर रामचंद्र ने सभी जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं यानी प्रिंसिपल्स को निर्धारित समय सीमा में आवेदन करने को और परीक्षा शुल्क जमा कराने के लिए कैंडिडेट्स का जो डिटेल्स हैं उस परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने के निर्देश दे दिए हैं। और जो निर्धारित कार्यक्रम है इसके हिसाब से 5 अगस्त से सभी स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्राइवेट के जो अभ्यर्थी हैं, उनके आवेदन पत्र जो है अग्रसारित करके परीक्षा शुल्क प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। और अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है समितियों पर ताले को लेकर के, इसलिए खाद के लिए किसान जो है वो बेहाल हो रहे हैं। फिलहाल कई जगह ऐसा मामला आया है, धानीपुर साधन सहकारी समिति का भी मामला है कि भाई इस तरह से जो है वो ताला लगा रहा। दूसरा माधवगंज रेवता गाड़ा में है जो स्टॉक ख़त्म हो गया है। तीसरा है जानकी नगर, हरैया, झूमन और इटिया थोक में भी इसका कहीं ना कहीं संकट जो है वो देखा जा रहा है। इसके अलावा आपको हम ले चलते हैं अगली अपडेट, जो कि पाइपलाइन फटने से 15 वार्डों में पेयजल आपूर्ति की प्रॉब्लम हो चुकी है। इसको भी हम आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि नगर पंचायत कटरा बाज़ार की जो मेन पेयजल पाइपलाइन फटने से पूरे कस्बे में जो जलापूर्ति है वो फिलहाल चरमरा गई है। सो 2 दिन से चल रहे मरम्मत के काम के बावजूद अभी फ़िलहाल कल तक पानी की आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। इसके चलते नगर पंचायत के सभी 15 वार्डों में 20,000 की आबादी जो है वो पीने वाले जो ऑफकोर्स पानी है उसकी परेशानी से फ़िलहाल जूझ रहे हैं। इसके अलावा जो लगातार हम देखते जा रहे हैं कि मगरमच्छ के हमले होते जा रहे हैं नदियों में, उसको लेकर के फ़िलहाल ऐसा कहा गया है कि भाई इसका कोई स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। सो सरयू नदी में मगरमच्छ के हमले के घायल होने में उसके 34 दिन बाद दम तोड़ने वाले भानु प्रताप के जो परिवार वाले हैं, ज़िला प्रशासन ने कुछ पैसों की आर्थिक सहायता की मांग की, जिसमें 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। और दूसरी तरफ जो है वो कहीं ना कहीं ये फिक्र जाहिर की जा रही कि भाई इसका कोई ऐसा सोल्यूशन हो जिसमें मगरमच्छ के ऐसे हमले ना हों। सो इसको लेकर के भी लगातार बात चली जा रही है और कहीं ना कहीं इस पर चर्चा हो रही कि भाई इस तरह से ना हो। इसके अलावा आपको हम बता दें अगली जो अपडेट आ रही है वो टीकाकरण से जुड़ी आ रही है। सो करनैलगंज CHC में किशोरियों को HPV प्रतिरोधी टीका आज लगाया जाना है सुबह 10 बजे से। सो अगर जो भी करनैलगंज से सुनने वाले हमारे श्रोता हैं और उनके यहाँ भी कोई 14 से 15 साल के बीच में कोई उनकी बेटी है, बहन है, तो कहीं ना कहीं HPV का टीका ज़रूर लगवा लें। इसके अलावा आज ही के दिन बता दें गांधी पार्क के टाउन हॉल में
वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा की तरफ से मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर सेमिनार का आयोजन आज किया जा रहा है। सुबह 11 बजे से आप भी जाकर के शामिल हो सकते हैं। और साथ ही साथ रघुकुल विद्या के पास में ही इंडियन आइडल एकेडमी में यादे रफ़ी साहब के 3 जो म्यूज़िकल प्रोग्राम हैं वो आज दोपहर 3 बजे से होने वाले हैं। वहाँ भी आप जा कर के इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि BRC में ही अब बनने वाले हैं 3986 दिव्यांग बच्चों के प्रमाण पत्र। जी हाँ, सो परिषदीय विद्यालयों में जो पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चे हैं उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए CMO ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के आदेश पर जिले के सभी 16 विकासखंडों के ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी BRC में मेडिकल असेसमेंट शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में 3986 दिव्यांग बच्चों की दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाया जाएगा और अभियान जो है वो 22 अगस्त तक चलाया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने नशा मुक्ति का संदेश भी दिया है। जी हाँ बिल्कुल। और साथ ही साथ डायरिया को लेकर के लगातार कैंपेन गोंडा में चलाया जा रहा है। डायरिया से बचने के लिए वक्त पर ORS का घोल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर डायरिया की प्रॉब्लम है तो इस बात का आपको ख्याल रखना ही होगा। सो फिलहाल अब आपको ले चलते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, चूँकि ये रही आपके अपने गोंडा की अपडेट। और इस सिटी अपडेट में हमें लगता है कि काफ़ी कुछ आज आपको जानने को मिला होगा और आप भी कहीं ना कहीं सुनकर इसको मुस्कुरा ज़रूर रहे होंगे। वैसे मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आज आप काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। क्या ख्याल है आपका अपना अपने बारे में? सुनते रहिए 89.6 FM विद योर मॉर्निंग जॉक RJ अतान।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपकी मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। फिलहाल कुछ बातें जो कहीं ना कहीं ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। असल में जब बात हम करते हैं किसी भी रिश्ते की, तो इन सारे रिश्तों में बहुत जो सेंसिटिव रिश्ता होता है वो होता है माँ बाप का बच्चों से। जी हाँ, यानी पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी आर्ट है, एक बहुत बड़ी बात है। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो सॉरी बोल देते हैं और गलती कुछ भी कर देते हैं। कई बार लगता है कि उनको करना है और करके फिर सॉरी बोल करके निकल जाना। दरअसल ऐसा क्यों होता है? क्या बच्चे खुद से करते हैं या वो कहीं से सीखते हैं, या उन्हें ऐसा करने के लिए हम खुद ही बताते हैं, हालांकि हमको भी नहीं पता होता है कि हम उनको इस तरह गाइड कर रहे हैं। चलिए क्या है पूरी बात, हम आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening, Good Morning Koda, with your favorite, Aajya Khan.

हाँ जी, तो भाई आपको कुछ बातें, जैसे हम बताए ना कि हम लोग शायद ध्यान ही देते हैं, पर कहीं ना कहीं अपने बच्चे से सॉरी बोलना जो है ये कहना उनसे बंद करना होगा। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों है भाई, अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उससे सॉरी बोलना है तो बोलते हैं ना। हाँ जी, तो ऐसा क्यों नहीं बोलना है और इसकी जगह क्या बोलना है ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बच्चों को जो सिखाया जाता है वो हमारा इंटेंशन होता है कि वो माफ़ी मांगना सीखे, माफ़ी दोहराना नहीं कि वही गलती बार बार करके वो माफ़ी मांगे। सो ज़बरदस्ती जो बच्चों से बुलवाया गया सॉरी होता है वो एम्पैथी नहीं बनाता है, बस कॉम्प्लेंस सिखाता है। और बच्चे शब्द नहीं सीखते हैं, पहली बात हम इस बात को जान लें कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो शब्द नहीं सीखते हैं, वो भावनाओं को सीखते हैं, वो इमोशंस को सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें दर्द समझ नहीं आया तो सॉरी सिर्फ एक शब्द रह जाता है। यानी अगर वो नहीं समझ पाए कि आखिर उनकी किसी हरकत से किसी को क्या परेशानी हुई, कितना पेन हुआ, दर्द हुआ, तो वो सिर्फ सॉरी एक वर्ड बन के रह जाता है, ये सॉल्यूशन नहीं बनता। तो सही सवाल क्या है, यानी बच्चे से ये ना कहें कि सॉरी बोलो, बल्कि बच्चे से एक सवाल करना, वो सवाल होगा अब तुम क्या कर सकते हो जिससे उसे बेहतर महसूस हो। यानी बच्चे ने अगर किसी को मार दिया है, कोई ऐसी बात हो गई कि बच्चे से हाथ उठ गया है, बच्चे ने कुछ ऐसी हरकत कर दी है दूसरे बच्चे के लिए, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ बच्चे से, अपने ही बच्चे से सवाल कर सकते हैं कि बेटा अब तुम क्या कर सकते हो जिससे तुम्हें उसको बेहतर महसूस कराओ। ये बात जो है, बच्चे भावनाएं यहाँ पर सीखते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई कोई कुछ बच्चा करके आया, सीधे बोलो सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, हाँ सॉरी, ठीक हो गया, फिर हुआ अरे यार, फिर सॉरी बोलो। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो वर्ड्स नहीं सीखते हैं, वो भावनाओं को सीखते हैं। और भावनाएं जो हैं वो सॉरी में नहीं मिलती, बल्कि उससे ये पूछने में मिलती है कि अब तुम क्या कर सकते हो, यानी अब तो हो गया है, अब तुम क्या कर सकते हो जिससे उस बच्चे को या उस शख्स को या मुझे या परिवार के किसी भी सदस्य को जिसको बुरा लगा हो, उनके लिए बेटा तुम क्या कर सकते हो जिससे उन्हें बेहतर महसूस हो। ये सवाल बच्चे में कहीं ना कहीं इमोशन लेकर आएगा, और हमारा बच्चा जो घर का होगा वो सीख रहा होगा भावनाओं को बोलना। यानी वो सिर्फ शब्द तक सीमित ना रहे कि सिर्फ शब्द पता है, बल्कि सच देखा जाए तो उसको ये पता होना चाहिए कि आखिर क्या इमोशन है इसके पीछे, इसके पीछे की लॉजिक क्या है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अब से अपने बच्चे को अब सॉरी बोलना प्लीज़ ये कहना बंद करना पड़ेगा, बल्कि उसको सीधे सीधे पूछना पड़ेगा कि बेटा अब जो तुमसे ये हो गया है, अब तुम ऐसा क्या कर सकती हो या ऐसा क्या कर सकते हो जिससे सामने वाले को बेहतर फील हो या बेहतर लगे। और इस तरह से बच्चा खुद ही एक सोल्यूशन के साथ आएगा, उसको कहीं ना कहीं एहसास होगा और वो इमोशन को सीख रहा होगा। देन बच्चा ज़िंदगी भर हमेशा इमोशन को सीखेगा, यानी आप जो कहना चाहेंगे, जो चाहेंगे वो खुद भी जान रहा होगा, समझ रहा होगा। लेकिन उसके लिए हमको इस तरह से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई होप कि ये बात बहुत ही छोटी सी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। इसलिए आप क्या समझते हैं और आपको खुद क्या समझ में आया, और क्या आप अपने घर के छोटे बच्चों के साथ अब आइंदा से सॉरी ना बोल करके, बल्कि उनसे ये पूछेंगे कि बेटा अब तुम क्या कर सकते हो जिससे सामने वाले को बेहतर फील हो, तो फिर चलिए बहुत अच्छी बात है। पेरेंटिंग में आपने एक ऐसी चीज़ को सीख लिया आज, जो कि बच्चे को आपके इमोशन सिखाएगी, शब्द नहीं। यानी बच्चा कुछ भी करेगा तो उसको फील होगा, सिर्फ मुंह से कहेगा नहीं। फिलहाल सुनते रहिए अपना मॉर्निंग वाला शो, गुड मॉर्निंग गोंडा, विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज, गोंडा।
2: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं, जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है, और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: हाँ जी सुभाई, ये सॉरी और पेरेंटिंग वाली बात पे आप लोगों ने काफी कुछ लिखा है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लिखा है। तो चलिए भाई, आपके लिखी हुई बातों को भी हम पढ़ते हैं और बताते हैं क्या कुछ लिख भेजा है आपने हमारे मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आर जे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो मैसेजेस में आशु जी का आया है, बताया कि सर जी आज हमारे ही घर में मेंबर गरिमा त्रिपाठी का बर्थडे है, विश कर दीजिए और एक सॉन्ग प्ले कर दिए। सबसे पहले गरिमा जी, आपको आपके बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। गुंडा एफएम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, साथ ही बहुत सारा सुकून और बहुत सारा फैमिली का प्यार आपको हमेशा ही मिलता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। कमल नयन जी हैं, सॉरी बोल देने से बच्चों को गलती का एहसास नहीं होता, सिर्फ सॉरी बोलना ना सिखाएं, गलती का एहसास करना बच्चों को सिखाएं, बच्चों को सही गलत बोलने का एहसास हो, जिम्मेदारी सिखाएं, व्यवहार का अभ्यास करना और भावनाओं को समझना ज़रूरी है। बेशक सही बताया। महेंद्र देपन राजस्थान से हैं, सबसे पहले तो आपका स्वागत। आप लिखते हैं, अदनान सर जी, हमारे ज़माने में इमोशंस पर बात करना या गलती मानने के लिए सॉरी बोलने जैसी कोई रिवाज नहीं था, नियम बहुत सीधा था और सिंपल था, गलती हुई नहीं कि तुरंत डायरेक्ट एक्शन। उस समय पापा लोगों की डिक्शनरी में सॉरी का ऑप्शन ही नहीं था और सीधे ऑन द स्पॉट फैसला हो जाता था। ओके, लेकिन कमाल की बात यह है कि आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं, इस बात पर हंसी भी आती है और ये समझ भी आता है कि दौर कितना अलग था। उस वक्त हमारे माता पिता को अपनी भावनाएं जताने, बच्चों को भावनाओं को हैंडल करने का तरीका किसी ने सिखाया ही नहीं था। वो जिस माहौल में पले बढ़े उसी हिसाब से उन्होंने भी हमको संभाला। बेशक सही कहा आपने। आशु जी लिखती हैं, मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। थैंक यू। एंड इसके बाद धर्मेश भी आ गए हैं। धर्मेश, आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड धर्मेंद्र मोहन जी भी

आगे हैं आवास विकास से, लिखते हैं अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग। वक्त और दौलत के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप चाहे जितनी भी दौलत खर्च कर ले, लेकिन आप पता नहीं लगा पाओगे कि आपके पास कितना वक्त है। और सर जी, जुमे की नमाज मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। एंड साथ ही लिखा है सभी श्रोताओं को भी उन आपने नमस्कार बोला है, थैंक यू सो मच टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यस ऑफ कोर्स, सभी के हमारे अपने फ़लसफे हैं, मानने के तरीक़े हैं कि किस तरह से हम बच्चों को कैसे डील करते हैं, लेकिन पेरेंटिंग बहुत बड़ी आर्ट है एंड पेरेंटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम कैसे भी करके बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे या कोई भी इंसान कंट्रोल होने वाली चीज़ नहीं होती है। उनके साथ तो कोऑर्डिनेशन करना होता है, उनके साथ बैलेंस बनाना होता है। एंड बच्चे अगर आज जैसा हम रवैया करते हैं, वैसे ही रवैया वो बड़े होकर के हमारे साथ करते हैं, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है, प्यार से ही डील करना चाहिए कि बच्चे के दिल में कभी ये ना हो कि भाई हम जो है कर रहे हैं वो सिर्फ खौफ के साए में उससे करा रहे हैं।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब?
5: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
8: डिलीशियस
9: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
8: और क्या क्या है खास?
9: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
8: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
10: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
11: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
12: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
13: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
12: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
14: सो ये बर्थडे सॉन्ग हम डेडिकेट कर रहे हैं गरिमा त्रिपाठी जी को, जिनका आज बर्थडे है, और हमारी आशु जी ने लखनऊ से रिक्वेस्ट किया है। सो ऑफ कोर्स आपकी रिक्वेस्ट पर गोंडा FM उनको उनके बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। आई होप गरिमा त्रिपाठी जी आज आपके साथ हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं।

यस, हैप्पी बर्थडे टू यू करिमा, एंड ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी दुआएं चैट बॉक्स पर हमारे प्यारे श्रोताओं ने भेज दिया है और काफ़ी कुछ लिखा है आपके बर्थडे को लेकर के। बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो है वो आप तक पहुंच रही है, हम सभी श्रोताओं के ज़रिए चैट बॉक्स पर मेंशन किया जा रहा है। सो क्या कुछ लिखा है ये बता देते हैं। सो ऑफ कोर्स इसके बाद जो पहला मैसेज आया है वो थैंक यू का आया है। थैंक यू सो मच आशु जी आपको। धर्मेंद्र मोहन जी ने आवास विकास से, गरिमा त्रिपाठी जी को हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ पहुँचे, थैंक यू सो मच। और हमारी प्रीति जी ने बहराइच से लिखा है, प्यारी बहू बेटी गरिमा को हैप्पी बर्थडे। यस ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का दिल से दुआ देने के लिए गरिमा जी को। एंड आई होप कि आपका दिन और आपकी लाइफ दोनों ही सुकून से भरी हो, खुशियों से भरी हो और बहुत सारी नोक झोंक के साथ हमारी बहुत सारी मेमोरीज जो हमेशा बनती रहती है वो ज़रूर बनती रहे। एंड ऑफकोर्स 89.6 FM आपके एक अच्छे से भविष्य की कामना करता है। बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से भी आपको।

0: अरे चिंटू।
1: हाँ माँ साहब बताओ।
0: अरे ऐसा करो, हाँ। खड़े हो जाओ।
1: खड़े।
0: आज पानी में रहने वाले पांच जीवों के नाम बताओ जरा सा।
1: हाँ। बताएं?
0: हाँ।
1: मास्टर जी।
0: हाँ।
1: मेंढक।
0: अरे वेरी गुड। बाकी चार और बोलो बेटा।
1: हाँ? बाकी चार?
0: हाँ?
1: उसकी अम्मा, उसके पापा, उसकी बहन, उसके भैया, और बताएं।

0: हाय श्रीनाथ, सो वही इतना बातचीत करते करते देखिए ना 10:52 हो गया। आई होप कि ये गाना आपने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया है, कुछ मैसेजेस भी आए और साथ ही साथ एक थॉट भी आया है जो कि किसी ने लिखा है, यानी कंटेंट की है जब हम बात करते हैं। सो भाई किसने क्या लिखा है, कहाँ से आया है, चलिए ये बताते हैं। और कुछ मैसेजेस जो आपकी जानिब से आए हैं 89.6 FM की एप्लीकेशन के चैट पर, वो क्या कुछ हैं, चलिए आपको सुनाते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो राजस्थान से महेंद्र देपन, आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग आपने लिखा था। एंड सविता दुबे जी ने भी लिखा था और कहा सर आपके सुनते सुनते मुझे देरी हो जाएगी काम में जाने में। इतना तल्लीन होकर के आप 89.6 FM के गुड मॉर्निंग गोंडा को सुनती हैं, दैट्स वेरी नाइस। कमल नयन जी लिखते हैं गुड मॉर्निंग अदनान सर, गुड मॉर्निंग टू यू कमल जी, आपका स्वागत है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। एंड ऑफकोर्स हमने सॉरी का बोला था जिस पर आप लोगों ने काफ़ी सारे कॉमेंट्स किए। धर्मेश आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। और साथ ही साथ गर्मा जी को कई सारे लोगों ने अपने दिल से दुआएं दी है और ये दुआएं ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जो लगती है और लाइफ टाइम भी रहती है। थैंक यू सो मच अपने ही 89.6 FM की फैमिली के मेम्बर का इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, यानी जो आपकी तरफ से भेजा गया कंटेंट है वो हमको मिल गया है। और वो कंटेंट क्या है ये आपको बताने जा रहे हैं। हमारी प्रीति जी ने बहराइच से भेजा है और लिखा है आत्मविश्वास। क्या है आत्मविश्वास में आपका लिखा ये बताते हैं। आप लिखती हैं, स्वयं रखती हूँ विश्वास सदा सकारात्मक और दूसरों का भी हौसला बढ़ाती। स्वयं रखती हूँ विश्वास सदा सकारात्मक और दूसरों का भी हौसला बढ़ाती। सकारात्मक सोच रखने की खुद पर सदा, मुश्किल चाहे जितनी आए जिंदगी में फिर भी सोच रखती हूँ खुद पर सदा पॉजिटिव। सकारात्मक सोच रखती हूँ अक्सर, इसलिए सारी समस्याओं को भली भांति पार कर लेती हूँ चाहे देर ही सही। सकारात्मक सोच रखती हूँ अक्सर, इसीलिए सारी समस्याओं को भली भांति पार कर लेती हूँ चाहे देर ही सही। मेरी जिंदगी में नेगेटिव सोच वालों का है घेरा बहुत, फिर भी हौसला रखती हूँ अपने आप पर पॉजिटिव सदा। मेरे हौसलों को ना कोई तोड़ पाया अभी तक, ना आगे भी तोड़ पाएगा कोई भी, चाहे जितनी भी बाधाएं आए मेरी जिंदगी में। विश्वास है खुद पर मुझे, रहूंगी सदा ही पॉजिटिव सोच की मैं आगे भविष्य में भी। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, आपने अपनी तरफ से तो पूरी पूरी तैयारी कर ली है कि कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर नहीं पाएगा और मुश्किल नहीं। और ये बहुत प्यारी बात है, बहुत सच्ची और बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। सो भाई ये मैसेजेस थे आपके और ये था आपकी तरफ से कॉन्टेंट। आज का शो कैसा लगा है ये तो आप बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, एंजॉय करते रहिए अपना गोंडा FM 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। और बैक टू बैक सॉन्ग्स शोज सब कुछ आएंगे आपके लिए, बस आपको बने रहना अपना 89.6 FM पर, क्योंकि यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। ख्याल रखिएगा अपना।

कोट बड़ी पेंदी हुंदी जे, फिर ना क्यों दस्या नहीं, ते मुड़ के जे कितने मेरे अंगू फड़े गए ना, ते फिर कहंदे फिरोगे सॉरी अंकल सॉरी, मैं तो ट्यूशन बारे पूछना आया सी।

भाइयो आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आज का नया प्रोग्राम है गांव की गूंज की टीम का। अप्रैल का महीना चल रहा है पर गर्मी का सितम इतना ज्यादा है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता है।
1: आप सबने बेंगलोर की न्यूज पढ़ी? अरे वही शहर जो आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया है, पानी के भयंकर संकट से जूझ रहा है। अरे मेरा भाई इंफोसिस में काम करता है, वो बता रहा था कि हम लोगों ने मांग की है कि ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम दिया जाए।
2: अरे जिम्मी तुम सुनो, अब की गर्मी में तुम बैंगलोर जाना चाह रही थी। देखो हरिओम क्या बता रहा है कि बैंगलोर के लोग छुट्टी लेकर अपने गांव आ रहे हैं, वहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम हो गई है।
3: हरिओम सही कह रहा है, स्विमिंग पूल पर तो रोक लगा दी गई है, कार वॉशिंग नहीं कर सकती, यहाँ तक कि लोग दो तीन दिन में एक बार नहा रहे हैं, और कपड़े धोना तो जैसे भूल ही गए हैं।
4: हाँ यार, कल रात मैं और साक्षी भी न्यूज देख रहे थे, बता रहे थे कि बैंगलोर में पहले पॉपुलेशन करीब 80 लाख की थी, अब 1.5 करोड़ पहुँच गई है। जिस फ्रेंड के पास हम सभी जा रहे थे वो वापस आ रही है, अब अपने गाँव से ही काम करेगी।
1: बैंगलोर को सिटी ऑफ गार्डन बोला जाता था एक टाइम पर, आज कंक्रीट का पूरा जंगल बन गया है। किरण दीदी आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप अपने गानों को तैयार कर लीजिए और मैं गांव के सभी लोगों से मिलकर पानी की समस्या पर काम करता हूँ।
3: ठीक है हरिओम, बीच में मैं गाने सुना सुना कर तुम लोगों की स्ट्रेस दूर करती रहूंगी।

0: गांव की गूंज की टीम का उद्देश्य था कि हमारे गांव वीरान न हो, लोग उसकी मिट्टी से जुड़े रहें। और देखो, जब कोरोना हुआ तब हम सब ने देखा कितने गांव की मिट्टी से जुड़े हैं, उनको कम नुकसान हुआ। गांव के दौर में जब हम लोग सब मुसीबत में थे आदि, तब भी सबको आने वाली गांव की मिट्टी ही याद आई।
1: इसलिए तो हमारी टीम कहती है कि अपनी मिट्टी की खुशबू कम ना होने दीजिए, उसे आबाद रखिए, उसे ना भूलिए। मुसीबत के समय, परेशानी के समय सिर छुपाने आप वहीं जाते हैं।
2: जब से आप लोगों के गांव की गूंज की टीम के साथ जुड़े हैं, तब से बराबर देख रहे हैं। जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो लोग अपने गांव वापस आ जाते हैं। कोरोना में तो लाखों लोग अपने घर वापस लौट आए थे। अब बेंगलोर में पानी की समस्या, सुकून तो अपने गांव की मिट्टी में ही मिलता है।
3: हमारी जिम्मी कितनी सयानी हो गई है, कितनी समझदारी की बातें करने लगी है। चलो, हमारे दूसरे गाने की धुन भी तैयार हो गई है, सुन लो तुम लोग।

0: पता है जब हमारे बड़े भैया बैंगलोर जा रहे थे तो बहुत दुखी मन से जा रहे थे, पर भाभी को गांव में रहना पसंद ही नहीं है। जब कभी बेचारी गांव में रही ही नहीं तो गांव की वैल्यू क्या ही जाने।
1: हाँ हरिओम भैया, कल भाभी ने हमको भी फोन किया था और कह रही थी कि जब हम लोग बैंगलोर जा रहे थे तब बहुत खुश थे कि चलो गांव से पीछा छूटा, पर दादी साथ समझा रही थी कि गांव की मिट्टी को बंजर मत होने देना, घर की चौखट को हमेशा बनाए रखना, जब भी छुट्टी हो घर आती रहना। पर बहू, समय के चक्र को तुम जानती नहीं, और ये याद रखना कि जितनी भी परेशानी आए गांव की मिट्टी कभी भूखा नहीं रहने देगी।
2: सच कह रही हैं आप। सोचिए, आज बेंगलोर में लाखों कमाने वाले लोग भी पानी के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। करोड़ों के घर हैं लोगों के पास, एक से बढ़कर एक बाथरूम है, पर एक बाल्टी पानी के लिए लोग तरस रहे हैं।
3: पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे शहर और हमारे गांव में यह समस्या ना हो, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। अभी तो गर्मी की शुरुआत है। अब की मौसम विभाग की चेतावनी है कि गर्मी बहुत प्रचंड पड़ेगी। हम सब क्या करें? चलो मिलकर कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं जिस पर हमें काम करना है।
4: पानी की समस्या से निपटने के बारे में अगर आज से नहीं सोचेंगे तो आने वाली जनरेशन के पास तो पीने को साफ पानी रहेगा ही नहीं। पूरी जानकारी हम लोग इस समस्या पर काम करते हैं। शंकर चाचा चाची गोरखपुर से आए हुए हैं और पूरे गांव की गूंज की टीम के लिए टेरी कोटा से सामान लाए हैं। तुम सब ले जाना और गोरखपुर पर एक गाना है, वह भी सुनते जाओ।
5: गोरखपुर के, हाँ गोरखपुर के।
4: अरे क्या,

0: सबसे पहला काम हम सबको करना है कि पानी को बचाना है। पूरे पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से ढका है, पर पीने योग्य पानी अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 1% है। पूरी पृथ्वी का 97% पानी समुद्री है यानी खारा, 2% ग्लेशियर और पर्वत है। बचा जो 1% है वो हम पीने के काम में लेते हैं और घर के बाकी काम में लेते हैं।
1: इतना कम पानी है हम लोगों के पास, हम अब गिलास में उतना ही पानी देंगे जितना पीना है, नहीं तो 2 घूंट पीते हैं और बाकी सब फेंक देते हैं।
2: ठीक कह रही हैं संता दीदी, अभी कल ही मैं एक शादी में गई थी और वहाँ जैसे ही बारात वाले पहुँचे सबको एक एक बोतल पकड़ा दी। अब सभी ने बस 1 या 2 ही घूंट पानी पिया और बाकी पानी फेंक दिया। अब किसी को दोबारा प्यास लगे तो वो दूसरी बोतल ले लिया करता था। अब इसमें देखिए पानी कितना ज्यादा वेस्ट हुआ।
3: अरे हाँ, आज तक तो हम भी यही करते थे, पर अब से नहीं करेंगे। किसी भी पार्टी में जाएंगे, जब तक एक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक दूसरी नहीं लेंगे, और दूसरों से भी यही कहेंगे कि जितना पानी पीना हो उतना ही ग्लास में लीजिए।
4: गांव की गूंज की टीम का सेव वाटर की मुहिम का ये पहला कदम, और दूसरा कदम ब्रश करते समय नल चलाकर छोड़ नहीं देंगे, नहाते समय बेकार में पानी बहने नहीं।

0: 30% शुद्ध जल हमें अंडरग्राउंड वाटर से मिलता है, पर अंडरग्राउंड वाटर का मुख्य सोर्स जो है वो वर्षा है। और आप सभी न्यूज में सुनते ही रहते होंगे कि वर्षा प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिसमें अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो नहीं पाता, और वर्षा का पानी सोखने के लिए जमीन ही कितनी कम बची है। हर जगह तो घर, सड़क, पुल बनते जा रहे हैं, और वर्षा का पानी सोखने के लिए जमीन ही कितनी कम बची है। करोड़ों का घर बनवाएंगे, पर बरसात में अपने घर में पानी का संचय कैसे होगा, इसका कोई भी उपाय नहीं करेंगे। आजकल गमले का फैशन चलने लगा है, घर में पेड़ पौधे लगाने का फैशन चला है। तो अगर घर आप बनवा रहे हैं तो घर में एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दें, जिससे क्या हो, बरसात का पानी सोख कर जमीन के अंदर चला जाए।
1: हमारे एक अंकल हैं, उन्होंने छत के पानी को पीवीसी पाइप लगाकर बड़े बड़े टैंक में स्टोर कर लिया था, और कई दिन तक उसी पानी से कार को धोने का काम, बगीचे में डालने का काम करते हैं। देखो, हमारे पास फोटो भी है। तब हम सोच रहे थे कि ये सब बेवकूफी है, पर आज समझ आ रहा है कि कितना अच्छा काम किया है उन्होंने।
2: आज ही हम घर जाकर पापा से बोलेंगे कि क्या पापा, इस बरसात में हम लोग बारिश के पानी को बचा सकते हैं? एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है हम लोगों ने। अपना जो लान था ना, उसको हमने भैया से कह के बहुत ही जिद करके बोला कि भैया इंटरलॉकिंग वाला टाइल्स लगवा दीजिए, जबकि भैया भाभी दोनों बहुत मना कर रहे थे इसको लगवाने के लिए।
3: श्वेता मैम, जब जागो तभी सवेरा, अभी काम शुरू नहीं हुआ है, रुकवा दीजिए। जब हम सही होंगे तभी तो लोगों को अच्छी बातें सिखा पाएंगे।
4: अपने घर के पास पानी से भरी बाल्टी या नादा लगवा दीजिए, जिससे सड़क के कुत्ते, आवारा जानवर प्यास से ना मरे। और छत पर एक मिट्टी के बर्तन में पानी रखें, जिससे चिड़ियों को पानी मिले और हम सब की बूंद बूंद की कोशिश और कितने को जीवन दान मिलेगा।

0: ये गाना किरण दीदी बिट्टू की शादी के लिए तैयार किया गया है। बहुत ही ज्यादा सुंदर है। गांव में छोटे छोटे गड्ढों में पानी डालने के लिए सरकार पैसे भी देती है और साथ में ताल भी खुदवाती है सरकार, पर प्रधान पैसे खा जाते हैं और उतना अच्छा काम तो करते नहीं है। और गांव के लोग बेचारे ठहरे सीधे साधे, प्रधान से पूछ भी नहीं पाते हैं। और हम लोग की टीम का काम है जागरूकता फैलाना और लोगों को बताना कि उनका अधिकार क्या है।
1: हमारी नदियों और झीलों की गहराई इतनी कम होती जा रही है क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है। गहराई कम होने के कारण बरसात के पानी इकट्ठा होने की जगह से बहुत जगह भी कम होती जा रही है। बेंगलोर में भी न्यूज में था कि जो लेक थे उस पर बिल्डिंग बन गई। इन्हीं सब कारणों से पानी की कमी हो रही है।
2: अरे हाँ यार, यहाँ पर भी तो पीछे तालाब था जिसमें बरसात का पानी चला जाता था। पिछली बार तो बरसात में करीब एक महीने तक कॉलेज और गली में पानी भरा हुआ था। लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था।
3: अपनी परेशानियों का कारण हम स्वयं हैं। अब बेंगलोर में ही देखो, हर किसी को वही नौकरी करनी है। वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, पर कल ही हमने देखा कि वहाँ का तापमान लखनऊ से 1 डिग्री ज्यादा था। बर्फ के गोले खाते खाते यह लोकगीत सुनो, हम नहीं खाएंगे, गला तुरंत पकड़ लेता है।

0: पानी की परेशानी को दूर करने के लिए पेड़ों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जहाँ पेड़ हमें गर्मी से राहत पहुँचाते हैं, वहीं गांव और शहर के तापमान में कम से कम 2-3 डिग्री का अंतर होता है। हवा को शुद्ध रखते हैं पेड़। जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ एसी कूलर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। रात में तो आज भी लोग छत पर, आंगन में या बाहर चारपाई लगाकर मच्छरदानी के अंदर सोते हैं और सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाते हैं। बिल्कुल हेल्दी लाइफ होती है उनकी।
1: पता है, पेड़ लगाने से उस एरिया में वर्षा ज्यादा होती है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी के जंगल में होती है। फिर जब हम सबको पता है कि जहाँ ज्यादा पेड़ होंगे वहाँ ज्यादा वर्षा होगी, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, उसकी सेवा करते और रक्षा करें, जिससे हमारे यहाँ कभी पानी की समस्या ही ना हो।
2: समता मैम, आजकल मौसिन राम करके जगह है, वहाँ माना जाता है कि चेरापूंजी से भी ज्यादा बारिश होती है। दोनों बहुत पास है, पर अभी इस बात पर विवाद ही चल रहा है कि कहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है।
3: हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहाँ जब भी वर्षा हो और वर्षा के पानी को हम लोग संचित करें, पानी को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। अगर पानी के मूल्य को नहीं समझेंगे तो हम भी और हमारी भी सिचुएशन बैंगलोर वासियों की तरह हो जाएगी। पानी के लिए हमें भी लाइन लगाना पड़ेगा।
4: और इस महंगाई के युग में पानी को हर काम के लिए खरीद रहे होंगे। हम सबको पानी को बचाना है, उसके मूल्य को समझना है। गांव की गूंज की पूरी टीम संकल्प लेती है कि पानी की हर बूंद बचाएंगे। पानी का हर बूंद बचाते चलो, जीवन का हर जश्न मनाते चलो।
5: अरे महंगाई का जमाना,

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: हुक्कई से खेलन जइबो।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

हाँ जी दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी का आनंद भी उठा रहे हैं। भैया, जिंदगी हमारी बड़ी रंगीन है क्योंकि रंगों से ये भरी हुई है, लेकिन हम ऐसे अंधे हैं भाई कि हमें रंग नहीं दिखते, हमें सब फीकी चीज़ें ही दिखती हैं। लेकिन मैं अगर बताऊँ तो भाई, अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो सभी दुखों के पीछे कोई ना कोई खुशी का रीज़न आपको मिल ही जाएगा। इसीलिए सारे दुख को हटाइए, लेकिन ज़िंदगी जीना बिल्कुल भी ना भूलिए। फिलहाल आज आप जानते हैं कि आज है दिन शुक्रवार, और शुक्रवार के दिन मैं आती हूँ लेके कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें, कुछ ऐसी रोचक चीज़ें जो आपको जानना चाहिए। जी हाँ, देखिए आज इसी तरह से इसी परंपरा को निभाते हुए आरजे आयुषी लेकर आई हूँ आप ही के अपने बहुत ही पसंदीदा शो ज्ञानश्री लाइव में एक ऐसी बात जो शायद हम सब ने नोटिस की होगी, हमें खूबसूरत भी लगी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की होगी। जी हाँ, देखिए आज का शो तो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होने वाला है सच में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जो हमारी मम्मी दादी नानी के अलमारी से लेकर के आज इंस्टाग्राम तक हर जगह दिखती है। पता है क्या है वो? नहीं पता, मैं बताती हूँ भैया। वो है छोटे छोटे गाँठे। जी हाँ, वही चमकीले ब्राइट कलर और वो फीलिंग जब आप अपनी साड़ी को देखते हैं, अपने दुपट्टे को देखते हैं, तो दिल कहता है कि यार ये तो चाहिए। मतलब अगर आपके पास कितनी भी साड़ी है, कितने भी सूट हैं, इट डजेंट मैटर, बट आपको नई चीज़, और स्पेशली ये जिस कला के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसकी कोई भी चीज़ दिख जाए तो आपका दिल ऐसे अंदर से चीख के कहता है कि इसे तो लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ज़रा सोचिए कि जो दुपट्टा आपकी मम्मी ने अपनी शादी में पहना था, वही डिज़ाइन शायद आज भी शॉप में नया बोल के आपको दे रहे हैं, और यही है बांधनी का जादू। अब आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ये कभी पुरानी नहीं होती दोस्तों, ये एक ऐसी कला है जो साल दर साल लोगों को जोड़ती रहती है एक धागे से। आज हम समझेंगे कि भैया ये बांधनी आखिर है क्या। देखिए, बांधनी का एक नाम और है जिसे हम बंधेज भी कहते हैं। बंधेज और बांधनी एक ही चीज़ का नाम होता है। सिंपल मैं आपको बोलूँ तो कपड़े के छोटे छोटे से हिस्सों को उंगली से पकड़ के टाइटली धागे से गांठ लगाई जाती है, बांधा जाता है, फिर उसको रंग यानी कि डाई में डाल के रंगा जाता है। जब धागा हम खोलते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा डॉट या फिर हम कह सकते हैं गोल गांठ रह जाता है जिसमें रंग नहीं लगता। अब वो जो फीकी चीज़ होती है ना, जहाँ पे रंग नहीं लगता है, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है उस पर कि हम सभी का दिल उस पर आ जाता है। और जब ऐसे ही हज़ारों डॉट्स गांठें मिल जाती हैं तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सुंदर सा डिज़ाइन बन जाता है, जिसे हम लहर वेव्स के पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसको फूल का शेप देते हैं, कई कोई अलग शेप देते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि ये सब हाथों से होता है, कोई मशीन नहीं लगती इसमें। और अच्छा कारीगर एक दिन में हज़ारों गांठें बांध सकता है। मैं आपको बताऊं, आप खुद सोचिए, आप एक धागा उठाइए, उस धागे पे आप कोशिश करिए कि आप 10 गांठें बांधें, और 10 गांठ जब आप बांधेंगे तो आपको लगेगा अरे कितना हुआ, अच्छा भी 4 हुआ, अच्छा रुको, अच्छा भी 6 ही हुआ। सोचिए आपको कितना वो आप परेशान रहते हैं कि 10 गांठें जल्दी जल्दी हो जाए, आपको उसी में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होने लग जाएगी। लेकिन सोचिए कारीगर की कला कितनी बेहतरीन होती है कि वो एक दिन में हज़ारों गांठें बांध लेता है, और इतनी तेज़ी से और इतनी सफाई से कि गांठ बांधते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि आखिर ये हम सही बांध रहे कि नहीं। पर प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि जब वो गांठ बांधते हैं और जब वो गांठ रंग के खुलता है तो इतना बेहतरीन डिज़ाइन निकलता है कि आप खुद सोचेंगे कि भैया ये कारीगर के हाथों में, कहते हैं ना, एकदम जादू ही है। और अब हम बात करते हैं इसकी खूबसूरती की। देखिए बांधनी के जो रंग होते हैं वो देखिए बांधनी में अक्सर हम लोग लाल, सुनहरा पीला, गहरा हरा, नीला, या फिर ऐसे चटक कपड़े जैसे हम कहते हैं ना चटक रंग है, जैसे इंग्लिश में ब्राइट कलर कहते हैं, वो रंग ज़्यादातर बांधनी में यूज़ होता है। एक ही कपड़े पे 2-3 रंग आपको मिल ही जाएंगे, और फिर भी कुछ अजीब नहीं लगता उसमें, कुछ ऐसा नहीं लगता कि भैया सारे ही रंग एक ही जगह पे डाल दिए हैं, बल्कि वो इतना खूबसूरत लगता है कि आप खुद सोचेंगे कि भाई कलरफुल चीज़ें वाकई बहुत खूबसूरत होती हैं। और ये कोई भी बनाया हुआ डिज़ाइन नहीं है, ये सालों से प्रैक्टिस पे आया है, सालों की मेहनत है, एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्व किया है लोगों ने, और ये एक ऐसी कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी हमारे भारत में काफ़ी जगह चलती आ रही है। आपने दोस्तों अपनी मम्मी को, जिनके पास बांधनी दुपट्टा होगा या साड़ी होगी, आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जब कोई पूजा पाठ या शुभ काम होता है तो वो लोग ये कपड़े ज़रूर पहनती हैं, स्पेशली वो चीज़ें जो हमारे कल्चर से जुड़ी हुई है, जिसमें से बांधनी एक ऐसी कला है।
और सबसे ज़रूरी बात तो ये है दोस्तों कि इसका कल्चर का मतलब बहुत ज़्यादा गहरा है। दोस्तों बांधनी सिर्फ कपड़ा ही नहीं है बल्कि एक फीलिंग है, एक परंपरा है। अब बेसिकली अगर हम बात करें बांधनी की, तो गुजरात और राजस्थान में जब शादी होती है और बांधनी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। दुल्हन अपनी शादी में जो है वो पहनती है एक ऐसा कपड़ा, एक ऐसा दुपट्टा जिसे हम कह सकते हैं जो बंधेज का होता है। और आपको तो पता है कि राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में आज भी सफ़ेद कपड़े की बहुत ज़्यादा अहमियत है। वो लोग ऐसी साड़ी पहनते हैं या ऐसा लहंगा पहनते हैं जिसमें सफ़ेद रंग ज़रूर होता है और फिर उस पर लेते हैं गहरे लाल का बांधनी दुपट्टा जो कि उनके सुहाग का प्रतीक होता है। और गुजरात में ये आज भी माना जाता है कि जो सफ़ेद रंग होता है वो शिव हैं और जो लाल रंग होता है वो पार्वती हैं। और इनका शादी में या कोई ऐसे ओकेजन पे जो बहुत ज़्यादा अहम हो उसमें इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आज अगर हम बात करें तो उनके जो शादी होती है उसमें मायके के घर से, जिसे हम पेके का घर कहते हैं गुजराती में, वहाँ से ये ज़रूर आता है। और ये कहते हैं कि इसे हम घर चोला भी कहते हैं। और जब हम इसे पहनते हैं तो ये बताता है कि हम आखिर हमारी जो ज़िंदगी है उसका एक बहुत अहम हिस्सा हमारे साथ जुड़ चुका है और हमारी ज़िंदगी अब अपनी कह सकते हैं एक तरीके से पूरक की ओर जो है जा रही है। क्योंकि जो शिव और पार्वती होते हैं उनको कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनको भी शिव पार्वती का रूप माना जाता है। और बंधेज का उसमें स्पेशली एक जगह होती है, एक कॉर्नर होती है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। हमें भी लगेगा कि भाई कल्चर सिर्फ वो चीज़ नहीं है कि भाई हमारी दादी करती थी, हमारी नानी करती थी, ये तो बहुत पुराना हो गया। नहीं, इसका क्रेज़ अगर आप देखेंगे तो आज भी आपको, आप इंस्टाग्राम खोलिए, फेसबुक खोलिए या किसी भी ऐसी सोशल मीडिया वेबसाइट देख लीजिए, आपको एक दिन रील स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको बांधनी बंधेज ऐसी कोई ना कोई चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी और आपका मन भी वहीं देख के अटक जाएगा कि भाई अब की लेना है। हालांकि देखिए भाई, मैं क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मेरा भी दिल शॉपिंग पे बहुत लटकता है और मैं भी ये सोच रही हूँ कि भाई मुझे रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन पे कपड़े लेने हैं तो ज़रूर से मैं कुछ बंधेज का लूँगी। आपने कभी सोचा ये कि हम सब उत्तर प्रदेश से हैं और हमें गुजरात की चीज़ों से इतना लगाव कैसे हो गया, कैसे बंधेज जो है ये उत्तर प्रदेश में आया और आज तो ये पूरे विश्व में फेमस है? इसके पीछे कोई तो कारण होगा ना, लेकिन क्या हो सकता है? कभी गौर किया है आपने? नहीं क्या? चलिए मैं भी इस पर गौर करती हूँ और इस पर बात करते हैं कि आखिर ये पूरे देश में फैला कैसे और देश से लेकर के विदेश तक कैसे पहुँचा। और सबसे अहम बात तो ये है कि आज बांधनी का, बंधेज का इतना क्रेज़ है कि इवन जो बाहर के लोग होते हैं, जो बाहर की कंट्री के हैं, चाहे वो अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उनको इतनी डिमांड क्यों है बांधनी की? आखिर क्या ऐसा स्पेशल है इसमें? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक पर मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना हमारे साथ क्योंकि आज इस रंग बिरंगे शो को हमें एंजॉय करना है, समझना है, सीखना है और अपने कल्चर के प्रति थोड़ा सा और प्यार बढ़ाना है। स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आज के इस बहुत ही प्यारे से रंग भरे शो को एंजॉय भी आप कर रहे होंगे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कला की जो बहुत ज़्यादा रंगीन है, मैं कह सकती हूँ इसको कि जीवन में खुशियाँ भरने वाली एक कला है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ भाई, लेकिन सबसे पहले चलते हैं इसकी शुरुआत की ओर। देखिए, मैं यानी कि आपकी आरजे आयुषी फिर से अपने ही शो जिसे मैं आज चाहती हूँ इसको नाम देना, जिसका नाम है रंग दे बंधेज के साथ। जी हाँ, चलो अब टाइम मशीन को थोड़ा सा पीछे घुमाते हैं और थोड़ा पीछे चलते हैं हज़ारों साल पहले, यानी कि बहुत ही हज़ारों साल पहले, क्योंकि बांधनी की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी हिंदुस्तान की पुरानी है। जी हाँ, सुन के आप चौंक जाओगे कि बांधनी का कनेक्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। जी हाँ, यानी लगभग 4000 से 5000 साल पुराना। सोचो, जब दुनिया में इतनी चीज़ें नहीं थी तब भी हमारे पुराने लोग ये काम करते थे। और सबसे अच्छी बात तो दोस्तों ये है कि अजंता की गुफाओं में जो 5 से 6 सदी पुरानी है, और हम सब यही कहते हैं कि हाँ, कैसे मैं आपको समझाऊं कि मैं इस चीज़ को आपको, कि जैसे अगर हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ के जो पेंटिंग है ना, जो अजंता की गुफाओं में है, उसमें भी ऐसे कपड़े दिखाए गए हैं जो जिसमें जो है हमारी बंधेज कला दिखती है। अब आप सोचिए कि ये कला कितनी पुरानी है और कब से ये कला हम संभाल के अपनी धरोहर के रूप में आगे बढ़ाते आ रहे हैं। अब थोड़ी जगह की बात करते हैं, कुछ लोग के पास उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सिंध से, जी हाँ, जो कि पाकिस्तान में है, और वहाँ से गुजरात और राजस्थान तक इस ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है। और वहाँ से एक ग्रुप है, इसे उन्होंने अपनाया, जिसे हम कहते हैं खत्री लोग। जी हाँ, जो लोग इस चीज़ को, इस कला को अपनाए हैं, उन्हें हम खत्री कहते हैं। आज भी उनका ये काम जो है, ये सबसे बड़ा क्रेडिट इस कला का उन्हीं को जाता है जिन्होंने सालों तक इसे ज़िंदा रखा। जब हिंदुस्तान के कुछ ही इलाकों में, जिसे हम सिंध का इलाका, गुजरात और राजस्थान जानते हैं, वहाँ तक ये सीमित था, तब भी इससे कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था, लेकिन फिर भी खत्री जो समुदाय है उन्होंने इसको काफ़ी दिनों तक संजो के रखा। एक पुरानी किताब में भी इसका जिक्र होता है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसका नाम है बना भटकी हरीश, जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी और लिखी, कह सकते हैं कि ऐसी किताब है जिसमें इसका बहुत बड़ा जिक्र है, जिसमें बांधनी जैसी चीज़ का भी जिक्र मिलता है। कहते हैं कि पहली बार बांधनी साड़ी किसी बड़े राजा की शादी में पहनी गई थी। कितना खास होगा ना उसका बैकग्राउंड। अब आप सोचिए कि आप अपनी शादी में, और आज भी कई लोग ऐसे हैं जो अपनी शादियों में, हमारे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में पीली रंग की जो साड़ी होती है, जिसे हम पियरी कहते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन आज क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, किताबों से जुड़े हुए हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो कल्चर में रियली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनको जो है बंधेज के बारे में जब पता लगा, और आज भी हम खुद, मैं खुद अगर मैं आपको बताऊं तो मैं भी एक इसी जेंजी का ही हिस्सा हूं, और मुझे खुद बंधेज बहुत पसंद है। और मैंने लोगों को ये देखा भी है कि लोग, सावन आ गया है, सावन में शादियों के सीज़न में लहरिया और बंधेज की डिमांड बिल्कुल पीक पे रहती है। हर शादी की जो शॉपिंग होती है, जो लोग करते हैं, उसमें हमने ये ज़रूर देखा है कि लोग यही कहते हैं कि भैया थोड़ी लहरिया साड़ी दिखा दीजिए, थोड़ी बंधेज साड़ी दिखा दीजिए, हमें शादी में पहनना है, या विदाई होगी या फेरे होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है और अभी तक हमारे दिल में कैसे राज कर रही है। अब बात करते हैं मुग़ल के टाइम की। जी हाँ, जब मुग़ल लोग आए थे तो उन्होंने भी इस काम को सपोर्ट दिया था।

किया गया था, पर्शियन स्टाइल, जो कि हमारे मुगल जो है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और अब क्या हुआ, जब मुगल आ गए तो उन्होंने बंधेज को पर्शियन से मिक्स कर दिया। मतलब ये आपको मैं बताऊं कि जो भी चीज़ें आई बांधनी पहले से अभी तक जो आप देख रहे हैं वो एक इवोल्यूशन के थ्रू आई, यानी कि उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए, काफ़ी सारी चीज़ें नई आई, लेकिन जो इसका रियल बंधेज है ना वो उसका क्रेज़ आज भी है। आज भी अगर आप राजस्थान या गुजरात घूमने जाएंगे तो आपको हर दूसरी दुकान पर इसका काम ज़रूर दिख जाएगा। और फिर आते हैं भैया ब्रिटिश टाइम पे। जी हाँ, ब्रिटिश, जहाँ पे हमारे कहते हैं ना अंग्रेज़ का ज़माना जो था, तो उस अंग्रेज़ के ज़माने में भी इस कपड़े का बहुत ज़्यादा नाम हुआ करता था। ट्रेड के थ्रू बांधनी के कपड़े बाहर भेजने लग गए, और जब ये बाहर जाने लग गए तो उस टाइम पे जो अंग्रेज़ होते थे उन्होंने इस कपड़े को, मैं आपको कोई ड्रेस नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने लहंगा ही लिया, साड़ी ही ली, दुपट्टा ही लिया, उन्होंने इस कपड़े के ड्रेसेस बनाने लग गए जो कि वेस्टर्न कल्चर में काफ़ी ज़्यादा सराहे गए, जिसमें स्कर्ट थी, फ्रॉक थी, लोगों अपने स्काफ को जो है बंधेज में टाई कराते थे, और ऐसे कई सारे कपड़े थे जो वो लोग यूज़ करते थे और उसको वो बंधेज में बनवाते थे। अब आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे बंधेज इंडिया से निकलकर देश से बाहर गया, यानी हमारे भारत से बाहर गया और इसका क्रेज़ बना। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे सोशल मीडिया की। जी हाँ, हमारे सोशल मीडिया की ताकत तो आप सभी जानते हैं ना। जी हाँ, देखिए एक ऐसी ताकत है सोशल मीडिया में कि किसी भी चीज़ को कह सकते हैं कि बहुत छोटे से बहुत बड़ा कर सकती है। और बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि ये पहले ही हमारे देश से बाहर फैला हुआ है, लेकिन अब हम बात करते हैं यूथ पे, क्योंकि भैया यूथ को तो हर चीज़ें नई नई चाहिए, लेकिन उन्हें अगर पुरानी चीज़ों को नई तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जाए ना तो उसको भी वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से, लगभग हो गया 9 से 10 सालों में, गरबे का बहुत बड़ा क्रेज़ चढ़ गया है यूथ के ऊपर। नवरात्रि आते ही लोगों के दिमाग में ये आता है कि भाई हमें तो गरबा करना है, नवरात्रि में डांडिया खेलना है, और अगर डांडिया गरबा खेलना ही है तो वाई नॉट टू वेयर बंधेज, यानी हम बंधेज क्यों ना पहने। और बंधेज के लिए चनिया चोली हो गया या कुर्ता हो गया, ये लोग अक्सर बंधेज में ही डाई कराते हैं या फिर जो खरीदते हैं उसको उसी प्रिंट में खरीदते हैं। तो आजकल ये जो पुरानी जो परंपरा है, कल्चर है, एक इसका इतनी अनमोल धरोहर है हमारी, ये अब यूथ भी सराहने लग गए हैं और वो भी इसका इस्तेमाल करने लग गए हैं। अब मैं आपको बात अगर करूँ कि हाँ ये कैसे बंधेज हुआ तो हमारे कल्चर का है, लेकिन क्या हमारे कल्चर की हर चीज़ हमें रोज़गार दे रही है, आपको लग रहा है? नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे कल्चर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमने संजो के रखा है, सराहा है, आज भी उस पर हम काम करते हैं, उसको उतनी ही वैल्यू देते हैं, और जब हम किसी चीज़ को सराहते हैं, वैल्यू करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो हमें रोज़गार देती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी संस्कृति है जिसे हमने अभी भी अपने से बिल्कुल हटा रखा है, दूर कर रखा है, और कह सकते हैं कि अपने से दूर कर दिया बिल्कुल उसको, उन चीज़ों से वो चीज़ आज भी आपको नहीं देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर हम बंधेज पे आए तो बंधेज का जो हमने बताया कि खत्री समुदाय है वहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद ये बाहर तक गया, लेकिन जब ये बाहर जाने लगे हमारे देश से बाहर, तो जो हमारे देश के बिजनेसमैन थे उन्होंने इसका बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे शख्स की कहानी जो बंधेज से एक इतना बड़ा कारोबार कर लिया कि जिसे लोग सोच भी नहीं सकते हैं। मैं उन पर बात करूँगी, उनकी कहानी भी सुनाऊँगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक में मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना है हमारे साथ अपने शो ज्ञानश्री लाइव में, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं रंगों की, रंग दे बंधेज की। स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका अपने प्रोग्राम ज्ञानस्थी लाइव में, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं रंगों की, यानी कि हमारे रंगों भरी एक ऐसी धरोहर जिसके बारे में हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन शायद उतनी गहराई से नहीं जितनी वो गहरी है। आज हम उसी पे एक शो लेकर आए हैं जिसका नाम है ज्ञानस्थी लाइव, इसका हमने नाम दिया है रंग दे बंधेज। देखिए, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिन्होंने हमारे कल्चर की चीज़ों से करोड़ों का प्रॉफिट कमाया है, उसे अपना एक काम बनाया है, उससे उनको रोज़गार भी मिला है। लेकिन मैं आपको उसको बताने से पहले मैं खुद आपसे कुछ कहना चाहूँगी। देखिए, अक्सर हम लोग रंगों को, कल्चर को, कल्चरल चीज़ों को, त्योहारों को, हर चीज़ को कहीं ना कहीं हमारे भारतवर्ष में आज के युग में धर्मों से जोड़ दिया गया है कि अगर हरा रंग है तो उसे एक विशेष कम्युनिटी या धर्म जो है वो मानता है, वही पहनेगा। अगर लाल रंग है तो वो एक विशेष धर्म जो है वो अपनाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि रंगों का कोई धर्म होता है? जी नहीं। देखिए, धर्म हम माने, इंसान मान सकता है, जानवर तक चल सकता है, लेकिन रंगों का कोई धर्म नहीं होता। रंग सबके लिए होते हैं। ऊपर वाले ने कभी ये नहीं कहा कि आसमान जब नीला होता है तो वो एक धर्म के लिए है, लेकिन जब वो सफ़ेद होता है या फिर वो बिल्कुल साफ होता है, क्लियर होता है, तो वो एक धर्म के लिए है। अब वो होता है तो हम सभी के लिए होता है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से कोई भी परंपरा हो, कोई भी कला हो, उसका कोई धर्म नहीं होता, वो सबके लिए एक समान है। इस बहुत ही प्यारी सी एक लाइन के साथ मैं आपको वापस से ले चलूँगी इन्हीं सारी चीज़ों की तरफ जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। चलिए, बातों बातों में ले चलते हैं आपको गुजरात। हाँ, वही गुजरात जहाँ की ये कला है। गुजरात के कच्छ में आपको हम ले चलते हैं। कच्छ का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। एक ऐसी जगह जहाँ की मिट्टी में भी रंग है। यहाँ रहने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं और बहुत ही ज़्यादा कला से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज हम जिसकी बात करने वाले हैं उनका नाम है अब्दुल जब्बर और अब्दुल्ला खत्री। जी हाँ, ये भी खत्री हैं जिस समुदाय ने इस परंपरा को शुरू किया था या इस कल्चर को अभी तक संभाल के रखा है। इनकी कहानी दोस्तों शुरू होती है 1992 में, जब उन्होंने शुरू किया अपना काम SIDR क्राफ्ट। मैं आपको फिर से बताती हूँ, SIDR क्राफ्ट। आप अगर इसको गूगल पर भी सर्च करेंगे ना तो भी आपको इनके काम के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, अब ये कोई बड़ी कंपनी वाली कहानी तो मैं आपको नहीं ही सुनाने वाली हूँ कि बहुत ही बड़ी कहानी, लेकिन इस कहानी से मोरल हमें बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। कोई इनके पास बड़ी डिग्री नहीं है, ज़्यादा पैसे भी नहीं है कि भाई बिल्कुल अंबानी की टक्कर के हैं, नहीं। लेकिन ये कहानी एक माँ की है जिन्होंने अपने बेटों को बांधनी सिखाई, क्योंकि वो खुद ये काम करती थी, उन्हें पसंद था। और उनकी सबसे अच्छी बात तो दोस्तों ये है कि उन्हीं के घर में ये काम धीरे धीरे हो रहा था और ये लोगों को पता नहीं था। लेकिन जब इन लड़कों ने, इनके जो बेटे हैं, उन्होंने इस काम को शुरू कर दिया, तब इन्होंने इससे अपनी पूरी पहचान बना ली। उन दो भाइयों ने सोचा कि नहीं, हम इससे ज़िंदा रखेंगे, हम इसको मिटने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे कल्चर से जुड़ी हुई है। और उन्होंने अपनी माँ से ली हुई इस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्किल का ना तो सिर्फ सीखा बल्कि इसको बड़े काम में बदल भी दिया। आज SDR क्राफ्ट जो है वो कच्छ में बांधनी कारीगरों में एक बहुत ही जाना माना नाम है। एक छोटी सी कोशिश से शुरू हुआ एक काम आज पूरे देश का प्राइड बन गया। और ये सिर्फ एक ऐसे इंसान की कहानी नहीं है, ऐसे दो भाई की कहानी नहीं है जो बंधेज कर रहे हैं, ऐसे आपको कई लोग आज के ज़माने में आपको लाखों लोग मिल जाएंगे जो बंधेज का काम करते हैं। लेकिन जब ये काम शुरू हुआ 1992 में, जब हमारे भारत में इतनी ज़्यादा जो है धर्म के नाम पे हमेशा से लड़ाइयाँ होती आ रही हैं और हमेशा ये कहा गया है कि जो इंडिया की बहुत पुरानी परंपराएं हैं वो जो है हिंदुओं से जोड़ी जाती है और कहा जाता है कि ये सभी के लिए नहीं है, लेकिन इन दो भाइयों ने ना तो सिर्फ इस काम को बढ़ाया, इस कल्चर को संजोया, हमारे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा काम किया, बल्कि इन्होंने लोगों को ये भी दिखाया कि कोई भी कला, कोई भी रंग का कोई भी धर्म नहीं होता। और ये अकेला एग्जाम्पल नहीं है दोस्तों, एक और अच्छी कहानी है मेरे पास जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी, वो है KCPC बांधने की। यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा गांव के कारीगर जुड़े हुए हैं। इन्होंने ऐसे कारीगरों को अपने साथ काम पे रखा है जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो अपना काम नहीं कर सकते, पर उनमें एक बहुत बड़ी खूबी है, वो है कला।
और कला किसकी, हमारी रंगीन बंधेज की। ज़्यादातर राजस्थान और गुजरात की औरतें जो हर पीस को अपने हाथों से बनाती हैं, इन्होंने ये ठानी कि हम जितना पुरुष की अपेक्षा हम महिलाओं को ज़्यादा काम देंगे और उन महिलाओं को जिन पे अपने घर की जिम्मेदारी है और जिनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है, वो मेहनत करती हैं और आज अपने दम पे अपना घर भी चलाती हैं और उन्हीं की लगन और मेहनत का नतीजा ये है कि आज KCPC कंपनी बहुत बड़े मकाम पर पहुंच चुकी है। 25,000 से भी ज़्यादा औरतें यहाँ पे ऐसी हैं जिन पे उनके घर की पूरी जिम्मेदारी है और दुकान वालों के साथ ये जुड़ के अपनी ना तो अपनी बंधेज के कपड़ों को सेल करती हैं बल्कि उसे बनाने में भी आपकी मदद करती हैं। अब सोचिए एक छोटी से बांधने का तरीका, सिर्फ एक मामूली गांठ ही तो लगानी है ना, वो कितनी बड़े मकाम पे लोगों को ले जा सकता है, कितना बड़ा कल्चर बन सकता है और अपनी विश्व में कितनी बड़ी पहचान बना सकता है। और यही दोस्तों हमारे भारत की असली एकता है। भारत हमारा सिर्फ कल्चर के लिए जाना जाता है, सिर्फ जो है हमारे त्योहारों के लेकर जाना जाता है या फिर हमारे खानों को लेकर जाना जाता हो, ये आप जो भी समझते हो, लेकिन हमें ये पता है कि भैया जो भारत है ना वो एकता के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। जब जब हमारा भारत एक हुआ है, भारतीय एक हुए हैं, तो कोई भी इंसान, चाहे वो अंग्रेज़ हो, मुग़ल हो, कोई भी हम पे जुर्म नहीं कर पाया है, कोई भी हमारे सामने हमें आँख नहीं दिखा पाया है। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आऊँगी और मैं आपसे बात करूँगी और भी बंधेज पे, लेकिन आप आइए चैट बॉक्स में और आप ये बताइए कि आप बंधेज के बारे में कितना जानते हैं, क्या सोचते हैं इस बहुत ही बेहतरीन कला के साथ। और अगर आपके घर में, अगर आप एक मेल हैं, तो मैंने देखा है कि जो बंधेज है इसको, हाँ चलिए चलिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के पास लेके चलूँगी, वो है कि हमने बात तो कर ली कि रंग का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आप ये बताइए कि कोई जो कल्चर होता है क्या उसका किसी भी जेंडर से लिंक होता है। आप सोचेंगे ये क्या कहना चाहती है, मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए हमारे भारत में आज भी ये कई सारी धारणा बन रखी है कि जो कल्चर होता है वो एक जेंडर स्पेसिफिक होता है, कि बंधेज के जो कपड़े होते हैं या बंधेज का जो प्रिंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए होता है, आदमियों के लिए नहीं होता। आपने कभी ऐसा सोचा है? ज़रूर सोचा होगा भाई, अभी आप ना कर दें कि नहीं नहीं नहीं हम तो ऐसा नहीं सोचते जी, लेकिन आप जब कपड़े खरीदने जाते हैं ना, तो अगर आपको कोई बंधेज का कुर्ता दिखा दे तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं कोई सादा सा दिखा दो, कोई प्लेन सा दिखा दो। लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि भैया हमारे भारत के पुरुष जो कि बहुत बड़े मकाम पर थे, उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने हमारे कल्चर जो चीज़ें हैं उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनाया और ये हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट किया कि कोई भी कल्चरल चीज़ों की कोई भी ऐसी टेक्सटाइल नहीं है जिसको हम एक जेंडर स्पेसिफिक कर सकते हैं। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस बहुत ही अहम मुद्दे पे।

हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट और दोस्त आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम ज्ञानसी लाइव, जिसमें हम बात कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा प्यारी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको पीछे छोड़ दिया है, उसको धर्म, जेंडर, रंग, रूप, देश सब पे हमने तौला है। लेकिन कहते हैं ना कि हम किसी भी, हम सूरज के आगे कितने भी बादल आ जाएं, सूरज तो अपनी जगह बना ही लेता है चमकने के लिए। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जो हमारी बंधेज है एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारी कला, उसने कहीं ना कहीं अपना जो कह सकते हैं स्थान है वो अभी भी अपना कायम कर रखा है और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही जा रहा है। आज तक कोई भी, ना मुगल, ना ब्रिटिश, ना हम खुद ऐसे नहीं हो पाए जिसने कभी भी इस कला को छुपा पाए हैं, क्योंकि हमारे भारत में ही कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे समुदाय हैं, कुछ ऐसी बिरादरी है जिन्होंने आज भी इस कल्चर को संजो के रखा है। ना तो सिर्फ इससे अपना रोजगार चलाते हैं बल्कि इस कला को अपनी पूजा और अपना धर्म मानते हैं। फिलहाल ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कि भैया कई लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि जो बंधेज के कपड़े होते हैं वो सिर्फ स्त्रियों के लिए होते हैं, यानी कि औरतों के लिए होते हैं। या तो बंधेज की साड़ी बनेगी, या तो दुपट्टा होगा, या सूट बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या होगा। और अगर हम लोग आदमियों के बारे में सोचते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार शादी में शेरवानी का दुपट्टा जो है वो बंधेज कर सकते हैं, या फिर सिर्फ मोदी जी पहन सकते हैं रिपब्लिक डे पे, ज़्यादा से ज़्यादा और तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम नहीं पहन सकते, हम पे नहीं अच्छा लगेगा, सिर्फ लड़कियों की चीज़ है ना। आपने ज़रूर सोचा होगा, आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते। और जब मैंने ये सवाल उठाया था तब भी आपके दिमाग में आया होगा कि नहीं करते तो हैं पर चलो कह देते हैं कि हमने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन मैं जानती हूँ कि भाई आप ज़रूर करते हैं, हमें पता है कि आप ये करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत के इतिहास के बहुत दिग्गज लोग, जिनका अगर मैं आपको नाम बताऊं तो महाराणा प्रताप जी को तो आप सभी जानते हैं, जो कि मेवाड़ के राजा थे। उन्होंने, महाराणा प्रताप ने अपने समय में राजपूत योद्धा रंग बिरंगे बंधेज लहरिया पगड़ी भी बांधी थी। वो जो कपड़े पहनते थे उसमें लहरिया प्रिंट होता था और इस वस्त्र को ना तो वो सिर्फ एक कपड़ा मानते थे बल्कि सम्मान से और वीरता एक राजपूती पहचान दी और इसको अपने पे धारण करते थे, या फिर उसे हम कह सकते हैं उसे पहनते थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो सवाई जयसिंह द्वितीय, जो कि जयपुर के राजा थे, उन्होंने भी बंधेज और लहरिया को शाही शाफे का नाम दिया था और एक ये बताया था कि जो बंधेज है वो हमारी जो बिरादरी है, हमारी जो धरोहर है एक ऐसी जिसको हमें संजो के रखना है। और उन्होंने ये संदेश दिया था अपने पूरे समाज में, पूरे राजपूती समाज में, कि इसके हम अपना ख़त्म हो सकते हैं लेकिन अपनी कल्चर को ख़त्म नहीं होने दे सकते हैं। आज भी जोधपुर, जयपुर के जो शाही परिवार होते हैं वहाँ पे कोई भी आयोजन होता है उसमें आपको जो साफा है लोगों का, जो पगड़ी है जिसे हम कह सकते हैं, वो बंधेज की ही मिलेगी। मेवाड़, जोधपुर के जो राठौड़ महाराजा हैं वहाँ पे भी होली, दशहरा या फिर कोई राज्य समारोह होता है वहाँ पे भी बंधेज का इस्तेमाल ज़रूर होता है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ जो राजस्थानी पेंटिंग्स होती हैं उसमें भी बंधेज ज़रूर दर्शाया जाता है, क्योंकि वो हमारी कला एक ऐसी है जो राजस्थान और गुजरात से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है और आज ये पूरे देश में, पूरे विदेश में, हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में फैली हुई है। उसके बाद हमने बात की कि आज भी जो है कच्छ में इसका बहुत बड़ा काम होता है, एक खत्री समुदाय है जो इसको लेके आज भी आगे बढ़ा रहा है। ये एक शाही पहचान, सम्मान का प्रतीक और त्यौहार की शान माना जाता है हमारे भारत में। और अगर हम बात करते हैं अपनी शादियों की तो वो उससे तो आप सभी जानते हैं कि भाई हम सब कितना प्यार करते हैं और कितना इसको सराहते हैं। आज भी हमारी दादी नानी हैं, हमारी चाची हो गई, बुआ हो गई, इनके पास आपको लहरिया साड़ी या फिर बंधेज साड़ी ज़रूर मिल जाएगी। हालाँकि मैं आपको बताऊँ कि लहरिया भी जो है बंधेज का एक पार्ट है, लेकिन वो एक सेपरेट है बट इससे लिंक्ड है, उस पर भी हम किसी दिन बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए बंधेज के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने जानी, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपने सीखा होगा और अब आप अपनी कलाओं को एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यू या फिर सम्मान आप देने लग जाएंगे और उसको वापस लाएंगे, क्योंकि भाई ऐसा ना हो कि हम हमारे जो पूर्वज करते आ रहे हैं, हमारी धरोहर को संजोते आ रहे हैं, हमने इसे छोड़ा तो आगे वाली जनरेशन शायद इसके बारे में कुछ ना जाने, तो इसको आगे बढ़ाना हमारा काम है। फिलहाल लेते हैं इसी थॉट के साथ आपसे विदा, मिलेंगे आपसे कल अपने शो स्वास्थ्य संगिनी में, जिसमें हम स्वास्थ्य को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते रहिए। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी, हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में, और मैं हूँ आपका अपना आरजे अदनान। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जब हम किसी बच्चे के उज्जवल भविष्य के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्कूल, अच्छे शिक्षक, अच्छा माहौल, है ना?
2: बिल्कुल, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो उसका भविष्य अपने आप सवर जाता है।
0: बात तो सही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अच्छे स्कूल तक पहुंचने से पहले भी बच्चे की एक यात्रा शुरू हो चुकी होती है, और उसी यात्रा की शुरुआत तय करती है कि आगे उसकी नींव कितनी मजबूत होगी।
2: अरे मतलब बच्चे का भविष्य स्कूल से भी पहले ही शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल, जरा और पीछे चलिए।
2: अच्छा, तो क्या जन्म के बाद?
0: नहीं, उससे भी पहले।
2: उससे भी पहले? अब तो आप हमारी उत्सुकता बढ़ा रहे हैं, आखिर कब से?
0: विशेषज्ञों का कहना है कि एक बच्चे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत उसकी माँ से होती है। जब एक महिला स्वस्थ होती है, उसे पर्याप्त और संतुलित पोषण मिलता है, तभी उसके बच्चे को भी जीवन का मजबूत आधार मिलता है, यानी एक मजबूत शुरुआत होती है।
2: यानी बच्चे का भविष्य केवल उसके जन्म के बाद नहीं, बल्कि माँ के स्वास्थ्य और पोषण से ही तय होना शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल, जब हम मातृ पोषण की बात करते हैं तो हम केवल एक महिला की सेहत की बात नहीं कर रहे होते, जब हम उस शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो उसे स्वस्थ गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ बच्चे की जन्म की ओर ले जाता है। हम उस मजबूत नींव की बात कर रहे होते हैं जिस पर पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी का भविष्य खड़ा होता है।
2: और शायद यही वजह है कि आजकल हर जगह मातृ पोषण पर जोर दिया जा रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा, हाल ही में संपन्न हुए पोषण पखवाड़ा ने भी हमें यही संदेश दिया है कि जीवन के शुरुआती वर्षों में मिलने वाला सही पोषण केवल शरीर ही नहीं बल्कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास और उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करता है।
2: यानी अगर शुरुआत सही हो तो आगे की राह भी मजबूत बनती है।
0: बिल्कुल, और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया सिंह जी और हमारी साथी टीकन देवी जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
3: धन्यवाद आरजे जी और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
4: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार।
0: सेहतिया जी, अभी हमने बात की कि बच्चे के भविष्य की शुरुआत उसकी माँ से होती है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बस पेट भर खाना खा लिया वही काफी है। क्या सचमुच में माँ का पोषण इतना महत्वपूर्ण होता है?
3: बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और यह केवल गर्भावस्था की बात नहीं है। जब किसी महिला को रोजाना संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलता है तो उसका शरीर मजबूत रहता है, उसमें काम करने की ऊर्जा रहती है, वह कम बीमार पड़ती है और अपने परिवार की बेहतर देखभाल भी कर पाती है। लेकिन जब वही महिला माँ बनने वाली होती है तब उसका शरीर सिर्फ उसका अपना ही नहीं रहता है, गर्भ में पल रहे बच्चे को मिलने वाला हर पोषण उसके शरीर से पहुँचता है। इसलिए माँ जितनी स्वस्थ होगी बच्चे की शुरुआत भी उतनी बेहतर होगी।
4: यानी माँ जो खाती पीती है उसका सीधा असर बच्चे तक पहुँचता है।
3: बिल्कुल, गर्भ में पल रहे बच्चे का पूरा विकास, उसका शरीर, उसके अंग, यहाँ तक कि उसके मस्तिष्क का विकास भी माँ के स्वस्थ और पोषण पर ही निर्भर करता है।
2: अच्छा, यानी माँ की थाली जितनी पौष्टिक होगी बच्चे का भविष्य भी उतना ही मजबूत होगा।
3: बिल्कुल सही कहा।
0: सेहतिया जी, आपने पोषक तत्वों की बात की, आजकल एक शब्द और सुनने को मिलता है एनीमिया, यानी कि खून की कमी। आखिर ये समस्या कितनी गंभीर है?
3: यह बहुत गंभीर समस्या है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कई महिलाओं को वर्षों तक पता ही नहीं चलता है कि उन्हें खून की कमी है। वो कमजोरी, थकान या चक्कर आने को सामान्य बात समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन जब शरीर में पर्याप्त खून नहीं होता तो शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती है, इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है।
2: ओ, इसलिए हमेशा उन्हें थकान रहती है।
3: बिल्कुल, जल्दी थक जाना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सांस फूलना, काम करने की क्षमता कम होना, ये सब खून की कमी के सामान्य लक्षण हैं। लेकिन अगर यही समस्या गर्भवती महिला में हो तो जोखिम भी और बढ़ जाता है।
0: और किस तरह का जोखिम?
3: समय से पहले प्रसव हो सकता है, कम वजन वाले बच्चे का जन्म हो सकता है, और प्रसव के समय अगर ज़्यादा रक्त स्राव हो जाए तो पहले से एनीमिक महिला के लिए स्थिति जानलेवा भी हो सकती है।
2: अरे, हम तो हमेशा यही समझते थे कि खून की कमी का मतलब बस थोड़ा कमजोरी महसूस करना होता है।
4: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। एनीमिया सिर्फ कमजोरी नहीं है बल्कि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। अगर माँ एनीमिक है तो बच्चे में भी आयरन की कमी, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक विकास में रुकावट जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
0: यानी इसकी कीमत सिर्फ माँ नहीं बच्चा भी चुकाता है।
4: बिल्कुल, इसलिए आज एनीमिया मुक्त भारत अभियान के माध्यम से किशोरियों, महिलाओं और गर्भवती माताओं तक आयरन की गोलियां, नियमित जांच और पोषण संबंधी जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
2: लेकिन सेहतिया जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्भ ठहरने के बाद ही अच्छा खाना शुरू करना चाहिए, क्या तैयारी उससे पहले से भी जरूरी है?
3: बिल्कुल, स्वस्थ गर्भावस्था की तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए। अगर एक किशोरी स्वस्थ है, उसका भोजन संतुलित है और उसे आयरन की कमी नहीं है तो भविष्य में गर्भावस्था भी अधिक सुरक्षित रहती है।
4: यानी एक स्वस्थ माँ बनने की शुरुआत एक स्वस्थ बेटी से होती है।
3: आपने बिल्कुल सही कहा।
0: हाल ही में पोषण पखवाड़ा का मुख्य विषय बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर था। क्या पोषण का दिमाग से भी इतना गहरा संबंध होता है?
3: बिल्कुल, बच्चे के मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है। उस समय आयरन, फोलिक एसिड, आयोडीन और DHEA जैसे पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही पोषक तत्व आगे चलकर बच्चे की सीखने, समझने, याद रखने और नई चीजें सीखने की क्षमता की मजबूत नींव रखते हैं।
2: और इसी से जुड़ा एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं, पहले 1000 दिन। आखिर इसका मतलब क्या है?
4: पहले 1000 दिन यानी गर्भधारण से लेकर बच्चे के 2 साल तक का होने का समय। विशेषज्ञ इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर मानते हैं। इसी दौरान बच्चे के मस्तिष्क, शरीर और रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे तेजी से विकास होता है। अगर इस पूरे समय सही पोषण और सही देखभाल मिले तो बच्चे के स्वस्थ और सक्षम नागरिक बनने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
3: टीकन जी, अब श्रोताओं को ये भी बताइए कि बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या होती है?
4: सबसे जरूरी चीज है बच्चे के जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना। बहुत से लोग पहले दूध को फेंक देते हैं, जबकि यही सबसे बड़ी गलती है। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चे के लिए पहली प्राकृतिक सुरक्षा का कवच होता है। ये उसे कई संक्रमणों से बचाता भी है। इसके बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, घुट्टी या कोई भी दूसरी चीज नहीं देनी चाहिए।
5: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो?
3: तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, फल, अंडा और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
5: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो?
3: तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, मौसमी फल, अंडा जहां परिवार खाता हो, दही और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरुआत थोड़ी थोड़ी मात्रा से करें और धीरे धीरे बच्चों की उम्र के अनुसार भोजन की मात्रा और विविधता बढ़ाते जाएं।
2: यानी हमें महंगे या बाजार के पैकेट वाले खाने की जरूरत नहीं है, अगर घर में उपलब्ध पौष्टिक चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे को अच्छा पोषण मिल सकता है।
4: बिल्कुल, कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा पोषण मतलब महंगा खाना, जबकि सच ये है कि हमारे घरों और आसपास मिलने वाली दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, चना, मूंगफली, दूध, दही और अंडा जैसे खाद्य पदार्थ भी बहुत पौष्टिक होते हैं। जरूरी बात है कि भोजन संतुलित हो और समय पर दिया जाए।
5: सेहतिया जी, आज की पूरी चर्चा से एक बात साफ समझ में आती है कि बच्चे की अच्छी शुरुआत तभी संभव है जब माँ खुद स्वस्थ और पोषित हो।
3: अक्सर हम बच्चों के जन्म के बाद उसकी देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि स्वस्थ बच्चे की शुरुआत एक स्वस्थ माँ से होती है। इसलिए हर लड़की, हर किशोरी और हर महिला के पोषण का ध्यान रखना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, केवल उसकी अपनी नहीं।
2: और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि अगर हम एक माँ को स्वस्थ बनाते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी मजबूत बना रहे हैं।
4: बिल्कुल सही। परिवार में अक्सर महिलाएं सबसे आखिर में खाना खाती हैं या अपनी जरूरतों को सबसे अंत में रखती हैं। लेकिन अब समय है कि हम ये सोच बदलें। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी वो अपने बच्चे, परिवार और समाज की बेहतर देखभाल कर पाएगी।
5: और इसमें परिवार के बाकी सदस्यों की भी बराबर जिम्मेदारी है। पति, सास ससुर और घर के दूसरे लोग अगर गर्भवती महिला को समय पर भोजन, आराम और स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करें तो इसका सीधा फायदा माँ और बच्चे दोनों को मिलता है।
3: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान नियमित जाँच, डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह का पालन करना आयरन फोलिक एसिड की गोलियां समय पर लेना, संतुलित भोजन करना और पर्याप्त आराम करना, ये सभी बातें मिलकर एक स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करती हैं।
2: यानी पोषण केवल खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सही जानकारी, समय पर जांच और परिवार के सहयोग से भी जुड़ा हुआ है।
3: बिल्कुल सही कहा आपने। जब सही जानकारी और सही व्यवहार साथ आते हैं, तभी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं।
5: श्रोताओं, आज की इस चर्चा में हमने कई महत्वपूर्ण चीजें सीखी। हमने जाना कि बच्चे के जीवन की सबसे मजबूत नींव उसकी माँ के स्वास्थ्य और पोषण से शुरू होती है। गर्भावस्था से पहले किशोरियों को अच्छा पोषण, गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार, एनीमिया से बचाव, नियमित स्वास्थ्य जांच और आयरन फोलिक एसिड का सेवन, ये सभी स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे के लिए जरूरी हैं।
2: तो श्रोताओं, हमने ये भी समझा कि बच्चे के पहले 1000 दिन उसके पूरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करना, पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना और उसके बाद समय पर पौष्टिक पूरक आहार शुरू करना बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है।
4: और मैं सभी बहनों और परिवारों से ये कहना चाहती हूँ कि अपनी सेहत को कभी भी नजरअंदाज न करें। समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाएं, अपनी नियमित जांच कराएं, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां स्वास्थ्यकर्ता की सलाह के अनुसार लें और घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
3: अगर आपके मन में पोषण, गर्भावस्था या बच्चे की देखभाल से जुड़ा कोई सवाल हो तो अपने नजदीकी आशा कार्यकर्ता, एनम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र से जरूर संपर्क करें। सही जानकारी ही सही निर्णय लेने की सबसे बड़ी ताकत है।
5: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से बस इतना ही। याद रखिए, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे की पहली शिक्षक, पहली पोषण दाता और पहला सुरक्षा कवच होती है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा, परिवार खुशहाल होगा और हमारा समाज भी मजबूत बनेगा।
2: इसी उम्मीद और इसी संदेश के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नए संदेश के साथ।
3: धन्यवाद। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अपने परिवार की महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का विशेष ध्यान रखें।
4: धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं खत्म होता है और जाने से पहले लेंगे हम शपथ।
5: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।

भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपतियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मेनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप
3: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है
5: आरजे अंशिका। तो भाई मिल गया है इंतजार का आप सभी को करार, कह लूं मैं मैम कि क्या कह लूं, मतलब हाँ। दो दिन से और मेरे पास मैसेज पे मैसेज, आरजे समता जी कहाँ हैं, क्यों चली गई हैं, आपने उनको कहाँ भेज दिया है, सासू माँ की आवाज क्यों नहीं आ रही है, आप अकेले क्यों, मतलब मैं
4: सवाल क्यों, अच्छे काम के लिए गई थी मैं,
5: नहीं अच्छे काम के लिए तो आप ऑफकोर्स, लेकिन

0: इतना मिस कर रहे थे कि मैं मैसेज का जवाब देते देते देते देते मैंने शायरी भी उसमें पढ़ दी, लेकिन फिर भी इन लोगों को वो नहीं हुआ, मुझे जवाब देते रहना पड़ा।
1: अच्छा तो
0: होल सेल में मिस किया सभी,
1: होल सेल में मिस किया है। वाओ, तो भाई मैं आ गई हूँ और बहुत ही चंगे वाले मूड में हूँ, और क्या बता दूँ यार कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, और ना मुझे करनी है वो चीज़ें एक्सप्लेन, क्योंकि कुछ कहते हैं ना, कुछ एहसास जो होते हैं ना वो दिल में दबे हों, और हर एक नस नस में अगर वो एहसास फैला हुआ हो तो उस एहसास को बाहर नहीं किया जाता है।
0: वाह,
1: आई थिंक सो,
0: यस बिल्कुल। मतलब मैं तो ये बात कहूँगी कि मैम अभी जब मैं आई और मैम स्माइल कर रही थी, तभी मैं समझ गई थी कि 100% वाला, जैसे कहते नहीं है कि आप पूरे साल मेहनत करते हो और फिर जब रिजल्ट 100% आता है तो खुशी होती है ना, तो वैसी कुछ थी खुशी। तो मुझे लगा कि काम जो गई थी,
1: जो काम करने के लिए भेजा था, हाँ,
0: वो हो गया और बहुत सक्सेसफुल हुआ, और दुआ है ऐसे ही रहे
1: जी। तो चले आगे बढ़े, एंड कहते हैं ना कि जब हम काम से बहुत थक जाते हैं तो ब्रेक चाहिए होता है, आई नीड अ ब्रेक कहते हैं ना।
0: yes.
1: तो वो ब्रेक अगर अच्छा वाला ब्रेक हो तो फिर तो जिंदगी बन जाती है, आई थिंक, मुझे लगता है, और ऐसा ब्रेक सभी को लेना चाहिए अपनी लाइफ में,
0: है ना।
1: तो चलिए फिर हम फटाफट अभी शुरू करते हैं आज की पोयम को लेकर के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वाला अच्छा वाला जो एक सेगमेंट होने वाला है हमारा आज का ब्यूटीफुल डे, आप सभी को पता है ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल जो डे है हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए आज की पोयम मुझे लग रहा है कि मैं देती हूँ अंशिका को पढ़ने के लिए।
0: तो आइए आज की पोयम पढ़ते हैं, और आज की पोयम का जो शीर्षक है वो बहुत ही प्यारा है, जो कि है रिश्तों की डोर। तो आज कुछ रिश्तों की डोर से डोर को जोड़ते हैं, कुछ एहसासों को महकाते हैं, कुछ एहसासों में चलिए अपने संग हम आपको भी पिरोते हैं, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना वो बहुत प्यारे होते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी पोयम को। तो कुछ यूँ शुरू होती है, रिश्ते होते हैं मोतियों की माला जैसे, रिश्ते होते हैं मोतियों की माला जैसे, सहेज कर रखो इन्हें कांच के प्याले जैसे, बिना कहे जो दिल की बात समझ जाते हैं जिंदगी में वो लोग बड़े नसीब से आते हैं। वाह क्या लाइन है, बिना कहे जो दिल की बात समझ जाते हैं जिंदगी में वो लोग बड़े नसीब से आते हैं। नाराजगी में भी छुपा हो जहाँ प्यार,
1: और देखो मैंने इसीलिए कहा कि आदंशिका पढ़े, क्योंकि पूरी पोयम जो है ना ये मेरे ऊपर है।
0: ऑफ कोर्स,
1: मुझे लग रहा है
0: बिना किसी शर्त के,
1: जी
0: बिना किसी शर्त के जहाँ मिले बेपनाह प्यार, वो रिश्ता ही क्या जिसमें कभी टकरार ना हो,
1: जी
0: वो रिश्ता ही क्या जिसमें कभी टकरार ना हो, रूट कर जो मान जाए वही तो सच्चा यार है,
1: जी
0: वक्त की धूप में जो ठंडी छांव बन जाते हैं, मुश्किल रास्तों में जो हम सफर बन जाते हैं, दौलत से नहीं ये तो एहसासों से महकाते हैं, सच्चे रिश्ते तो हमेशा दिलों में धड़कते हैं। दूरियां चाहे कितनी भी आ जाएं कम नहीं होती उनकी महक, जो मन के उपवन में रहते हैं, सजा कर रखना इस अनमोल तोहफे को सदा दिल में, क्योंकि रिश्ते ही होते हैं जो जीने का असली मजा दे जाते हैं।
1: ओह माय गॉड,
0: क्योंकि रिश्ते ही होते हैं जो जीने का असली मजा दे जाते हैं।
1: तो इसीलिए तो आज मेरे हाथों से पोयम छिन गई ना, मतलब अंशिका पोयम लेकर के आई थी, और जैसे मैं आई तो अंशिका ने कहा कि आज मैं पोयम पढ़ूंगी, मैंने कहा ठीक है पोयम तुम आज पढ़ो, और अच्छा ही हुआ, क्योंकि पूरी पोयम मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर डेडिकेट है
0: 100%,
1: है ना। एंड रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ आज मैं बताऊंगी आपको।
0: तो आज हमने चेंज किया है
1: और रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ ना मैं एग्जैक्टली सच वाला फैक्ट आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ।
0: वाह,
1: सच्ची वाला जो फैक्ट है रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, कि जिंदगी में आप जिसे कहते हैं ना कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, तो कुछ ऐसे डिटॉक्स बनाते हैं, पानी वाला बनाते हैं, चाय वाला बनाते हैं, कॉफ़ी वाला बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, और बहुत सारे डिटॉक्स आजकल हैं, तो वो हम बनाते हैं और अपनी पेट को अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। आपने कभी सोचा है कि हम अपनी मन को, हम अपनी दिल को और हम अपनी आत्मा को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं?
0: कैसे?
1: बहुत सिंपल सा है, मन आत्मा और दिल अपनी और अपने मस्तिष्क को डिटॉक्स करने का सिंपल एक तरीका होता है कि जब आप अपने काम से बहुत ज्यादा वाला भर जाओ, त्रस्त हो जाओ, ठीक है
0: जी,
1: तो आप एक दिन या डेढ़ दिन, ठीक है
0: जी,
1: तो आप एक दिन या डेढ़ दिन ऐसे इंसान से बात करो, ऐसे इंसान के पास चले जाओ जो आपको लगे कि वर्ल्ड की सारी खुशियां वो इंसान मुझे दे सकता है या दे सकती है। फीमेल फ्रेंड्स होते हैं, मेल फ्रेंड्स होते हैं, कोई रिश्तेदार होते हैं, व्हाटएवर जो भी है। ज्यादा खराश ना हो तुम्हें गले में?
0: नहीं नहीं, कल से ही है, रात से ही है मैम।
1: ये वो
0: वाला
1: हो गई?
0: नहीं नहीं, ये वो वाला नहीं था।
1: अच्छा,
0: ये एक्चुअल वाली है।
1: अच्छा, मुझे लगा आप मुझे छेड़ रही हैं।
0: नहीं नहीं, ऐसा नहीं।
1: तो अगर ऐसा आपकी जिंदगी में है तो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ यही है कि आप उन्हें गेन करें, आप उन्हें अपनाएं और आप अपने को डिटॉक्स करें उस इंसान के पास जा करके। क्योंकि ये जो एक जो आज का समय है ना, जो वर्तमान का समय है वो अपना है, जो बीत गया और जो आने वाला है वो अपना नहीं है। जो समय चल रहा है ना वो अपना होता है। तो इसमें जी भर के जियो, जी भर के खुश रहो और जी भर के अपनों को प्यार दो। यही है आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
0: वाह, जबरदस्त। कैसे कहते हैं ना कि कोई जब आता है वापस कहीं से, मतलब बाहर से, तो एक आशा होती है ना कि नई एनर्जी होगी, कुछ नए ख्याल होंगे। तो भाई मैम तो बहुत ही अच्छा सा एक नया, बिल्कुल न्यू हम कह लें थॉट लेकर के आई हैं। बहुत ही प्यारा है मैम, थैंक यू सो मच। लेकिन आज कुछ रह गया।
1: क्या?
0: अभी तक हमने शुभ दोपहरिया नहीं कहा।
1: ओह माय गॉड, कोई बात नहीं है। वो आज जैसे कहते हैं ना कि जब हम कहीं से घूम के आते हैं तो जल्दी जल्दी इतनी एक्साइटमेंट होती है ना, सब कुछ बात करने की, बताने की। तो अभी लिसनर्स से मतलब रूबरू होने की मुझे भी बहुत जल्दी थी, इसीलिए शायद ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, चलिए हम एक ही साथ एक ही फ्रेम में विश करेंगे। लेकिन उसके पहले आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है
0: सुन सहेली
1: विद आरजे समता एंड
0: आरजे अंशिका।
1: एंड प्यारी सी दोपहर में एक ही साथ एक ही फ्रेम में
0: शुभ दोपहरिया।
1: आइए सुनते हैं लिसनर्स बहुत ही प्यारे से गाने को और उसके बाद हम आएंगे आज के टॉपिक, जो कि हमारा आज का टॉपिक रहेगा बहुत ही अच्छा और आज है हमारा फ्राइडे।
0: तो चलिए लिसनर्स चलते हैं, सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग, आप भी सुनिए और एंजॉय करिए। और आज ये किसी खास के लिए है।

0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9970-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है
4: आरजे अंशिका
3: जी।
4: तो भाई आज तो क्या मैं कह दूं कि मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही गुड गुड गुड वाली फीलिंग हो रही है मुझे। कुछ ऐसा मैंने सुना है अभी कि मतलब ऐसे जैसे वो नहीं चलता, मूवी होती है बहुत ही अच्छी सी और
3: आप कुछ ऐसा मूवी के तरीके से ही मानो कि
4: कोई वैसे ही कुछ फीलिंग मुझे अभी भी आ रही थी कि हीरो है, हीरोइन है, अच्छे अच्छे सीन्स हैं, वाह मतलब मजा आ गया। तो चलिए अब काम पे आ जाते हैं क्योंकि वर्क भी जरूरी है, क्योंकि मतलब अगर पता है लिसनर्स आपको, अगर इतनी प्यारी प्यारी बातें आप सुनेंगे ना तो कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाएंगे। जैसे अभी 5 मिनट पहले मैं भूल गई थी कि मुझे क्या करना है, क्या कहना है, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ, मतलब हम वापस आ गए,
3: हम अपने दौरे पे आ गए हैं। हाँ। और कमल नयन जी आ गए हैं एंड मुझे लग रहा है कि अक्षरा सिंह भोजपुरी कुछ हमारी नई लिसनर है आ गई हैं एंड आप सभी का भी स्वागत है, अभिनंदन है। एंड हमारी सभी लिसनर्स जो कि हमें रेडियो FM से सुन रहे हैं और जो हमें फ्रिक्वेंसी से सुन रहे हैं उन सभी का भी स्वागत है, अभिनंदन। एंड जल्दी से सभी लोग आ जाइए क्योंकि आज आपकी आर्य समता आ गई है यथास्थान।
4: बिल्कुल यथास्थान वापस आ गई है। और भाई वापस कहते हैं ना कि कहीं आप गए और वहाँ से वापस आए हो तो कुछ पॉजिटिविटी लेकर, थे तो मैम तो बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर के आई हैं और पॉजिटिविटी का बहुत ही प्यारा सा असर है, तो आज कुछ बात भी पॉजिटिव करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा नेगेटिव से ले जाकर पॉजिटिव की ओर बात करेंगे।
3: ओके।
4: आप सभी को बताएं कि आज है हमारा फ्राइडे
3: जी।
4: फ्राइडे यानी कि रिश्तों पे बात होती है, तो आज हम बात करेंगे कि देखिए रिश्तों में हमेशा कहा जाता है ना मैम कि दूर रहोगे तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि दूर रहकर रिश्ते अच्छे कैसे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। कई बार देखिए ऐसा होता है ना कि हमें दूर रहना है लेकिन फिर भी अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, हम 24 घंटे साथ नहीं रह सकते लेकिन फिर भी मेंटेन करना है, तो वो कैसे करना है ये बताना है।
3: अच्छा जी
4: जी,
3: ये है बात,
4: ये है बात।
3: ओके, तो यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस में अगर कोई स्ट्रेस प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्यों आती है और उसका निवारण, तो मैं ये चाहती हूँ कि वो क्यों आती है वो ये बता दें, उन्हें तोड़ना, उन्हें बनाना, उनका निवारण जो होता है वो मैं बताऊंगी आपको।
4: यही होता है।
3: क्या होता है?
4: तोड़ना, बनाना, निवारण निकालना।
3: एक्चुअली घर के बड़े बुजुर्ग क्यों होते हैं?
4: यही करने के लिए।
3: तो यही बात है बस।
4: बस बस। आई नो मैम, आई नो वेरी वेल। मैम सबको समझाती है, मैम को कोई नहीं समझाता है।
3: अंशिका समझाती है ना मुझे?
4: नहीं, मैं समझा सकती हूं।
3: मुझे समझाने वाले लोग भी आ गए हैं इस पृथ्वी पर। वो एक्चुअली अभी नहीं आए क्योंकि अभी आए होते तो 1 साल के होते,
4: रास्ते में
3: महीने के होते, नहीं आ गए वो प्रॉपर उससे।
4: अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके ओके। तो भाई अब तो ये रास की बात है कि आरजे समता सभी को समझाती है, कोई आरजे
3: पर उनको समझाने वाला आ गया।
4: ओह माय गॉड
3: जी, चलें।
4: तो चलिए भाई, वो कहते हैं ना बहुत ही अच्छा वो पेयर होता है, जैसे जब तक अब तक हम मैम को कहते थे, उनको प्यार से कहते थे कि मैम हमारी शेरनी है, शेरनी है, शेरनी है, तो लगता है अब शेरनी से शेर का टाइम आ गया है। क्यों मैम?
3: शेर नहीं नहीं,
4: अच्छा
3: शेरनी, शेरनी तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन
4: आई नो आई नो
3: कि जैसे हर एक के जीवन में एक ऐसा समय आता है कि जब वो किसी ना किसी इंसान से डरता है या डरती है,
4: डरता
3: है या डरती है, फॉर मतलब एज अ लव,
4: आई नो मैम,
3: एज अ लव। ओह माय गुडनेस,
4: अरे वाह।
3: चलिए चलिए चलिए टॉपिक को
4: जी
3: कंटिन्यू
4: करते हैं
3: जी।
4: तो अब हम आपको बताते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में स्ट्रेस क्यों होता है। देखिए, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा ना कि ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जहां आप दूर हो, महीनों नहीं सालों, कई बार जॉब की वजह से या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से दो लोग एक साथ नहीं रह पाते, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मैरिड कपल्स में भी हस्बैंड की जॉब अलग सिटी में लग जाती है, वाइफ की जॉब अलग सिटी में लग जाती है, लेकिन उन्हें मैनेज करना है, मतलब ये देखना है कि वो एक अच्छी सी रिलेशनशिप भी मेंटेन हो और काम भी चलता रहे, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आज सबसे पहला पॉइंट ये है कि कम्युनिकेशन कभी कम नहीं होनी चाहिए,
3: मतलब
4: वो एक गैप नहीं,
3: बातचीत
4: प्रॉपर होनी चाहिए,
3: भले प्रॉपर होनी चाहिए और बीच में कम्युनिकेशन मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
4: बिल्कुल
3: जी,
4: भले आप दूर रह रहे हैं लेकिन वो एक शेड्यूल बना होना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। अब तो बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी भी एडवांस है, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना कि ये एक, पता है, ये एक थ्योरी होती है, मैं आपको बताऊं कि जैसे हम फोन पे जब कॉलिंग बात करते हैं तो सिर्फ आवाज सुनते हैं, वो भी आपको एक बेटर फीलिंग देता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम फेस टू फेस इंटरेक्ट होते हैं तो वो एक अलग से पॉजिटिविटी होती है कि अच्छा हाँ तुम ठीक हो, और मतलब
3: देख करके हाँ, एक हीलिंग
4: पावर अलग से आ जाती है। और कहीं ना कहीं पार्टनर्स में ये भी बना रहता है, मन में एक विश्वास बना रहता है कि मुझसे दूरी सही, लेकिन वो जहाँ पे भी है या वो जहाँ पे भी है वो सेफ है। सबसे मेन बात ये,
3: यानी कि मतलब कॉलिंग के साथ साथ हमें वीडियो कॉलिंग भी करनी चाहिए।
4: एक बार आप दिन में करें या दो बार करें, जैसे आपकी टाइमिंग हो, आपके पास टाइम हो,
3: जैसे आप बताएं,
4: नहीं जैसे आप बताएं नहीं, जैसे जिसके पास,
3: जैसे लिसनर्स को आप बताएं कि वो कितनी सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं या फिर सिर्फ एक टाइम कर सकते हैं, जैसा आप बोले।
4: जैसे होता है ना डिनर लंच, नहीं
3: सुबह दोपहर शाम,
4: ब्रेकफास्ट डिनर,
3: तीन डोज होते हैं ना, दवाई के तीन डोज होते हैं ना, नाश्ता और फिर खाना,
4: खाना
3: एक दोपहर का खाना, एक
4: रात का खाना,
3: ठीक। तो आप इसके अलावा आप शाम का भी खाना है जोड़ सकते हैं,
4: शाम की चाय जोड़ सकते हैं, स्नैक्स
3: है, चाय है और सुबह की चाय है, तो आपको मतलब जब भी मन करे आप कर सकते हैं।
4: रात को सोने के बाद में, मतलब सोने
3: के बाद में,
4: नहीं सोने से पहले,
3: सोने के पहले भी आप,
4: स्लिप हो गया था, सोने से पहले दूध पीते हैं, वो भी हम ऐड कर सकते हैं,
3: वो भी ऐड कर सकते हैं,
4: मतलब दिन में 5-6 बार चल सकता है
3: जी।
4: आप 5-6 बार करिए, नहीं ऐसा नहीं है 5-6 बार नहीं, बट फिर भी 2 या 3 बार दिन भर में करना चाहिए, ताकि एक पार्टनर को फील हो कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर है बट वो सेफ है। कई बार हम कहते हैं ना, अरे पता नहीं कैसे होंगे, क्या होंगे, ठीक भी होंगे या नहीं, तो वो एक एहसास कराना सेफ्टी जोन का जो है वो बहुत जरूरी होता है, इससे स्ट्रेस नहीं होता है
3: जी।
4: दूसरा और सबसे मेन पॉइंट जो है वो ये होता है कि भले ही आप एक दूसरे से दूर हो, एक दूसरे को तो कभी ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। जैसे जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं तो ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं, जैसे होता है ना कि कई बार आपने मान लीजिए फोन किया या फोन
3: नहीं उठा,
4: हाँ तो हम ओवरथिंक करने लग
3: नहीं उठा तो मन में ये बातें आती है, पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे मतलब फंसे हुए हैं, कुछ ऐसे नहीं या फंसी हुई है, ऑफिस में इतना काम था, देखो आज भी उसने मुझे कॉल नहीं किया, ये वो दुनिया की चीजें।
4: तो मैम ने भी आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो वो नहीं करना है ओवरथिंक,
3: ओवरथिंक नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं, अरे उसे कोई नया मिल तो नहीं गया, उसे कोई नई मिल तो नहीं गई,
4: बिल्कुल
3: ये भी होता।
4: तो ये वाला एक जो थॉट होता है ये तो बिल्कुल ही मन में ना लाएं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। देखिए कई बार हमारा शेड्यूल बहुत बिजी होता है, नहीं टाइम हो पाता है, या फिर जैसे मैं अपना ये आपको बता देती हूँ कि एक बार मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे 3-4 बार कॉल किया और मैं इमरजेंसी में फंसी हुई थी, मतलब मैं अलग थी, कुछ ऐसे हो गया था मेरे घर पे और मैं उसमें फंसी हुई थी, और उसने मुझे 6-7 कॉल किए और उसने बोला कि तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, बाद में बहुत झगड़ा हुआ। तो मैंने बाद में उसको बताया कि देखो मेरी फैमिली इमरजेंसी थी, कुछ हो गया था, पापा की तबीयत नहीं ठीक थी और मैं वहाँ फंसी हुई थी। तो ठीक इसी तरीके से हम नहीं जानते, देखिए जिससे आप दूर हैं, अब मेरी फ्रेंड वो लखनऊ बैठी हुई थी मैम, तो उसे क्या पता कि मेरे घर पे मेरे पापा बीमार हैं, इस वजह से मैंने उसकी 7 कॉल्स नहीं उठाई। तो ठीक इसी तरीके से कि अगर आप सामने वाले के साथ नहीं होते हो ना, तो आपको ये नहीं पता है कि उसकी सिचुएशन क्या है। हो सकता है हम सोच रहे हैं कि इंसान बड़े मजे से है, मस्ती से है, हो सकता है उसकी कोई हार्ड सिचुएशन हो, कहीं फंसा है, कुछ भी है। तो ओवरथिंक करने की जगह बात करें, सोचें समझें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा आपका साथ देता है वो होता है आपका पेशेंस, तो उसको प्लीज़ बनाए रखें, क्योंकि लोग बहुत जल्दी अपने पेशेंस को खो देते हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो एक रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। तीसरा आता है कि सबसे ज्यादा जो हमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर देता है वो होता है हमारा अकेलापन। अकेलापन कब खलता है, जैसे फेस्टिवल्स पे या किसी खास मौके पे। मान लीजिए आपका बर्थडे है और किसी कारण से आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है, या कोई फेस्टिवल है, हम फेस्टिवल पे मिस करते हैं कि अरे यार देखो दिवाली है, होली है, या कोई भी छोटा मोटा फेस्टिवल।
3: कहने का मतलब ये है कि अगर फेस्टिवल है, बर्थडे है, तो हम उनके साथ सेलिब्रेट।
4: हाँ, ये एक बहुत अच्छा मौका होता है। देखिए, अच्छा एक बात बताइए मैम, हम फेस्टिवल दिवाली होली क्यों सेलिब्रेट करते हैं?
3: खुशी के लिए।
4: खुशी के लिए। और साल भर में एक बार दिवाली आती है।
3: फैमिली भी तो है, थोड़ी नहीं है कि हाँ।
4: ऑफ कोर्स फैमिली है, लेकिन साल में एक बार दिवाली आती है। हम क्या कहते हैं कि दूर दूर से लोग टाइम निकाल करके अपनी फैमिली के पास आते हैं सिर्फ सेलिब्रेट करने, भले दो दिन बाद वो फिर चले जाते हैं अपने काम के लिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप दिन के आधे घंटे बिताओ, एक घंटे बिताओ, लेकिन जो खास मौके होते हैं उन पर हमें साथ होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम आए हैं तो हम पूरे दिन दो दिन रह करके तभी जाएंगे।
3: हाँ।
4: ऐसा नहीं, आधे घंटे एक घंटे बस उनको ये फील होना चाहिए कि है मेरे साथ है। क्योंकि देखिए, जब बर्थडे होता है या कोई भी खास मौका होता है, तब अगर हम अकेले होते हैं तो हम उस एक इंसान को मिस करते हैं। इसलिए कभी वो अकेलापन, वो खालीपन और वो मौका नहीं देना चाहिए। और ये दोनों के लिए, मतलब कहने का मौका नहीं देना चाहिए
3: जी।
4: और ये दोनों के लिए, मतलब कहने का सेंस ये, मेल हो या फीमेल हो, दोनों को ही ध्यान रखना चाहिए, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही, कि ये गैप कभी भी ना आए रिश्तों में। तीसरी बात होती है कि कई बार क्या हो जाता है ना, कि दूर रहते रहते हमारे मन में ये हो जाता है कि कौन जाए, रहने दो, काम बहुत है, बाद में जाएंगे। कहीं ना कहीं एक हैबिट बन जाती है कि इन चीज़ों को टालना शुरू कर देते हैं। वो कभी नहीं होना चाहिए। रिश्तों में चीजों को टालिए मत, आपको आपकी प्रायोरिटी देखनी है। देखिए, जैसे मान लीजिए हम काम करते हैं तो हम हमारे काम को तो पूरी प्रायोरिटी देते हैं ना, कि ये नहीं, मुझे ये टास्क इतने दिन में पूरा करके देना है, क्योंकि वो मेरा ऑफिस है, मेरा कार्यस्थल है और मुझे उसको करना ही करना है। ठीक उसी तरह प्रायोरिटी पे आपको अपने रिश्तों को भी रखना चाहिए कि अगर मैं आधा काम अपने टाइम को, अपना आधा टाइम अपने काम को दे रही हूँ, तो मुझे आधा टाइम अपने और रिश्तों को भी देना है। अगर मैंने नहीं दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
3: एग्जैक्टली। आते हैं इसके निवारण पे अंशिका
4: जी मैम,
3: इसका क्या उपाय करना चाहिए?
4: उपाय
3: उपाय है ना,
4: उपाय।
3: तो उपाय के लिए हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक।
4: अच्छा।
3: और ब्रेक के उस पार आएंगे, हम उपाय जानेंगे। एंड अक्षरा जी, अगर आपको हमारी बातें बुरी लगी हैं तो वो बातें एक्चुअल में सही हैं, एंड बाय शाय आप मत बोलिए।

0: ठीक है, ये एक कम्युनिटी रेडियो है और आप यहाँ पर ये नहीं लिख सकते हैं कि ये आपका पहला ऐसा रेडियो है जहाँ आप बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करने के लिए तो हम लोग टोकेंगे आपको, अदरवाइज जो भी आपको ठीक लगे फिर आप वैसा कर सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पर मेरे जितने भी लिसनर्स हैं उन सभी को पता है कि हम लोग बात जो भी हैं हम सभी आजेस, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हम कोई भी अगर कंटेंट लाते हैं, बहुत ही मेहनत करके हम लोग आप तक बातों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और उसमें भी आप लोग अगर बातें करें तो ये थोड़ी सी बात ठीक नहीं लगती है।
1: बिल्कुल, देखिए कहते हैं ना कि हमेशा किसी के एफर्ट्स की कद्र करनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: अगर आप हमारे एफर्ट्स की कद्र नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है। हर बार हम आपसे कहते हैं और प्यार से हम्बल से कहते हैं कि प्लीज बात मत करिए।
0: बिल्कुल,
1: उसकी जगह पे आप हम जो बातें कर रहे हैं उस पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए ना कि नहीं मैम ये ऐसे नहीं, ऐसे भी होता है, या ये आपने बहुत सही कहा, या जो भी आपके मन में।
0: हाँ, ऊपर से अगर आप हमारे इस FM के बारे में बोलेंगे तो अगर आप बाय बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है वो फिर ठीक ही होगा कि अगर आपको फिर आप जैसा ठीक समझे। लेकिन आप इस तरीके से जो क्वेश्चन लिख रही हैं, जो आप लिख रहे हैं या लिख रही हैं, आई डोंट नो कि आप कौन हैं, बट इस तरीके के अगर आप आगे से अगर कोई भी मैसेज आया हमारे FM को लेकर के तो मजबूरन हमें वही लास्ट कहते हैं ना कि लास्ट बट नॉट लीस्ट वाला एक हमको हम लोगों को करना पड़ता है। तो ये एक ऑनियर आपको बिल्कुल मेरा सजेशन है, प्यार से सजेशन है, क्योंकि हर एक रेडियो, हर एक कम्युनिटी रेडियो जो होता है वो लिसनर से ही बनता है, क्योंकि लिसनर्स हैं तो ही रेडियो है, और अगर लिसनर्स नहीं है तो कोई रेडियो का भी महत्व नहीं हो जाता है। तो कहते हैं ना जनता में जनार्दन और जनार्दन में हमारा भगवान। तो जब हम इतनी रिस्पेक्टफुली आपको समझा रहे हैं तो आपका भी फर्ज है कि हमारे FM के बारे में या फिर हमारे किसी RJs के बारे में यहाँ खुलेआम लिखना ये कहीं हद तक ख़राब चीज़ है। एंड आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को एंड देन आएंगे आज के रिलेशन वाले टॉपिक को एंड करने के लिए, उसका निवारण जानने।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840 3395 84 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
0: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है
5: आरजे अंशिका।
0: तो चलिए भाई, निवारण का टाइम हो गया है। कुछ कहते हैं ना कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि निवारण से ही उसको सहानुभूति होती है।
5: वो क्या कहते हैं, एक वर्ड नहीं याद आ रहा है, नहीं तो कहा जाता है ना निपटा दो
0: किसको,
5: वैसे टॉपिक्स को। मैम
0: टॉपिक्स को
5: कहने नहीं, कई केस में इंसान के लिए भी कहा जाता है।
0: सही बात,
5: जो थोड़ा वैसे होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है निपटा देना।
0: आरोही, इस आपकी कोई गलती नहीं है, आपने क्यों सॉरी लिखा है। एंड मतलब मैं हर्ट होती हूँ यार जब, क्योंकि हम लोग कभी भी ऐसे नहीं हैं और हम लोग हमेशा से आपको कहते हैं कि देखो चैट बॉक्स आपका है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि उसका फिर ऐसे अनयूज किया जाए, उसका गलत फ़ायदा उठाया जाए। क्योंकि हाँ, आपको शायद नहीं है, आप लोग तो सुनते हैं और आप लोग इंजॉय करते हैं, बट उस इंजॉय के पीछे हम सभी आर्जेस की जो मेहनत होती है ना, वो हम लोगों को पता है। देखो घंटों बैठ करके बोलना, आप तक सच्ची बातों को पहुँचाना, खुद पर यूज़ की हुई चीज़ें ही आप तक पहुंचाना, ये कोई मामूली बात नहीं होती है। और उस पर भी आकर के फिजूल की बात, वो भी कोई ज़रूरी बात नहीं हो रही है, फिजूल की बात अगर कोई भी लिसनर करेगा तो प्लीज़ एंड प्लीज़ हमारे शो में नहीं। क्योंकि बहुत टाइम है आपके पास, सुबह से लेकर के रात तक आप किसी भी टाइम पर आप लोग आपस में चैट कर सकते हैं। एटलीस्ट जब आपका लाइव चल रहा हो कोई भी प्रोग्राम, तो उस बीच में आप कोई फालतू टॉक ना करें। हाँ, अगर कोई इम्पॉर्टेंट बात है, आप किसी के लिए पूछ रहे हैं, किसी की फैमिली के लिए पूछ रहे हैं, कोई आपकी तबीयत खराब है या कुछ है, तो हम लोग काफ़ी बार इग्नोर कर देते हैं। बट अगर फर्जी की बातें होंगी तो हम वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, स्पेशली सुन सहेली में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन, पहले तो कहते हैं ना, पहले मैं प्यार से समझाती हूँ एंड देन फिर वार से। तो पहले आप प्यार,
5: तो आपके ऊपर है आप किससे समझना चाहते हैं,
0: आप किससे समझना चाह रहे हैं। एंड मेरे सभी लिसनर्स, मुझे इस बात का बहुत गर्व भी है कि सुन सहेली में हमारे सभी लिसनर्स ऐसे आते हैं जो कि हम दोनों आरजेस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि पुराने वाले हों चाहे नए वाले हों। एंड थैंक यू सो मच, आपका प्यार आपका सम्मान हम दोनों के लिए यूं ही बरकरार रहे। एंड अनोखी जी, आपकी कोई ज़रूरत नहीं थी आपको सॉरी बोलने की, बल्कि ज़रूरत तो अक्षरा जी की भी नहीं है, बस ये था कि हाँ मुझे आप तक ये बातें पहुंचानी थी। हेलो एंड वेलकम नागेश्वर जी, सोनिया तिवारी जी, प्रीति जी शुभ दोपहरिया, आशु जी शुभ दोपहरिया, सुनील यादव जी गुड आफ्टरनून, एंड मेरे दिल की धड़कन गोंडा एफएम मैम। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सुनील जी। चलिए तो टॉपिक चल रहा है, जो लोग अभी आए हैं तो मैं उनको टॉपिक बता दूं। टॉपिक चल रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस में अगर स्ट्रेस होता है तो उसको कैसे कम कर सकते हैं। भाई क्यों होता है वो बताया, अब उसका निवारण मैं आपको बताऊं।
5: तो चलिए, समस्या कोई भी हो, चाहे कोई भी हो समस्या का कारण, ठीक, समस्या कोई भी हो चाहे कुछ भी हो समस्या का कारण, लेकिन निवारण आपको बताएंगे, निवारण आपकी अपनी आज जिस्म।
0: ऐसा नहीं था। समस्या का कोई हो निवारण क्या, फिर से पहले
5: नहीं,
0: फिर से
5: समस्या कोई भी हो और कोई भी हो उसका कारण, पर हर समस्या का निवारण
0: नहीं, पर हर समस्या का क्षमता करती है निवारण।
5: अरे वाह,
0: ये है तो आप राइमिंग देखो ना, कारण निवारण ऐसे
5: बिठा रही थी मैं,
0: ऐसे नहीं बिठाऊ ना तुम,
5: लेकिन वो क्या कहते हैं, वो पीसेस जो है वो
0: बैठा
5: गलत,
0: नहीं
5: पजल गलत हो,
0: वो बैठा नहीं, उसको काम था बहुत सारा, उसने कहा मुझे कहीं जाना है।
5: आप दूसरे जो आपकी प्यारी बगल में है उनसे आपका है।
0: चलो तो निवारण पे आते हैं। पहला हमारा निवारण ये है कि डिजिटल डेट्स प्लान करें। अब मैं आपको बताऊं कि डिजिटल डेट्स क्या होती है। भाई डेट्स हाँ, तो सुना है,
5: ये बताइए।
0: डेट्स तो सुना,
5: ये कुछ नया है। डेट्स तो सुने हैं,
0: सुना डेट्स के बारे में
5: सुना
0: ठीक है। तो अब डेट्स, डिजिटल डेट्स क्या होती है
5: ये भी
0: जान लेते हैं। हफ्ते में एक दिन तय करें जब आप दोनों वीडियो कॉल में साथ में खाना खाएं, कोई फिल्म देखें या ऑनलाइन गेम खेलें। ओह माय गॉड, वाकई में अब बहुत
5: अच्छा वाला आइडिया मिल गया।
0: ये आइडिया उनके लिए है जो लॉन्ग डिस्टेंस है, लखनऊ कानपुर और इलाहाबाद और बनारस वाले।
5: नहीं तो लॉन्ग
0: डिस्टेंस,
5: अब लॉन्ग डिस्टेंस तो लखनऊ भी है, मतलब हम गोंडा में बैठे हैं, अगर कोई लखनऊ में बैठा है तो लॉन्ग डिस्टेंस तो है ना।
0: दो ढाई घंटा कोई लॉन्ग डिस्टेंस हुआ।
5: अरे अगर आप नहीं जा सकते हो, इनकेस मान लीजिए लिसनर्स, अगर हमें काम है और हम नहीं जा सकते हैं तो हम ये कर सकते हैं। इससे फील नहीं होगा।
0: इस पर हम
5: मंत्रणा बाद में,
0: इस पे हम विचार करते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस प्लान करें, हफ्ते में एक दिन तय करें जब आप दोनों वीडियो कॉल में साथ में खाना खाएं, कोई फिल्म देखें या फिर ऑनलाइन गेम खेलें। बड़ा अच्छा लगा ये तो,
5: बड़ा ठीक अच्छा वाला, न्यू वाला, ये जेंजी वाला है।
0: अच्छा लगा,
5: बहुत अच्छा लगा।
0: तो देखो रात भर सोच कर, हम लोग जब सोच के सोते हैं ना, तो यही मैंने बोला ना कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं इन चीजों पे। सेकंड है कि शेड्यूल शेयर करें, मतलब शेड्यूल शेयर में बताती हूँ उनशिका कैसे।
5: जी,
0: आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं, एक दूसरे को पूरा मतलब डे वन का मोटा मोटा प्लान जो होता है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि इजिली वाला प्लान जो है वो आप शेयर कर दें, बता दें, ताकि कॉल ना उठने पर शक या गलतफहमी
5: ना हो। ये अच्छा पॉइंट था,
0: ये बहुत ही अच्छा,
5: ये अच्छा पॉइंट था। मतलब बता देना चाहिए मैं यहाँ जाने वाली हूँ या मैं यहाँ जाने वाला हूँ, या मुझे मतलब ऐसे ब्रीफ कर देंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं।
0: हाँ,
5: तो
0: सही ठीक है। सेकंड है कि छोटे सरप्राइज करें, बिना बताए पार्टनर के पते पर उनका पसंदीदा खाना, फूल या कोई छोटा सा डिलीवर जरूर करवाए। उम्मीद से परे जी, तो जी। मतलब ऐसा
5: नहीं ऐसा है। नहीं है मैम, कई बार ऐसी चीजें भी मिल जाती है जिनकी उम्मीद नहीं होती।
0: हाँ, कुछ ऐसी उम्मीदें हम कर सकते हैं ठीक है। एंड अपने आप को सुरक्षित महसूस कराएं, ये एक पॉइंट है कि अपनी जिंदगी के फैसलों और दोस्तों के बारे में पार्टनर को खुलकर बताएं, ताकि उनके मन में कोई असुरक्षा ना आए।
5: ये भी है
0: ठीक है। एंड बहुत ही अच्छा वाला पॉइंट है जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि मिलने का प्लान बनाएं।
5: ये तो अच्छा,
0: अगली मुलाकात की तारीख तय करें, इससे दोनों के पास दूरी को सहन करने की एक वजह होगी और ताकत आएगी।
5: ओह गॉड, मतलब ऐसा पॉइंट है कि कहते हैं ना, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको मतलब जवाब ही नहीं होता आपके पास।
0: आप आज हमारे इस टॉपिक पर क्या प्रतिक्रिया देने वाले हैं, मुझे जल्दी से बताएं, क्योंकि मेरा एक्साइटमेंट बढ़ रहा है कि आज के टॉपिक पर आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी। नागेश्वर जी लिख रहे हैं कि हेलो मैम, हमेशा आरजे की रिस्पेक्ट पुराने लिसनर ही करते आ रहे हैं, हमेशा प्रोग्राम के लिए कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है नागेश्वर जी, हमारे नए लिसनर्स भी हमारी उतनी ही इज्जत करते हैं जितना कि आप लोग। डिजिटल डाटा किया, OMG। सुनील जी, आपने एक फरमाइश लिखी आई थिंक सॉन्ग्स की, तो मैं आपको बता दूं कि कॉलर ट्यून गोंडा अभी हमारा 3 बजे से शुरू होगा ठीक है, आधे घंटे के बाद में, जिसमें आएंगी आपकी आरजे अंशिका। तो आपका ये सॉन्ग ना, उनसे बोल दे रही हूँ कि वो आपके सॉन्ग को जरूर प्ले करेंगी, एंड अगर आप कॉल भी करेंगे तो आपके सॉन्ग्स को जरूर से लिया जाएगा।
5: बिल्कुल लिया जाएगा, और आप हमारे पॉइंट्स को बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स हैं, वो भी ध्यान रखें भाई, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करें, खुश रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, और गिफ्ट देते रहिए। लास्ट वाला पॉइंट बहुत अच्छा था, गिफ्ट देते रहिए, मिलने जाते रहिए
0: जी,
5: ताकि
0: तो...
5: वो
0: ताकि वो मतलब नेक्स्ट जो तारीख हम तय करते हैं ना, तो उसको एक सहन करने की बाकी में। ये तो पॉइंट मुझे बहुत ही दिल से लगा था, मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए बना के रखा था। तो चलिए हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे, थोड़ा पानी शानी पी लें हम लोग भी, आप लोग भी पी लें, इस प्यारे से गाने को सुनेंगे, तब तक आएंगे हम फिर एक नए टॉपिक के साथ में।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: डिलीशियस
4: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
4: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवर नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: गोंडा शहर की धड़कन।
7: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
8: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है
9: RJ अंशिका। तो अभी तक हमने बात की कि किस तरह रिश्तों को खूबसूरत बनाया जाए
8: जी।
9: अब कुछ खुद को भी खूबसूरत बनाने के लिए बात हो जाए, क्योंकि देखिए अभी हम जो टॉपिक पे बात कर रहे थे ना, और ये टॉपिक जो बात करने वाले हैं, दोनों में बहुत अच्छा वाला कनेक्शन है।
8: वो कैसे?
9: वो ऐसे कि ब्यूटीफुल लगेंगे तभी गिफ्ट्स भी मिलेंगे, मतलब तभी आप गिफ्ट्स लेने।
8: क्या मतलब? ऐसा होता है कि कोई अगर इंसान कोई फिजिकली

0: अगर अच्छा हो तो ही गिफ्ट देता है कोई?
1: नहीं नहीं
0: ऐसा नहीं है,
1: ऐसा नहीं है मैम, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे होता है ना कि कहीं आप जा रहे हैं किसी के साथ घूमने या फिर गिफ्ट लेने या फिर कुछ भी, तो हम कहते हैं ना अच्छे से रेडी होके जाओ, वो एक वाला होता है। अच्छे से जब इंसान रेडी होता है ना तो उसको खुद की खुशी बहुत एक मिलती है।
0: हाँ।
1: अपनी मोटिवेशन होती है कि मुझे ये पहनना है, मुझे वो पहनना है, या ये कलर पहन लो, ये कपड़े पहन लो, एक खुशी होती है। जरूरी थोड़ी नहीं है कि हम किसी को दिखाने के लिए रेडी होके जाएं।
0: हाँ, ये भी है कि एक अंदर से भी एक्साइटमेंट हाँ। होती है, अपना जो एक वो निखर के आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, व्यक्तित्व, तो वो एक अंदर से कॉन्फिडेंट भी आता है कि अरे यार मैं डेट पे जा रही हूँ और मैं ऐसे ऐसे अच्छे से रेडी होके जा रही हूँ। यही ना, मैं तुम्हारे कहने का मतलब यही था,
1: यही है, यही
0: मतलब। आई नो अंशिका
1: मैम, समझ गई।
0: घबराओ नहीं, तुम्हारा दिन भी आएगा, परेशान मत हो। हम लोगों का दिन आएगा, हम दोनों का दिन आएगा, ऐसी बात है।
1: मेरा दिन मैं क्या करूं,
0: अपने से अलग क्यों कर रही हूं, मेरा भी दिन आएगा।
1: नहीं नहीं, आपका भी दिन आएगा, बिल्कुल। हमारा तो हमारा दिन तो
0: नागेश्वर जी लिख रहे हैं, मतलब गिफ्ट लेने के लिए ब्यूटीफुल होना पड़ता है।
1: अब नागेश्वर जी देखिए, पुरुष जो होते हैं आजकल, तो ये कहना थोड़ा सा मतलब गलत हो जाएगा कि पहले क्या होता था मैम, कि पहले लड़कियां बहुत बदनाम होती थी, लड़कियां और मतलब फीमेल्स, कि अरे वो एक घंटे तैयार होती है ना, इस पार्लर में जाती है, वो क्रीम लगाती है। अब उल्टा हो गया है, अब लड़के बदनाम होते हैं।
0: एग्जैक्टली,
1: कि उस सलोन में जाते हैं, ऐसे हेयर कट कराते हैं।
0: अभी जस्ट मैंने झेला है, मतलब कि हमारे घर में शादी थी।
1: जी जी जी।
0: तो भाई लोग रेडी हो रहे थे, मतलब 9 बजे का था और वो 10 बजे पहुंचे हैं।
1: वही
0: एक घंटा क्या किए, रेडी हो रहे थे,
1: रेडी हो
0: रहे थे, मतलब हद है।
1: ऐसे लगता है मतलब शादियों में आप जाइए और देखिए, दूल्हे को छोड़ करके जो उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स होते हैं, मतलब इतना रेडी, जैसे लगता है कि इन्हीं की है क्या भाई।
0: तबिश खान फ्रॉम लखनऊ, क्यों भाई आपको क्यों शर्म आ रही है मेरी बात सुनकर? के ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला है जिसके आपको शर्म आनी पड़े। जी, टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
1: तो कहने का सेंस ये है कि मतलब लड़के आजकल इतना सब तैयार हो सकते हैं नागेश्वर जी, तो लड़कियों का तो फिर जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक हम 2 घंटे नहीं लगाएंगे, जब तक 8 के 10 नहीं बजाएंगे, तब तक मजा नहीं आएगा।
0: बिल्कुल।
1: और उसके लिए देखिए, सुंदर लगना, जैसे कहते हैं ना कि अरे जा रहे हो सुंदर से, अच्छे से जाओ सुंदर लगना, तो सुंदर लगना इसका मतलब ये होता है कि भाई रेडी होके मस्ती से जाएंगे, और जब आप मस्ती से रेडी होके जाएंगे तो देखने भी तो चाहिए। जैसे हम जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि मुझे देख रहे थे वो, तो देखेंगे कब? जब आप ढंग के लगेंगे तब,
0: जब आप सुंदर लगोगे तब।
1: तब ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही बस जैसे घर में थे वैसे ही चल दिए, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। तो अच्छे लगने के लिए हमारे पास आज कुछ है
0: नहीं, ऐसा नहीं है नागेश्वर जी। नहीं नहीं मैम, लड़के 2 मिनट में मैगी की तरह तैयार हो जाते हैं, लड़कियां कबाब की तरह तैयार होने में 2 घंटे लगाती हैं। जी नहीं नागेश्वर जी, 2 मिनट में पहली बात तो कोई मैगी नहीं बनती है, समझ में आया? ये सिर्फ कहने वाली बात होती है कि 2 मिनट,
1: बिल्कुल मैम
0: 15 मिनट लगते हैं टोटल।
1: हाँ,
0: वो 2 मिनट में मैगी चुटकियों वाली अब नहीं बनती है, और वैसे भी नहीं बनती है। अगर आपने बिल्कुल उसको बॉयल करना है तो पानी को पहले बॉयल करके रखो, मैगी डाल के खा लो, तो भी नहीं गलेगी 2 मिनट में,
1: कोई सवाल।
0: ठीक है, और कबाब जबकि जल्दी बन जाते हैं, आपको मैं बता दूं,
1: लड़के बहुत टाइम लगाते हैं, आप कभी देखिए, नोटिस करिए। मैं तो मेरे घर पे मतलब होता है मैम कि जब कहीं बाहर जाना होता है तो पहले मम्मी को कहना पड़ता था कि मम्मी तुम इतना टाइम लगाओगी तो आप पहले से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए।
0: अब घर के जेंट्स को कहना
1: पड़ता है, अब उल्टा हो गया। अब मम्मी रेडी होके आराम से हो जाती है तो पापा को कहती है अभी तुम 10 मिनट और लगाओगे ना, तो फिर लाओ कुछ और कर लो।
0: हाँ, और कुछ कर
1: फोटोज वगैरह ले लेते हैं कि अब रेडी हुए ही हैं। तो मकसद जो था वो सफल रहा, मकसद ये बताना था कि महिलाएं नहीं पुरुष भी देर लगाते हैं
0: रेडी होने में।
1: तो चलिए, रेडी होते हैं, तो रेडी होने के लिए क्या करना है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि मौसम जो चल रहा है ना वो इस समय बारिश का चल रहा है।
0: हाँ।
1: और इस बारिश में 2 चीजें होती हैं। अब आप सोचेंगे 2 चीजें क्या होती हैं, तो 2 चीजों में पहली चीज तो ये होती है कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी सी बारिश होती है, हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, हमारे घूमने जाने का मन करता है। और दूसरी चीज ये होती है कि ये हवा की नमी, बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके फेस पर बहुत ज्यादा, आपके फेस के जो पोर्स होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि आपके फेस पे एक पूरा कवर बना देते हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती
0: जी।
1: है। तो आज उसके लिए कुछ हम आपको रेमेडीज बताएंगे कि कैसे आप अपने फेस को कूल रखने के साथ साथ उसे थोड़ा सा क्लीन भी रख सकते हैं। कूल क्यों रखना है, क्योंकि देखिए जैसे उमस वाली, हम कहते ना कि उमस वाली गर्मी हो रही है, तुरंत से होने लगती है गर्मी, तो ऐसे ही मौसम में हमारे फेस पे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। जिनकी ऑयली स्किन होती है उन्हें तो बहुत ही स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब है कि आपके फेस से जो एक्स्ट्रा गर्मी है वो बाहर निकल रही है, तो कहीं ना कहीं आपका फेस गर्म होता है। तो इसलिए अपने फेस को कूल करने के लिए, अच्छा रखने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ करनी चाहिए।
0: जी।
1: तो चलिए आप बताते हैं आपको कि आपको करना क्या है। तो कूल कूल की जहाँ बात आती है वहाँ सबसे अच्छी चीज पता है क्या होता है? सबसे अच्छी चीज होती है चंदन। तो आज मैं आपको चंदन से बताऊंगी, चंदन से एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिससे कि आपका फेस अच्छा रहेगा और आप और भी सुंदर हो जाएंगे। चंदन इसलिए क्योंकि चंदन में माइक्रोबोलिक होता है, एंटी माइक्रोबोलिक होता है, जो बारिश में होने वाली खुजली, रेडनेस और रैशेस को तुरंत शांत कर देती है। आपके फेस पे अगर, जैसे बहुत लोगों के होता नहीं मैम फेस पे रेड रेड हो जाते हैं स्कार्फ, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले चलिए बताते हैं करना क्या है। आपको एक चम्मच चंदन पाउडर ले लेना है। अब वो चाहे चंदन पाउडर जो आता नहीं है आजकल पैकेट वाला, बॉटल वाला, वो आप ले लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको उसमें थोड़ा सा कपूर मिलाना है,
0: चंदन में कपूर।
1: हाँ, बहुत जरा सा, मतलब एक चुटकी से भी कम मिलाना है आपको। और अब इसमें आपको मिला लेना है थोड़ा सा रॉ मिल्क और गुलाब जल। ये सारी ही चीजें आपको मिक्स एंड मैच अच्छे से करके पूरा एक पैक तैयार कर लेना है और इसे रख देना है रेस्ट करने के लिए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आपको 15 से 20 मिनट के लिए इसे अपने फेस पे लगाना है और फिर आराम से ठंडे पानी से आपको इसे साफ कर लेना है। कॉटन की सहायता से ठंडे पानी से उसमें डिप करके आपको पूरा पैक निकाल देना है
0: जी।
1: इससे क्या होगा कि आपका फेस ठंडा होगा और जो खुजली, रेडनेस और रैशेस हो जाती हैं, वो जो आपने एक चुटकी कपूर मिलाया था ना उसमें, उसकी वजह से ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो आपका फेस सुंदर भी होगा, खिलेगा भी और आप खूबसूरत भी लगेंगे
0: जी। तो एक मेरे पास भी है जो कि एंटी जंप पैक है, जो सबसे ज्यादा असरदार होता है। और इस पैक को मैं बताऊं आपको कि आप लेडीज जेंट्स सभी लगा सकते हैं।
1: अरे वाह,
0: लड़कों को भी सुंदर बनना है ना।
1: हाँ,
0: तो वो भी लगा सकते हैं।
1: लड़के सुंदर नहीं बनेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, सुंदर लगना चाहिए।
0: ये हाँ, पैक जो है ये हवा में मौजूद जो हानिकारक बैक्टीरियाज होते हैं ना, जब हम घर से आते हैं और घर वापस जाते हैं या फिर जो हवाएं चलती हैं, तो उसमें बैक्टीरिया और कीटाणु बहुत सारे होते हैं जो कि हमारी स्किन में चिपक जाते हैं। उनको खत्म करके हम जो कि फिर उसका कारण बता देते हैं कि वो क्या होता है। उसके बाद ना वो उन हवाओं में मिल करके हमारी स्किन में चिपक जाते हैं, जिसके कारण से हमारी स्किन के जो पोर होते हैं वो ब्लॉक होने लगते हैं। पोर ब्लॉक होने के साथ साथ में क्या होता है, फिर कील, मुहासे, एक्ने की ये सारी चीजें हमें होने लगती हैं। और इनको ये जो मैं पैक बताऊंगी ना, इन सब चीजों को ये रोकता है। तो क्या करना है, करना ये है कि आपको 10 से 12 नीम की पत्तियां ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद में 10 से 12 तुलसी की पत्तियां ले लेनी है। अब एक चम्मच इसमें गुलाब जल बस, ठीक है। अब क्या करना है कि नीम और तुलसी की पत्तियों को पीसकर इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना ले, ताकि आपके फेस पे ये रुक सके। मतलब जब हम पेस्ट बना लेते हैं तो उसमें दरदरा बन हो जाएगा
1: जी।
0: लेकिन इसको दरदरा नहीं पीसना है, इसको फाइन पेस्ट पीस लेना है हल्का सा पानी डाल करके। उसके बाद में आपको इसमें आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी डाल देनी है, क्योंकि इसको एक बाउंडिंग मिले आपके फेस पर, वो चिपके रहने
1: चिपके रहने के लिए।
0: अब क्या करना है, इसमें एक चम्मच गुलाब जल डाल देना है। इसको अच्छे से पैक बना लीजिए, यानी कि ये एंटीबायोटिक ये एक पैक बन के तैयार हो जाएगा। आप अपने फेस पे लगाएं और उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद ठंडे पानी से धुल दें।
1: अरे वाह, ये तो जबरदस्त है,
0: ठीक है। एक और बताऊं?
1: बताइए।
0: चलो तो एक और बताती हूँ, जो कि है टी ट्री ऑयल और मुल्तानी मिट्टी वाला पैक, जो कि आपकी ऑयली स्किन के लिए है। भाई बहुत सारे लड़के भी होते हैं और बहुत सारे जेंट्स,
1: लड़के भी होते हैं। आज मैम दोनों के लिए क्यों बता रही हूँ?
0: क्योंकि मुझे लगता है कि सबको सुंदर बनने का
1: अधिकार है। ओके ओके,
0: अब जो ऑलरेडी कोई सुंदर हो तो उसको, उसके लिए मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन मतलब ऑलमोस्ट होता
1: जी,
0: है
1: जी,
0: हाँ,
1: जी,
0: ठीक है।
1: आई अंडरस्टैंड,
0: ज्यादा ना आई अंडरस्टैंड, ठीक है।
1: तो पता ही होता है।
0: तो क्या होता है कि टी ट्री ऑयल होता है, मतलब टी एंड ट्री ऑयल होता है, जो कि हमारी एंटीसेप्टिक बहुत सारी चीजों के उसमें गुड्स मतलब रहते हैं, ठीक है। आप किसी भी पंसारी की शॉप पे जाएंगे, किसी मेडिकेटेड शॉप पे जाएंगे और आप वहाँ ये बोलेंगे कि टी ट्री ऑयल चाहिए, तो वो इजिली आपको मिल जाएगा। और जो बारिश के दौरान फेस पे चिपचिपापन हो जाता है, जैसे फंगस हो जाती है
1: जी,
0: उसके लिए ये पैक बहुत ज्यादा मतलब मजेदार वाला पैक है।
1: मजेदार
0: करना क्या है, इसमें आपको एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेनी है, 2-3 ड्रॉप टी ट्री इंसेंशियल, जिसमें हल्की सी स्मेल होती है ना, वो ऑयल ले लेना है, और पानी या गुलाब जल जो आपको सूट करे। अगर गुलाब जल सूट कर रहा है तो आप गुलाब जल ले सकते हैं। अब सारी चीजों को आप स्मूथ एक पेस्ट बना लें एंड देन आप इसको अपने चेहरे पे लगाएं 10 से 15 मिनट और पूरी तरह सूखने से पहले ही हल्की सी मसाज करके इसको धुल दें।
1: वाह बहुत ही अच्छा पैक, बहुत अच्छा बताया मैम।
0: क्या
1: पैक
0: अच्छा, और सभी के लिए था ये,
1: सभी के लिए,
0: सबके हस्बैंड्स के लिए है, सबके बॉयफ्रेंड्स के लिए है, मतलब सबके भाइयों के लिए है, मतलब सभी के लिए है।
1: जैसे हम कहते हैं ना मूल मंत्र, तो इतना सारा जो हमने बताया आपको उसका मूल मंत्र यही था कि आज हमने सबके लिए बताया। आज जैसे आयुषी मुझे मैम हमेशा कहती है कि तुम बहुत वो करती हो, तुम हमेशा फीमेल्स की तरफ रहती हो, तो आज हमने उसको वो किया है कि दोनों की साइड है, मतलब दोनों के लिए है, तो दोनों लगाएं और खूबसूरत लगना
0: जी हाँ
1: अच्छा।
0: तो आज आज मुझे लगा कि सभी लोगों के लिए फेस बैग बताने चाहिए। नागेश्वर कह रहे हैं कि पहले तो आरोही जी लिख रही हैं कि वाह वाह मैम बहुत ही नाइस, थैंक यू सो मच अनोखी जी। एंड नागेश्वर जी लिख रहे हैं कि अंशिका मैम आज समता मैम लड़कों और लड़कियों में कोई फर्क नहीं समझ रही हैं, दोनों को सुंदर बना रही हैं ताकि गिफ्ट बराबर मिलता रहे।
1: वाह
0: नहीं बहुत हाँ। बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है कि क्या कहते हैं कि
1: दोनों सुंदर लगनी
0: चाहिए, दोनों सुंदर लगनी चाहिए।
1: हाँ ऑफ कोर्स।
0: तो चलिए अंशिका यहाँ ब्रेक ले लें
1: जी मैम,
0: और ब्रेक के उस पार आएंगे फिर से आपको कुछ अच्छा सा बताने के लिए। तब तक के लिए सुनते रहें इस प्यारे से गीत।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
4: दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में हैं
5: RJ अंशिका
4: जी। तो चलिए अब चलते हैं सीधे सीधे अपने बालों की केयर के लिए भी। तो भाई ये भी उन दोनों के लिए ही है। आज का कुछ सेक्शन मैंने ऐसे इसीलिए किया क्योंकि हमेशा से मैं सुनती आ रही थी कि आप लोग लड़कियों को ही सुंदर बनाने के लिए अजीबोगरीब टिप्स देती रहती हैं। तो आज का सेक्शन मैंने इसीलिए किया कि भाई लो अब हो गया, बहुत हो गया, सुन लिया मैंने, अब लड़कों के लिए भी मैं बताऊंगी। तो अंशिका बताएंगी सबसे पहले आपको।
5: तो मैं बताती हूँ आपको कि आपको क्या करना है। तो बालों के लिए क्या होता है ना कि बरसात में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि बाल हमारे चिपचिपे हो जाते हैं तो
4: और फिर ज्यादा झड़ने भी लगते हैं।
5: जी मैम, तो उसके लिए बताती हूँ मैं आपको कि कैसे आप अपने बालों को फ्रेश रख सकते हैं कि वो चिपचिपे ना। तो उसके लिए करना ये है कि आपको 3 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले लेनी है। उसको पहले मुल्तानी मिट्टी को अच्छे से भिगो दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि मुल्तानी मिट्टी में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाना है। नींबू का रस मिला लिया, उसके बाद में आपको अपने बालों के अकॉर्डिंग उसमें आपको पानी डालना है, ठीक है। जैसे आपको लगे कि बस इतना ना बन जाए वो कि बालों से जैसे निकल जाए, मतलब बहुत पतला नहीं करना है, थोड़ा सा थिक रखना है ताकि आपके बालों पर वो लग जाए। अब आपको क्या करना है कि इसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है और उसके बाद में इसे अपने बालों की स्कैल्प पे आपको 15 मिनट तक लगाना है। अब जब 15 मिनट के बाद आपको क्या करना है कि किसी भी माइल्ड शैम्पू से आपको इसको धो लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी बालों की स्कैल्प पे जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसको ये तुरंत से सोख लेगा
4: जी,
5: और आपके बाल अच्छे और फ्रेश होंगे, चिपचिपे बिल्कुल भी नहीं होंगे।
4: एग्जैक्टली तो अंशिका ने बहुत ही बढ़िया से बताया जो कि मुल्तानी मिट्टी और नींबू पैक था
5: जी,
4: है ना। तो चले हम अब आपको हम बताते हैं।
5: तो चलिए लिसनर्स, फिलहाल मुझे आप अभी के लिए दे इजाजत, अब मैं मिलूंगी आपसे कॉलर ट्यून गोंडा में। तब तक के लिए रेमेडीज को सुनिए और एंजॉय करिए
4: जी। तो अंशिका को दी है हमने 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रेस्ट, क्योंकि अभी वो पानी वानी पी लें क्योंकि आज फ्राइडे है, वैसे भी 2 घंटे का कॉलर ट्यून है। तो मैंने सोचा कि अंशिका को 5 मिनट का रिलैक्स देते हैं और उसके बाद में तब तक मैं आपको बताती हूँ 2 ऐसे पैक जो कि दही और मेथी पैक है। इतना ज़्यादा वाला यूज़फुल पैक है ना कि मैं आपको क्या बता दूं। 2 चम्मच मेथी दानों को रात भर भिगोकर पीस लें और सुबह उसको रात भर उसको भिगो के रख दें और सुबह उसको पीस लें। इस पे 3 चम्मच गाढ़ा दही मिलाएं और इसे बालों की जड़ों में 20 मिनट तक लगाकर छोड़ दें और उसके बाद में इसको धुल दें। ये चिपचिपाहट और डैंड्रफ दोनों को ख़त्म करता है। और अगर मतलब पूरा प्रॉपर अगर मेथी दाना मतलब बालों से ना निकले तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। जब आप शैम्पू करेंगे, आप जब आप अपने बालों में कॉम करेंगे, कंघी करेंगे, तो उसके दाने इजीली निकल जाते हैं। एक और है मेरे पास बहुत ही बढ़िया सा बालों के लिए कि एलोवेरा और पुदीना पैक, फ्रेश एलोवेरा जेल जिनके घर में लगे हुए हैं प्लांट्स, आप उन्हें ले सकते हैं और उसमें आप 10 से 12 पुदीने की पत्तियों का रस मिलाना है स्कैल्प पर लगाने के लिए। 15 से 20 मिनट तक आप इसे लगाएं और 15 से 20 मिनट के बाद अपने बालों को धुल दें। पुदीना स्कैल्प को फ्रेश रखता है और चिपचिपा होने से रोकता भी है। ये जो कि अभी मैंने आपको रेमेडी बताई, वो रेमेडी जो है ये मतलब आजकल के जी जैसे होता है ना, आज वाला जो मतलब जो मौसम चल रहा है बारिश वाला, उसमें ये बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया होता है। एंड मैं बताऊं कि कुछ ऐसा सीरम भी आप यूज़ कर सकते हैं इस मौसम में जो कि आप बना सकते हैं, ग्रीन टी और एलोवेरा सीरम। तो आधा कप आप उबली हुई ठंडी ग्रीन टी लें और उसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 2 चम्मच आपने मिला देना है बादाम रोगन का ऑयल। उससे क्या होगा कि आपका ये सीरम बन जाएगा और ये सीरम आप अपने बालों में एनी टाइम, मतलब आप बालों को धुलने के बाद में रात को सोते समय आप अपने बालों पे लगाएं और इसका फिर आप देखें कि कितना अच्छे से इसका मतलब इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो बेहद ही अच्छा होता है। तो नागेश्वर जी लिख रहे हैं कि 2 घंटे का प्रोग्राम तो उन्नति मैम लेकर आती हैं, अंशिका मैम को तो आज छुट्टी देना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन उन्नति मैम आज छुट्टी पे हैं और वो आएंगी कल, इसीलिए आज अंशिका मैम को करना है। नागेश्वर जी, आप सबके बारे में आपको शेड्यूल पता होता है, ये बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच, और ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम दोनों को दें यानी मुझे दें आप इजाज़त, अंशिका आएंगी आपसे कॉलेज गुंडा में मिलेंगी, मैं मिलूंगी आपसे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा

और नीले नीले अंबर पे, नीले नीले अंबर पे अभी आपने बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुना, जो कि किशोर जी की आवाज़ में, किशोर दा की आवाज़ में, नीले नीले अंबर पर, भाई नीला नीला अंबर है और नीले नीले अंबर में इस समय छाए हुए हैं काले काले बादल, क्योंकि जैसे कि कल भी हमने बात की थी कि सावन जो है वो आ गया है, रिमझिम फुहार है, बहुत ही प्यारा सा मौसम है और आई बहार है, और बहार इसलिए क्योंकि आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है कॉल ट्यून गोंडा कॉलिंग प्रोग्राम, जिसमें कि आप कॉल करते हैं, अपनी फरमाइशें बताते हैं और फिर हम आपकी फरमाइशों को प्ले करते हैं। तो वही ये बहुत ही अच्छा सा आपका प्रोग्राम है और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और आप सभी का आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम में स्वागत भी करती हूँ। तो फटाफट से आप सभी अपना हालचाल बता दें कि आप सभी कैसे हैं, कैसे हैं, क्या है आप सभी का हालचाल, और फटाफट से बताइए और फिर हम चलेंगे हमारी आज की सबसे पहली वाली फरमाइश की तरफ और सॉन्ग को सुनेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों का हालचाल लेना तो बनता है। देखिए जब बात दोस्ती की आती है, दोस्तों की आती है, तो हम हमेशा कहते हैं ना कि सबसे पहले हालचाल लेना ज़रूरी है, थोड़ा अपना बताना, थोड़ी हमारी सुनना, कहना भी ज़रूरी है, क्योंकि कहेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं और तो जानेंगे कैसे, और जानने के लिए कहना और सुनना दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो सीधे चलिए चलते हैं चैट बॉक्स में, देखते हैं कि हमारे साथ कौन कौन से हमारे लिसनर्स जो कि हैं वो जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं नागेश्वर जी, जिन्होंने कि मैसेज किया है वेलकम बैक अंशिका मैम, थैंक यू सो मच नागेश्वर जी। तो आइए चलिए चलते हैं सीधे सबसे पहले सॉन्ग की तरफ, जो कि फरमाइश है हमारे नागेश्वर जी की। आइए चलिए सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं सॉन्ग को, क्योंकि ये सॉन्ग है बारिश वाला, मौसम भी है बड़ा प्यारा, और जब मौसम के साथ ऐसा सॉन्ग हो तो फिर क्या ही कहना। तो बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है जो कि है दिल तोड़ के मत जियो। बिल्कुल किसी का दिल तोड़ कर ना जिए, हमेशा दिल को दिलों को बना कर जिए, दिलों को अच्छे से समेट कर जिए, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं हमारे दिलों से जुड़े होते हैं और ये दिल बहुत ही प्यारा होता है। तो आइए चलिए सीधे चलते हैं और प्यारे से सॉन्ग को इन्जॉय करते हैं, मिलती हूँ इस सॉन्ग के उस पार। आप सभी सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा, मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ। और अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं और अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको नंबर डायल करना है 6393316429 और अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचा देना है।

0: नेक्स्ट वाली फरमाइश की तरफ, जो की है अनुभव पांडे जी की। अनुभव पांडे जी के सॉन्ग के बाद हम सुनेंगे साइबा जी के सॉन्ग को, साइबा जी के सॉन्ग के बाद भी बारी होगी निशा जी के सॉन्ग। तो आइए सीधे चलते हैं और इंजॉय करते हैं इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को। आप बने रहिए आपके अपने फेवरेट वाले प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और एक बार फिर बता दूं कि हमारे बाकी लिसनर्स की तरह हमारे जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, अगर वो भी अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि फ़ोन उठाना है, कॉल करना है, डायल करना है नंबर 6393316429 और अपनी फरमाइश को हम तक पहुँचा देना है। आपका भी सॉन्ग ज़रूर से प्ले होगा। तो आइए चलिए सुनते हैं अनुभव पांडे जी के सॉन्ग को।
1: हल तो हम बड़ा भाई ही कर सकता
2: है,
1: मतलब तुसी
2: पहुंचो मैं आ गया।

अपना तुझे मान लिया रे। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सोला और शबनम मूवी का, गोविंदा जी और दिव्या भारती जी का। तो आइए सुनते हैं और एंजॉय करते हैं इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को। आप बने रहिए इस प्यारे से मौसम के साथ आपके अपने फेवरेट वाले प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में।

बैंड की लड़की बहुत ही एनर्जी वाला सॉन्ग पार्टी सॉन्ग जो कि गाया है बादशाह ने। वही एंजॉय करते हैं इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग को जो कि फरमाइश की थी चांद बाबू जी ने। और अब इसके बाद हम सुनेंगे सागर जी के सॉन्ग को और सागर जी के सॉन्ग के बाद में बारी होगी रईस जी के सॉन्ग। वही एंजॉय करते हैं इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को।

हेलो 9821026212 BPL अरे 9820026235 मैक्स टच छः।

0: What is mobile number? What is your smile number?
1: What is your style number?
2: What is your मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि हसीना मान जाएगी मूवी का, और इसमें गोविंदा जी और करिश्मा कपूर। तो आइए अब आगे चलते हैं आगे की फरमाइश की तरफ, जो कि बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, जो कि फरमाइश की है सुरेंद्र यादव जी ने। तो आइए चलिए सुनते हैं सुरेंद्र जी के सॉन्ग को, और इसके बाद में हम सुनेंगे राजू जी के सॉन्ग को जो कि है तेरे दर पे आया। तो आइए सुनते हैं सुरेंद्र यादव जी के सॉन्ग को।
3: शिमारू के नए वीडियोस के लिए

मैं तेरे दर पे आया हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग और बहुत ही इमोशनल भरा भी, जो कि लैला मजनू मूवी का। तो आइए अब चलते हैं आगे की फरमाइश की तरफ। ये गाना था राजू जी की फरमाइश पर। अब हमारा जो अगला गाना है, हम जैसा कोई आपको दिलवर न मिलेगा, वो फरमाइश है अरमान जी की। और अरमान जी के बाद में सॉन्ग के बाद में हम सुनेंगे अमित चौधरी जी के सॉन्ग को, और अमित चौधरी जी के सॉन्ग के बाद बारी होगी अनन्या जी के सॉन्ग की। तो आइए सीधे चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। आप सभी बने रहिए आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून।

बहुत ही ब्यूटीफुल ये गज़ल बहुत ही खूबसूरत खुल के बरस। तो आइए अब चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है अनन्या जी की, और अनन्या जी को सुनना है सॉन्ग हम भी पागल तुम भी पागल। तो आइए चलिए सुनते हैं इस प्यारे से सॉन्ग को, और इस सॉन्ग के बाद में बारी होगी एहसान जी के सॉन्ग की, जो कि है टिप टिप बरसा पानी। तो आइए चलिए सुनते हैं ये दोनों ही सॉन्ग और इन्जॉय करते हैं। आप बने रहिए आपके अपने प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। एक बार फिर बता दूं कि अगर हमारे और भी लिसनर्स जो कि हमें सुन रहे हैं और अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें अपना फ़ोन उठाना है, नंबर डायल करना है 6393316429 और अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचा देना है। तो आइए चलिए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग हम भी पागल तुम भी पागल।

बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट वाली फरमाइश की तरफ, जो कि है कमल नयन जी की। भाई कमल नयन जी ने फरमाइश की थी कि मैम आप अपनी पसंद का कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए, तो मैं अपनी पसंद का सॉन्ग आपको सुना देती हूँ, जो कि बोल राधा बोल मूवी से है। टाइटल सॉन्ग बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। और इसके बाद में बारी होगी कमल नयन जी के बाद में बारी होगी दुर्गा जी की। दुर्गा जी का सॉन्ग हम सुनेंगे और दुर्गा जी के सॉन्ग के बाद में बारी होगी इरशाद जी के सॉन्ग की। तो आइए चलिए इन्जॉय करते हैं। आप बने रहिए आपके अपने फेवरेट वाले प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून।

वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और आइए अब चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है आराध्या जी की। और आराध्या जी को सुनना है, जो सॉन्ग है वो है हमें तुमसे हुआ है प्यार। और इसके बाद में हम सुनेंगे राकेश जी के सॉन्ग को, और राकेश जी के सॉन्ग के बाद बारी होगी सुनीता जी के सॉन्ग की। तो आइए सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। आप भी बने रहिए आपके अपने फेवरेट वाले प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो आइए चलिए सुनते हैं और इंजॉय करते हैं प्यारे प्यारे सॉन्ग्स को।

करना चाहते हैं अपने फ्रेंड को, अपने भाई को, अपने फैमिली मेम्बर को, तो अपनी फरमाइश हम तक भेजने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ़ोन उठाना है, डायल करना है 6393316429 और अपनी फरमाइश को हमारे पास भेज देना है, हम उसे ज़रूर से ट्यून करेंगे। तो आइए चलिए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा दीपांशी जी का सॉन्ग, और ये प्यारा सा सॉन्ग भाई बहनों के प्यार के नाम।

0: कितना सुंदर, कितना प्यारा और कितना सच्चा, इस संसार में सबसे प्यारा भाई बहन का प्यार है। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और थैंक यू दीपांशी जी इतने प्यारे सॉन्ग की डिमांड करने के लिए। वाकई बहुत ही प्यारा, और भाई बहन का प्यार, भाई बहन का रिश्ता वाकई बहुत ही खूबसूरत, कि भाई अपनी बहन के लिए, मतलब उसकी छोटी छोटी खुशियों के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और बहन भी अपने भाई को बहुत प्यार करती है। तो ये प्यारा सा सॉन्ग इस प्यारे से रिश्ते के नाम था। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली फरमाइश की तरफ, जो कि है धर्मेंद्र मोहन जी की। धर्मेंद्र मोहन जी का सॉन्ग जो कि हमें आवाज़ विकास से सुनते हैं, और इसके बाद में अगला सॉन्ग जो होगा वो होगा, अगला सॉन्ग किसका होने वाला है, चलिए बता ही देते हैं कि अगला सॉन्ग होने वाला है मुस्तफ़ा जी का, जो कि हमें सऊदी से सुनते हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं धर्मेंद्र जी के सॉन्ग को, और धर्मेंद्र मोहन जी के सॉन्ग के बाद बारी होगी मुस्तफ़ा जी के सॉन्ग की। आप बने रहिए आपके अपने फेवरेट वाले प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा में, स्टे ट्यून।
1: बस इतनी सी थी पर मूड फुल HD हो गया। अब ना टेंशन दिखती है ना प्रॉब्लम, सब स्लो मोशन में मस्त लग रहा है।

प्यार में जीना प्यार में मरना कसम प्यार की होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि फरमाइश है रितेश जी की। तो आइए चलिए सुनते हैं इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को। आप बने रहिए आपकी फेवरेट वाली प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून।

गारेगा गारेगा साथिया आई लव यू, आए हैं लेने तुझको हम तुझे लेके ही जाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग, तेरे मेरे प्यार में कितना दम है भाई, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश थी रितेश जी की। अब चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ जो कि है शुभम जी की, और शुभम जी को सुनना है हम साथ साथ हैं मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। तो आइए सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, स्टे ट्यून्ड।

ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि हम साथ साथ मूवी का, जिसकी की फरमाइश की थी शुभम जी ने। तो भाई समय भी हो गया है, बस कुछ मिनट्स और फिर हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं चैट बॉक्स में और देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि हमारे साथ बने हुए हैं। तो अक्षरा जी मुझे दिख रही हैं, धर्मेंद्र मोहन जी जो कि हमें आवाज़ विकास से सुनते हैं, और साथ ही साथ में अनोखी शर्मा जी भी हैं, और उनके अनोखी शर्मा जी के बाद में अनिल वर्मा जी हैं। अनिल वर्मा जी लिख रहे हैं, शुभ दोपहरिया सभी सुनने वालों को, शुभ दोपहरिया आपको भी, और इसी के साथ ओके तबिश जी भी हैं, तबिश खान जी जो कि हमें लखनऊ से सुनते हैं। हेलो तबिश जी, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून आपको भी, और इसी के साथ सुरेंद्र यादव जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुरेंद्र यादव जी के साथ मिश्रा जी गोंडा लिख रहे हैं, हाय मैम हेलो। अमित चौधरी जी जुड़े हुए हैं जो कि हमें महाराष्ट्र से सुनते हैं, लिख रहे हैं आरजे मैम नमस्ते, नमस्ते आपको भी अमित चौधरी जी। और मुस्तफ़ा जी जुड़े हुए हैं जो कि हमें सऊदी से सुनते हैं, हेलो मुस्तफ़ा जी कैसे हैं आप। और इसी के साथ नागेश्वर जी जो कि लिख रहे हैं थैंक यू सो मच, तो आपका थैंक यू ले लिया है नागेश्वर जी, और आई होप कि मैंने आप सभी के मैसेजेस को भी ले लिया है। तो हमारे वो सभी लिसनर्स जो हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए थे आपके अपने कॉलर ट्यून गोंडा प्रोग्राम में, मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत बहुत थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए, मौसम बहुत अच्छा है, मौसम इन्जॉय करते रहिए, और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए। अब मैं आपसे मिलूँगी कल, यानी कि आपके अपने सुपर से भी ऊपर वाले सैटरडे में, आपके अपने प्रोग्राम सुन सहेली में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। मैं हूं आयुष श्रीवास्तव।
2: और मैं आयुषी,
1: लेकर हाजिर हूं गोंडा हलचल। गोंडा की छोटी बड़ी घटनाओं से आप सभी जनपद वासियों को कराते हैं रूबरू। जनपद गोंडा के तहसील तरफगंज के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अयली परसोली सहित आस पास के गाँव में राहत एवं बचाव कार्यो को और अधिक प्रभावी एवं त्वरित बनाने के उद्देश्य से विशेष राहत एवं रेस्क्यू वहाँ हनुमान रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। यह विशेष वाहन अब बाढ़ के दौरान फंसे हुए लोगों तक समय पर राहत सामग्री पहुंचाने तथा आवश्यकता अनुसार रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित करने में पूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर माननीय विधायक तरफगंज तथा माननीय विधायक सदर गोंडा श्री प्रतीक भूषण सिंह, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, माननीय MLC मंजू सिंह जी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने संयुक्त रूप से वाहन को हरी झंडी दिखाया। इस विशेष वाहन के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न, पेयजल, दवाइयाँ एवं अन्य आवश्यक राहत सामग्री शीघ्रता के साथ पहुँच सकेगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने में भी यह वाहन अत्यंत उपयोगी रहेगा।
2: पूरे डाल करकरा गांव में बुधवार को करकरा तालाब में डूबने से 12 वर्षीय छात्र सुमित की मौत हो गई। सुमित कक्षा 5 में पढ़ता था। माँ रोशनी खेत में धान रोप रही थी, बच्चे को घर पर भेज दिया था, लौटते समय तालाब में वो गिर गया। गुरुवार सुबह उसका शव मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि 84 कोस मार्ग के लिए तालाब अवैध खुदाई हुई थी, लेखपाल ने 2 बार रोका था, फिर भी काम चल रहा था।
1: जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जनपद गोंडा में कोविड के कारण अनाथ हुए एक बालक को करीब 10 लाख रुपए की सहायता चेक के माध्यम से प्रदान की। जिलाधिकारी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना अंतर्गत कोविड के कारण माता पिता दोनों को खो चुके बच्चों के बैंक खाते में आर्थिक सहायता की धनराशि फिक्स्ड डिपॉजिट कराया गया है। इस वर्ष दनेलगंज विकास खंड क्षेत्र के एक बच्चे के 23 वर्ष पूर्ण होने तथा धनराशि 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। चेक पाकर बालक ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया और कहा कि इस योजना शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा के रूप में जो सहयोग दिया है, यह भविष्य के लिए एक मजबूत नींव है। इस प्रयास ने आत्मनिर्भर बनने और समाज में एक सार्थक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है।
2: जिला पंचायत सभागार में DM प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में मिशन शक्ति संवाद हुआ। हलधरमऊ ब्लॉक के विद्युत सखियों को थर्मल प्रिंटर दिए गए। ये प्रिंटर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को काम की सुविधा के लिए दिए गए हैं। कार्यक्रम में अच्छी महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है। DM ने कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने और सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठाएं।
1: गोंडा में सर्किल रेट का पुनरीक्षण शुरू। 8 अगस्त तक दर्ज कराएं सुझाव व आपत्तियां। 15 अगस्त से लागू होगी नई सर्किल रेट सूची। प्रस्तावित दरों पर मांगे गए जन सुझाव। संपत्तियों की नई मूल्यांकन दर सूची पर जनता से राय। 10 व 12 अगस्त को होगी सुनवाई। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जारी किया कार्यक्रम सर्किल रेट संशोधन पर 8 अगस्त तक दे सुझाव। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित दर सूची पर 8 अगस्त 2026 की सायंकाल तक संबंधित कार्यालय मौखिक अथवा लिखित रूप से सुझाव एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले सुझाव पर आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
2: गोंडा जिले में सांपों से खतरा बढ़ा। पिछले एक महीने में सर्पदंश से 5 से ज्यादा लोगों की मौत। सर्प मित्र अरुण बाबा और जयनाथ बंगली ने एक हफ्ते में 100 से भी ज्यादा सांप पकड़े। इनमें 10 अजगर, 40 कोबरा, 50 रसल वाइपर भी थे। सभी को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया और प्रशासन ने सफाई रखने की भी अपील लोगों से की है।
1: जनपद में गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर सुबह से ही आश्रम और मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर गुरुजनों का आशीर्वाद लिया। बता दें कि सिविल लाइन स्थित गायत्री शक्ति पीठ में गुरु पूर्णिमा पर सैकड़ों लोगों ने यज्ञ किया, गुरु दीक्षा कराया। यहाँ चल रहे गायत्री महायज्ञ व देवी भागवत कथा का समापन हुआ। जिला समन्वयक ठाकुर प्रसाद तिवारी, राम तेज मिश्र, प्रकाश नारायण शुक्ला, जवाहरलाल मिश्रा आदि लोगों ने उपस्थिति देकर रूबरू कराया।
2: गोंडा लखनऊ हाईवे पर सकीहा मोड़ के पास तेज वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, 54 वर्षीय बबलू की मौत। बबलू ईंट के भट्टे पर मुंशी था, ड्यूटी पे जा रहा था, टक्कर के बाद गंभीर घायल होकर अस्पताल में दम तोड़ दिया। मौजूद लोगों ने बताया कि गाड़ी डेरी की थी, चालक फरार हो गया और पुलिस ने सीसीटीवी को भी खंगाला।
1: बीते दिनों जनपद गोंडा में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में आयोजित रोजगार मेले में निजी क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को रोजगार का अवसर मिला। मेले में कुल 135 अभ्यर्थियों ने विभिन्न कंपनियों के समक्ष साक्षात्कार दिया, जिनमें से करीब 97 अभ्यर्थियों का पहले चरण में शॉर्टलिस्ट किया गया है। जुलाई के तीसरे रोजगार मेले में सिस्का इलेक्ट्रिकल, स्टार ग्रुप व द इंडिया कंपनी ने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया है। सिस्का इलेक्ट्रिकल ने तकनीकी और गैर तकनीकी पदों के लिए साक्षात्कार लेकर 16,000 से 20,000 रुपए तक वर्तमान वेतन वाले पदों के लिए चयन किया है।
2: दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में गोंडा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। त्रिलोकीनाथ तिवारी और प्रमोद मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ता तहसील पहुंचे। 40 मिनट की नारेबाजी हुई, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया।
1: कृषि विकास एवं किसान हितैषी योजनाओं की समीक्षा, सीडीओ गोंडा ने दिए प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश। बता दें, कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी दयानंद प्रसाद की अध्यक्षता में कृषि विभाग से संबंधित आत्मा गवर्निंग बोर्ड तथा किसान उत्पादन संगठन FPO की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना, किसानों तक योजनाओं का प्रभावी लाभ पहुंचाने के लिए विभागीय समन्वय को और अधिक सही बनाना तथा कृषि क्षेत्र में नवाचार एवं आधुनिक तकनीकों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना रहा। बैठक के दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं किसान कल्याण से जुड़े प्रयासों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसमें किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी तथा गुणवत्ता युक्त बीज एवं उर्वरक की उपलब्धता, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहन, कृषि यंत्रीकरण, फसल विविधीकरण, उद्यानिकी विकास तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही किसान उत्पादक संगठनों FPO को अधिक सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने, उनके माध्यम से किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने तथा कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन पर भी विचार विमर्श किया गया है।
2: घाघरा नदी खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। एल्गिन ब्रिज का जल स्तर बढ़ चुका है। 2.66 लाख क्यूसेफ पानी छोड़ा गया है। तरबगंज, करनैलगंज के गांव में बाढ़ का खतरा अब पहले से भी ज्यादा हो गया है। नवाबगंज के दत्तनगर में 10 बीघा जमीन और 2 मकान नदी में समाये, वीडियो हुआ वायरल।
1: ई ट्रासाइकिल के लिए करें आवेदन। बता दें कि जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी माधवी पांडे के मुताबिक जनपद के 7 विधानसभा क्षेत्रों में पैर से दिव्यांग करीब 140 छात्राओं को विभाग ई ट्रासाइकिल देगा। सभी क्षेत्रों में 20-20 आवेदन मांगे गए हैं। छात्रों की उम्र 16 वर्ष या उससे अधिक और जनपद की मूल निवासी होना चाहिए। वर्तमान में उसका किसी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग या प्रशिक्षण केंद्र में अध्ययन करना अनिवार्य है। संबंधित संस्था अध्यक्ष द्वारा अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।
2: मैनौन के पास नहर कटने से उच्च प्राथमिक विद्यालय हुआ जलमग्न। पानी भरने से छुट्टी करनी पड़ी बच्चों की। JCB भेजी गई, लेकिन तेज बहाव के कारण वो कोई भी उपयोग में नहीं आ सकी। 15 फुट की कटान हो गई, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। आने जाने में दिक्कत हो रही है तथा ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत मरम्मत की मांग की है।
1: जनपद में 264 पात्रों में 28 लोगों की खुली किस्मत। मुख्यमंत्री स्वदेश गोसंवर्धन योजना में स्वदेशी नस्ल की गाय पालने को लेकर गोपालक में जबरदस्त उत्साह दिखा, लेकिन समित लक्ष्य के कारण अधिकांश आवेदकों की उम्मीदें टूट गई हैं। जनपद में मिले 290 आवेदनों में जांच के बाद 264 आवेदक पात्र पाए गए हैं, लेकिन लॉटरी में सिर्फ 28 अभ्यर्थियों का ही चयन हो सका है। विकास भवन सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी दयानंद प्रसाद की अध्यक्षता में लॉटरी निकाली गई है।
2: मथुरा चौबे गांव में हर बरसात में हो रहा है जलभराव। सड़कों पर पानी भरने से बच्चों और लोगों को हो रही है परेशानी। दुकानदारों का कहना है कि कई बार इस पानी भराव से कई हादसे हो चुके हैं। ग्रामीणों ने कई बार शिकायतें दर्ज करवाई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर नाली बन जाए तो ये सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं।
1: माँ पटेश्वरी देवी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम हुआ। विद्यार्थियों और शिक्षकों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प दिलाया गया। निदेशक प्रोफेसर बीएन मिश्रा के मार्गदर्शन में हुए कार्यक्रम की शुरुआत योग सत्र से हुई। प्रतिभागियों ने योगा अभ्यास कर स्वास्थ्य एवं अनुशासित जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया।
2: तरबगंज डुमरिया डी 2 लेन मार्ग पर नारायणपुर के पास सड़क पर 3 महीने से एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है। बारिश में गड्ढे पर पानी भर जाता है जिससे लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है। स्थानीय लोगों का कहना है इसमें रोज 2 पहिया और 4 पहिया वाहन फंस जाते हैं। हादसे का खतरा लगातार बना हुआ है। शिव शंकर, मनोज, दिनेश, सुरेंद्र समेत कई ग्रामीणों ने PWD में जा करके इसकी मरम्मत की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।
1: जनपद में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में सत्र 2026 एवं 27 के प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक अभ्यर्थी 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधुनिक तकनीकी आधारित ट्रेडों के माध्यम से युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। मनकापुर राजकीय ITI के प्राचार राकेश शुक्ला के मुताबिक संस्था में 8 ट्रेडों की 220 सीटों पर प्रवेश होना है।
2: धान्यपुर थाना क्षेत्र में एक महिला अपने 1 महीने के बच्चे को घर पर छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला की शादी 8 साल पहले हुई थी, उसके 2 बच्चे हैं। सोमवार दोपहर कपड़े सिलवाने के बहाने से वो घर से बाहर निकली और वहां से वापस नहीं लौटी। परिजनों ने रिश्तेदारों में तलाश की लेकिन उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। सास ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने महिला की तलाश शुरू कर दी है। सबसे ज्यादा चिंता उस 1 महीने छोटे मासूम बच्चे की है जो माँ के बिना घर पर है। गाँव में इस घटना पर लगातार चर्चा बनी हुई है।
1: जिलाधिकारी के निर्देश पर कलेक्ट्रेट परिसर में विशेष शहरी मॉक ड्रिल का हुआ सफल आयोजन। बता दें कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य अग्निकांड, शहरी बाढ़, मकान गिरने तथा अन्य संभावित शहरी आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों का परीक्षण करना तथा संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी श्रीमती रिंकी जायसवाल, नगर मजिस्ट्रेट श्री पंकज वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। फायर एवं स्वास्थ्य विभाग ने बचाव कार्यों का किया सजीव प्रदर्शन। कार्यक्रम के दौरान फायर विभाग के अधिकारी श्री नितेश शुक्ला ने अग्निकांड की स्थिति में अपनाई जाने वाली सावधानी एवं आग पर नियंत्रण पाने की तकनीकों तथा सुरक्षित निकासी की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी आपदा की स्थिति में घबराने की बजाय सूझबूझ और त्वरित सूचना देना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने का दिया गया संदेश।
2: मुंडेरवा माफी स्थित पंडरी कृपाल सहकारी समिति अक्सर बंद रहती है। इससे दर्जनों गांव के किसान को खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। गन्ना, धान और अन्य फसलों के लिए किसानों को समय से यूरिया नहीं मिल पा रहा है। मुंडेरवा, चिलबिला समेत कई गांवों में किसानों ने बताया कि समिति सचिव अक्सर मिलते ही नहीं हैं। सचिव राधेश्याम तिवारी का कहना है कि खाद आती है तभी वितरण उसका हो जाता है, लेकिन किसानों का कहना है कि समय पर खाद न मिलने से उनकी फसल भी खराब हो रही है।
1: जिला प्रोबेशन अधिकारी के तत्वावधान में महिला कल्याण विभाग द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलसर पर कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नवजात बच्ची की माँ के हाथ से केक काट कर किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर शिवेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि बेटियां आंगन की शोभा हैं, उनको उचित शिक्षा देकर योग बनाया जा सकता है। लैंगिक असमानता दूर करने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर जन्म लेने वाली बच्चियों के लिए कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। जेंडर स्पेशलिस्ट राजकुमार आर ने बताया कि बेटा व बेटी में असमानता नहीं करनी चाहिए बल्कि उन्हें समान भाव से शिक्षा व प्यार देना चाहिए। कन्या जन्मोत्सव का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करना। श्री आर ने बताया कि विभाग द्वारा बेटियों के उत्थान हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
2: गोंडा बलरामपुर राजमार्ग के पास जयनगरा स्थित धर्मकांटा के पास रोज ट्रकों की लंबी कतार लग जाती है। खाद, सीमेंट, गेहूं से लदे ट्रकों के कारण सड़क दोनों तरफ से जाम हो जाती है। इसमें स्कूली वाहन, एम्बुलेंस और आम लोगों को घंटों तक परेशानी का सामना करना पड़ता है। रामू यादव, सुनील वर्मा, राजेश त्रिपाठी समेत स्थानीय लोगों ने कहा है कि समस्या आजकल रोज की हो गई है। ये ट्रक चालकों ने भी कहा है कि धर्मकांटा में देरी के कारण लाइन लग जाती है।
1: जनपद में ड्यूटी से नदारद मिले 6 सफाई कर्मचारी। बता दें कि पंचायत विभाग ने ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले 6 सफाई कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई किया है। जिला पंचायत राज अधिकारी JD जैन ने बिना सूचना कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने पर 1 सफाई कर्मचारी का 1 दिन का वेतन रोक दिया है, जबकि 5 अन्य कर्मचारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
2: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोंडा बार एसोसिएशन और सिविल बार एसोसिएशन ने संयुक्त सम्मान समारोह किया है। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ताओं और गुरुजनों को माला पहनाई गई और अंगवस्त्र भी दिए गए। अंगवस्त्र देकर उन्हें लोगों ने सम्मानित किया। बड़ी संख्या में वकील मौजूद रहे। बार एसोसिएशन अध्यक्ष रविचंद्र त्रिपाठी और सिविल बार अध्यक्ष विजय तिवारी ने कहा है कि गुरु ही शिष्य को ज्ञान और न्याय का मार्ग दिखाते हैं।
1: जनपद में गोरखधाम एक्सप्रेस में यात्री की हुई मौत। गोरखधाम एक्सप्रेस में सफर के दौरान तबीयत बिगड़ने से एक यात्री की मौत हो गई। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन आरपीएफ व जीआरपी की टीम गोंडा स्टेशन पहुंची। शव को ट्रेन से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
2: गोंडा लखनऊ हाईवे पर देर रात 6 फीट लंबा अजगर का बच्चा निकल जाने से हड़कंप मच गया। वाहन तेज रफ्तार में थे, हादसे का खतरा भी वहां पर बना हुआ था। स्थानीय ग्रामीणों ने लाठी की मदद से अजगर को बोरे में डालकर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। लोगों ने वीडियो भी बनाया। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले यहां पर 10 फीट लंबा अजगर भी देखा गया था। वन विभाग ने तब रेस्क्यू किया था, लेकिन अब यहां पे फिर से अजगर देखने का मामला सामने आ जा रहा है।
1: प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालय के शिक्षा मित्र व अन्वेषक को अधिक दिया गया मानदेय समायोजित किया जाएगा। बता दें कि जून में 15 दिन गर्मी की छुट्टी रही, लेकिन उन्हें पूरे महीने का मानदेय जारी कर दिया गया था। अब इसे जुलाई के मानदेय में समायोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अगस्त में जो मानदेय जारी होगा वह 15 दिनों का काट कर आएगा। यूपी में 1.48 लाख शिक्षा मित्रों को 18,000 रूपए मासिक व 24,000 रूपए से अधिक अनदेशकों को 17,000 रूपए मासिक मानदेय दिया जा रहा है। राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि अब इनके मानदेय में कटौती की जाएगी।
2: गोंडा के मनकापुर केंद्रीय विद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया। बता दें कि झांसी में हुई नेशनल स्पोर्ट मीट में संतोष यादव ने बॉक्सिंग में सिल्वर और शिवा वर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोनों वाराणसी टीम से खेले थे और शानदार प्रदर्शन भी किया। इस उपलब्धि में पूरे स्कूल और क्षेत्र में खुशी फैल गई है। प्राचार्य और शिक्षकों ने बच्चों को बधाई दी है। स्कूल प्रबंधन ने उम्मीद जताई है कि ये छात्र आगे भी जिले का नाम रोशन करेंगे।
1: उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ और उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन की संयुक्त बैठक बुधवार को हुई। बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजने का निर्णय लिया गया। साथ ही दोनों मांग पत्रों का 2 वर्षीय प्रांतीय सम्मेलन व महाधिवेशन 22 और 23 अगस्त 2026 को कराने पर सहमति बनी। महाअधिवेशन के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन के लिए एसपी सिंह, नरेंद्र प्रताप सिंह आदि लोग मौके पर उपस्थित रहे। तो आज की हलचल में बस इतना ही। आप सुनते रहे रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: नमस्कार, सांचे विरासत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे मोनिका। सांचे विरासत के माध्यम से हम लॉस्ट इंडियन फोक आर्ट्स को एक बार फिर से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। दुनिया के महानतम चित्रकारों में शामिल स्विस जर्मन चित्रकार पॉल क्ली ने कला पर एक बातचीत में कहा था कि हम में अभी भी अंतिम शक्ति की कमी है, क्योंकि हमें संपोषित करने वाली कोई संस्कृति नहीं है। पॉल क्ली के वक्तव्य की पृष्ठभूमि अलग थी, उसका संदर्भ अलग था, बावजूद इसके उनका वक्तव्य न केवल भारतीय आधुनिक कलाओं बल्कि लोक कलाओं की वर्तमान स्थिति पर भी सटीक बैठता है। बिहार की मंजूषा कला भी उनमें से एक है। मंजूषा पेंटिंग्स। मंजूषा पेंटिंग भारत की प्राचीन लोक कलाओं में से एक है। इस कला का विशेष प्रभाव प्रदेश की पौराणिक कथाओं पर ही आधारित है, जिसमें कहानी का चित्रण किया जाता है। मंजूषा कला को सूचीबद्ध कला भी कहते हैं। ये कला बिहार के भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों की कला है। मंजूषा कला अंध प्रदेश की एक बहुत बड़ी विरासतों में से एक है। बिहार की मधुबनी पेंटिंग की तरह मंजूषा कला भी है। इस कला को भी कपड़ों पर उकेरा जाता है। मंजूषा कला भारत की एक ऐसी अनोखी लोक कला है जिसमें कहानी का चित्रण किया जाता है। मंजूषा कला को सूचीबद्ध कला भी कहते हैं। ये कला बिहार के भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों की कला है। मंजूषा अंग प्रदेश की बहुत बड़ी विरासतों में से एक। वैदिक इतिहासकारों की माने तो मंजूषा कला पर सिंधु घाटी सभ्यता का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। एक अध्ययन के अनुसार ये कला प्राचीन अंग महाजनपद को इतिहास को उकेरती है। साथ ही ये पेंटिंग्स बिहुला विषहरी की कहानी को भी दर्शाती हैं। मंजूषा पेंटिंग्स एक ऐसी लोक कला है जो भारत के अंग क्षेत्र में विकसित हुई। इन्हें अक्सर कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। उनके चमकीले रंग और उत्कारीगरी चित्रों को अलग बनाती है। मंजूषा पेंटिंग बेहद प्राचीन कालीन पेंटिंग है जो लोगों को अपनी तरफ काफी ज्यादा आकर्षित करती है। इस कला को वैश्विक पहचान भी मिली है। इस पेंटिंग को GI टैग तो मिला, फिर भी इस पेंटिंग को विशेष पहचान न मिल पाई। मंजूषा आर्ट इज एन एंशियंट एंड हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट आर्ट फॉर्म विच इज ऑफन रेफर्ड टू एज स्नेक पेंटिंग्स बाय फॉरेनर्स एज स्वर्लिंग स्नेक्स इन द आर्ट डिपिक्ट द सेंट्रल कैरेक्टर इन बिहुलास टेल ऑफ लव एंड सैक्रिफाइस। मंजूषा आर्ट इज अ मैग्निफिशिएंट सागा ऑफ हाउ दिस आर्ट रिफ्लेक्ट्स द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट अंग महाजनपद। अगर हम मंजूषा कला के स्वर्णिम इतिहास की बात करें तो मंजूषा अंग प्रदेश की एक प्राचीन लोक कला है जिसे वर्तमान में बिहार में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। इस कला रूप का पता 7वीं शताब्दी में लगाया जा सकता था, लेकिन 1931 के आसपास यानी करीब 1931 से 1948 के बीच के वर्षों में ये कला फली फूली। मंजूषा पेंटिंग की उत्पत्ति प्राचीन अंग प्रदेश से हुई जिसमें वर्तमान में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि मंजूषा कला की शुरुआत भागलपुर क्षेत्र के आसपास मौजूद वनस्पति और जीव के चित्र के रूप में हुई थी। विहुला विषहरी कहानी ये भी कहते हैं। ये कहानी बताती है कि सांप द्वारा काटे जाने पर व्यक्ति को तत्काल क्या कदम उठाना चाहिए, जो आयुर्वेद के महत्व को छूता है। पहले इस कला का निर्माण केवल दो परिवारों द्वारा किया जाता था। कुंभकार समुदाय बर्तन या कलश बनाते थे और उन्हें मंजूषा चित्रों से सजाते थे, जबकि मालाकार मंजूषा संरचनाएं बनाते थे और उन्हें मंजूषा रूपांकनों से सजाते थे। मंजूषा पेंटिंग्स 7वीं शताब्दी ईस्वी से चली आ रही है। चित्र मूलतः कुंभकार जाति जो कि व्यापार से कुम्हार थे उनके द्वारा बनाए गए थे। कुंभ शिल्पकारों ने विशिष्ट मंजूषा चित्रकला शैली विकसित करने के लिए अपने मिट्टी के बर्तन बनाने के कौशल का उपयोग किया। वे मिट्टी की एक पतली चादर बिछाते थे और उसे पौधों और खनिजों से बने प्राकृतिक रंगों से रंगते थे। एक लंबे समय तक चलने वाला नमूना बनाने के लिए चित्रों को भट्टी में जला दिया गया। 19वीं सदी के शुरुआत में मंजूषा पेंटिंग को मिट्टी के बजाय कपड़े और कागज पर भी चित्रित किया जाने लगा। चूंकि मिट्टी की पेंटिंग अधिक नाजुक और ले जाने में जटिल थी, इसीलिए यह स्थिति बनी। 19वीं शताब्दी में अंग क्षेत्र व्यापार और कारोबार का केंद्र बन गया, तो मंजूषा पेंटिंग की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्षेत्र के तीर्थयात्री और यात्री अक्सर कलाकृति बेचते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में मंजूषा पेंटिंग का चलन खत्म हो गया। यह विभिन्न परिस्थितियों के कारण था, जिसमें पश्चिमी कला रूपों का प्रवेश और व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में अंग क्षेत्र का पतन शामिल था। मंजूषा पेंटिंग बिहुला बिशारी की कथा से जुड़ी लोक कथाओं के इर्द गिर्द घूमती है। ये चित्र बक्सों पर बनाए गए थे, जिनका उपयोग भक्तों द्वारा बिशारी पूजा के लिए अनुष्ठानिक वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। एक

करती हैं। हालांकि हाल के वर्षों में मंजूषा पेंटिंग की वापसी देखी गई है। ये इस ऐतिहासिक कला रूप के संरक्षण और प्रचार के लिए समर्पित कलाकारों और संगठनों के प्रयास का धन्यवाद है। आइए जानते हैं कि क्या होती है मंजूषा कला, आखिर क्यों ये कला इतनी ज्यादा लोकप्रिय है और इतनी ज्यादा मैग्निफिशेंट आर्ट के तौर पर जानी जाती है। मंजूषा कला भारतीय कला का सबसे प्राचीन लोक कलाओं में से एक है। ये कला आंध्र प्रदेश की विशेषताओं को वर्णित करती है, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश की लोक कथा बिहुला बिशहरी के बारे में भी मंजूषा कला के माध्यम से बताई जाती है। इस कला में एक मोटी और लंबी लाइन का प्रयोग किया जाता है और साथ ही बालों को लाइन के माध्यम से नहीं बल्कि रंगों से दिखाया जाता है। इस कला में देवी देवताओं और आंध्र प्रदेश के इतिहास के साथ साथ बिहुला विषहरी की कथा को दर्शाया जाता है, जिसमें 5 जहरीली बहनों के साथ एक सांप दिखाने की परंपरा है, जहां पात्रों के बाल खुले रहते हैं। चित्रों के माध्यम से बिहुला को उसके खुले केश और उसके सामने मंजूषा यानी नाग को चित्रों के द्वारा उकेरा जाता है। इस चित्र में एक ऐसी देवी को दर्शाया जाता है जो दाहिने हाथ में अमृत कलश लिए रहती हैं। इस कला में मुख्य रूप से गुलाबी, पीले और हरे रंग को उपयोग में लाया जाता है। इस कला में जो देवी देवताओं या महिलाओं की चित्र बनाई जाती है, उसमें उनकी सज्जा का बहुत महत्व रखा जाता है। कभी कभी इस कला में हरा और नारंगी रंग के जुड़े सामान्य सहायक रंगों का भी उपयोग किया जाता है। मंजूषा पेंटिंग में केवल 3 रंगों का उपयोग किया जाता है, गुलाबी, हरा और पीला। एक महत्वपूर्ण और परिभाषित कारक इसकी सीमाएं हैं, जो पत्तियों, त्रिकोण और सांपों के पैटर्न से भरी हुई हैं। ये कला रूप मुख्य रूप से पौराणिक लोक कथाओं और रूपांकनों पर आधारित है, जैसे पद्मावती, मैना बिसाहरी, दोथिला भवानी, माया मनसा बिसाहरी, जया विशाहरी, चंदो सौदागर और कलश। मंजूषा पेंटिंग के ज्वलंत रंग और उत्कृष्ट जटिलताएं उन्हें अलग पहचान देती हैं। पौधों और खनिजों से उत्पन्न प्राकृतिक रंगों का उपयोग अक्सर चित्रों में किया जाता है, जिन्हें आमतौर पर कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। मंजूषा पेंटिंग में हरा, गुलाबी और पीला सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले रंग हैं। इन रंगों का उपयोग अक्सर आकर्षक रचनाएं बनाने के लिए किया जाता है। पेंटिंग्स अपनी विस्तृत विशेषताओं के लिए प्रतिष्ठित हैं। कलाकार अक्सर लोगों, जानवरों और वनस्पतियों का विस्तृत चित्रण करने के लिए बारीक ब्रश स्ट्रोक का उपयोग करते हैं। मंजूषा कला में 3 रंगों का उपयोग किया जाता है। मंजूषा कला में बॉर्डर का बहुत ज्यादा ही महत्व है। मंजूषा कला एक रेखा चित्र कला है, एक लोक कला है, एक स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में भी आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी ही बताया कि ये एक सूचीबद्ध कहानी कहने की कला है। मंजूषा कला पूरी तरह से बिहुला बिशारी की लोक कथाओं पर आधारित है। मंजूषा कला में पात्रों को अंग्रेजी वर्णमाला के एक्स लेटर यानी एक्स अक्षर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस कला के प्रमुख पात्र सांप, चंपा फूल, सूर्य, चांद, हाथी, कछुआ, मछली, मैना, कमल, कलश, तीर धनुष, शिवलिंग, वृक्ष आदि हैं। इस कला के प्रमुख पात्र भगवान शिव, मनसा देवी, बिहुला, बाला, हनुमान, चंदू सौदागर मंजूषा कला की सीमाओं में आते हैं। बेलपत्र, लहरिया, त्रिकोण, मोखा और सांपों की श्रृंखला। बिहुला बिशहरी की पारंपरिक कहानी मंजूषा पेंटिंग का सबसे लोकप्रिय विषय है। कथा के अनुसार बिहुला नाम की एक युवा महिला अपने पति को नाग देवता से बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर देती है। चित्रों में चित्रित कहानी में विशिष्ट दृश्यों में बिहुला की शादी, उसके पति की मृत्यु और उसे बचाने के लिए अंडरवर्ल्ड की यात्रा शामिल है। मंजूषा पेंटिंग बिहुला और बिशहरी की कहानी के अलावा हिंदू पौराणिक कथाओं और सामान्य जीवन की छवियों को भी चित्रित करती है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा बात हो गई बिहुला बिशहरी की, वही क्या है ये, क्यों सबसे ज्यादा मंजूषा पेंटिंग्स में बिहुला बिशहरी की कहानी बताई जाती है ये कहानी, तो आइए जानते हैं। बिहार के आंध्र प्रदेश में आज भी पौराणिक काल से चली आ रही बिहुला बिशहरी पूजा की परंपरा कायम है। बिहुला बिशहरी, जिसे कई लोग बिहुला बिशहरी भी कहते हैं, चूंकि वहां का एक्सेंट बदल जाता है, तो बिहुला बिशहरी में माता मनसा की पूजा होती है। माँ मनसा को शिव पुत्री और महादेव के गले में हार

बनी बैठे वासुकी की बहन बताया गया है। किसी समय में अंग प्रदेश में चंद्रधर नाग के एक सौदागर थे। वे चंपा नगर के बहुत बड़े व्यवसायी थे, साथ ही साथ वो एक शिव भक्त भी थे। विषहरि, जो भगवान शिव की पुत्री कही जाती हैं, उन्होंने चंद्रधर पर दबाव बनाया कि वे शिव की पूजा ना करें बल्कि उनकी पूजा करें, लेकिन चंद्रधर इस बात से राजी नहीं हुए। इसके बाद गुस्से में विषहरि ने सौदागर के पूरे परिवार को खत्म करना शुरू कर दिया। सौदागर के छोटे बेटे जिनका नाम बाला लखेंद्र था, उसकी शादी बिहुला नाम की एक लड़की से हो गई। मंजूषा पेंटिंग एकमात्र भारतीय कला है जिसमें अनुक्रमिक प्रतिनिधित्व है। मंजूषा कला बिहार के भागलपुर की एक लोक कला है। इस कला रूप को जनता के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए द सर्क कम्युनिटी ने अनुश्री दत्ता के साथ सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कला पर एक आकर्षक कार्यशाला का आयोजन किया था। अनुश्री एक डिजाइनर और भावुक लोक कलाकार हैं, जो जर्मनी में स्थित हैं। लोक कलाओं के प्रति उनका प्रेम ही उन्हें उनकी भारतीय जड़ों से निकटता से जोड़े रखता है। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए फोक ट्रेंड नाम से अपना उद्यम शुरू किया है। कार्यशाला की शुरुआत अनुश्री और कला की दुनिया में उनकी यात्रा के संक्षिप्त परिचय के साथ हुई थी। अनुश्री ने मंजूषा कला का इतिहास समझाना शुरू किया और बिशारी की पौराणिक कहानी भी सुनाई। उन्होंने अपनी एक रचना दिखाई जो कि शिवलिंग मंजूषा कला थी, और उन्होंने हरे रंग से शिवलिंग का बॉर्डर बनाना शुरू कर दिया। वह खूबसूरती से डिजाइन बनाती रहीं और पृष्ठभूमि को गुलाबी और पीले रंग से रंगती रहीं। सभी प्रतिभागियों ने मंजूषा कला के बारे में सीखने और विभिन्न डिजाइनों की अपनी कलाकृतियां बनाने में बहुत अच्छा समय बिताया, जो सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन और देखने में सुंदर थी। अनुश्री सभी कलाकृतियां देखकर प्रसन्न हुई और प्रतिभागियों की सराहना की। उपस्थित लोग देश के विभिन्न हिस्सों से थे, वे भी अलग अलग आयु वर्ग के थे, लेकिन कला के प्रति उनका प्रेम उन्हें एक मंच पर ले आया। सर्कल समुदाय हमेशा की तरह कलाकारों को जोड़ने और एक जादुई और सकारात्मक माहौल तैयार करने में सफल रहा। मंजूषा पेंटिंग्स कई कारणों से उल्लेखनीय है। शुरुआत के लिए वो एक विशिष्ट और उत्कृष्ट कला रूप है जो अंग क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। दूसरा ये कि पेंटिंग क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण है। कलाकृतियां अक्सर धार्मिक आयोजन और त्योहार पर प्रदर्शित की जाती हैं। तीसरा, पेंटिंग अंग क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति का एक आवश्यक रिकॉर्ड है। ये पेंटिंग दैनिक जीवन के साथ साथ हिंदू पौराणिक कथाओं की घटनाओं को दर्शाती है। मंजूषा पेंटिंग अंग क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में प्रमुख है। कलाकृतियां अक्सर धार्मिक आयोजनों और त्योहारों पर प्रदर्शित की जाती हैं। उदाहरण के लिए मंजूषा पेंटिंग का उपयोग विषहरि पूजा में किया जाता है, जो नाग देवता को समर्पित त्योहार है। अन्य धार्मिक आयोजन जैसे बपतिस्मा में भी छवियों का उपयोग किया जाता है। इससे पहले कि मंजूषा कला के वर्तमान पर चर्चा की जाए, बात जगदीश स्वामीनाथन की, जिन्होंने भारतीय लोक कलाओं को आधुनिक कलाओं के समकक्ष देखा और उन्हें समान रूप से प्रोत्साहन भी किया। स्वामीनाथन ने भी पॉल क्ले के उपरोक्त वक्तव्य का उद्धरण देते हुए अपने लेख अस्मिता और प्रासंगिकता में लिखा कि भारत का आधुनिकतावादी आंदोलन पाश्चात्य आंदोलन के ही पीछे पीछे गया है। कभी कभार भारतीय परंपरा को खोजने तथा उस पर बल देने के अंत देशभक्त पूर्ण प्रतिक्रियाएं हुई हैं, किंतु ऐसे प्रयास एक वास्तविक दृष्टि के खुलने के कार्य में पूरी तरह से नुकसानदेह और व्यर्थ ही रहे हैं। स्वामीनाथन आगे कहते हैं कि परंपरा की कर्म कांडी समझ ने हमारे चित्रकारों की नकली आधुनिकता को मजबूत किया है। बेशक इसमें बाजार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर विकास के दूसरे क्षेत्रों में भी समान बात देखी गई, जो विचारधारा आधुनिक तकनीकी सभ्यता में चली आ रही है, उसे कमोबेश सबके लिए जायज मान लिया गया। लगभग 3 दशक पूर्व स्वामीनाथन ने आधुनिक और लोक कलाओं की तत्कालीन परिस्थितियों पर टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणी मंजूषा कला को लेकर नहीं थी, संभवतः उनकी टिप्पणी में छुपी चिंताओं की परिधि में आधुनिक कलाएं और मध्य प्रदेश की लोक कलाएं रही हों। परंतु क्या उन चिंताओं की परिधि से बिहार की लोक कला, विशेषकर लोक चित्रकला का वर्तमान बाहर है? परंपरा की कर्म कांडी समझ ने लोक कलाओं में जिस नकली आधुनिकता को मजबूत किया है, जिसमें बाजार की कड़ी भूमिका है, क्या उसकी
छाया मंजूषा और मधुबनी कला पर नहीं दिखती है। स्वामीनाथन जिसे भारतीय आधुनिकतावादी आंदोलन की प्रवृत्ति कह रहे थे, क्या उस प्रवृत्ति से बिहार की लोक कलाएं अछूती हैं? स्वामीनाथन के कथन में चार तत्वों की प्रधानता है। पहला, परंपरा की कर्मकांडी समझ। दूसरा, चित्रकारों की नकली आधुनिकता जिसे भारत के आधुनिकतावादी आंदोलन की प्रकृति के नजरिए से देखने की जरूरत है। तीसरा, बाजार की भूमिका। और चौथा, वो विचारधारा जिससे आधुनिक तकनीकी सभ्यता संचालित होती है। मैं मंजूषा कला की वर्तमान को इन्हीं चार तत्वों को ध्यान में रखते हुए अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ अपनी बात। किसी भी कला विधा के वर्तमान पर लिखना अत्यंत जोखिम भरा कार्य है, खास तौर पर तब जब उसमें सरकार, गैर सरकारी संस्था, गैलरी और पूंजीपति का निवेश लगातार बढ़ रहा हो। ये जोखिम तब और बढ़ जाता है जब उसकी जिम्मेदारी एक युवा लेखक पर हो। इसीलिए मंजूषा कला के वर्तमान पर लिखने से पूर्व मंजूषा कला के वरिष्ठ कलाकारों, विशेषज्ञ, अंग क्षेत्र के विद्वान और उसे प्रोत्साहन दे रहे समाज सेवियों से विस्तार से बातचीत करना जरूरी है। उस बातचीत में उन्होंने मंजूषा कला के वर्तमान को लेकर अपनी चिंताएं स्पष्ट रूप से व्यक्त की और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि हमें अपनी कलाओं की सार्थकता और अर्थहीनता का परीक्षण तटस्थ रूप से करना होगा, तभी हम उसके वर्तमान को भी ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। मंजूषा कला के वर्तमान की चर्चा से पूर्व उसके विषय वस्तु पर चर्चा करना आवश्यक है। इससे परंपराओं की कर्मकांडी समझ का रहस्य भी खुल सकेगा। मंजूषा चित्रकला की मूल में बिहुला विषहरी की लोक गाथा है, ये हमें मालूम हो चुका है, जिसके मुताबिक शिव की पांच मानस पुत्रियां जो नाग कन्याएं हैं, पृथ्वी पर पूजित होने के उद्देश्य से चंपानगर के शिव भक्त चांदो सौदागर के समक्ष उपस्थित होती हैं। चांदो उनकी पूजा से इनकार करता है और उन्हें अपमानित करता है। इससे गुस्साई नाग कन्याएं, जिन्हें विषहरी कहा जाता है, वो चांदो को श्रीहीन, संतानहीन कर देती हैं। इसी क्रम में चांदो की सबसे छोटी बहू बिहुला अपने कोबर घर में ही विधवा हो जाती है। वह अपने पति बाला लखेंद्र को जीवित करने का संकल्प लेती है और विषहरी की ही मदद से अपना संकल्प पूरा करती है। बिहुला के प्रण से विवश हो और महादेव की प्रेरणा से चांदो सौदागर बाएं हाथ से विषहरी की पूजा करता है। इस प्रकार विषहरी बहनें पृथ्वी लोक में पूजित होती हैं। इस लोक गाथा के विविध प्रसंग तथा सोनदह तालाब और विषहरी, पार्वती से विषहरी का परिचय, विषहरी का महादेव के सम्मुख जाना और पृथ्वी पर पूजा पाने की लालसा व्यक्त करना, महादेव का उन्हें चांदो के पास भेजना, चांदो का विषहरी को अपने दंड से डराना, विषहरी द्वारा चांदो का श्री संतान हीन करना, बाला और बिहुला का विवाह, ओबर घर में मनियार नाग द्वारा बाला का दंश, बाला की मृत्यु पर विलाप करती बिहुला, मंजूषा में बाला के शव के साथ बिहुला का इंद्रासन गमन, गोदा घटवार द्वारा बिहुला के संकल्प में खलल, बिहुला टुंडी राक्षसी का मिलना, टुंडी राक्षसी के हाथ में बच्चा और हड्डी, मैना विषहरी का आना, विषहरी बहनों का अपने अपने प्रतीकों के साथ दिखना, इंद्रासन में नृत्य करती बिहुला और चांदो द्वारा विषहरी की पूजा आदि की कथाएं और उसका कर्म कांड मंजूषा चित्रों पर उतरते रहते हैं। अपने मिथकीय और कर्मकांडीय स्वरूप में मंजूषा कला सर्प पूजा और अनुष्ठानिक अभिव्यक्तियों से जुड़ा है। भारत में ज्यादातर लोक कलाएं कभी मिथक के रूप में तो कभी अनुष्ठान के रूप में प्रकट होती हैं। इनका भारत की श्रमशील कृषक समाज से गहरा संबंध होता है और उसी संबंध की वजह से अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति के बावजूद उनकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों में अनेक समानताएं मिलती हैं। इनमें प्रधान है तीन मूल रंगों की उपस्थिति। मूल रंग यानी गुलाबी या लाल, पीला और हरा, मंजूषा में इन्हीं का प्रयोग होता है। हालांकि मंजूषा कला के वरिष्ठ साहित्यकार जेसी शर्मा लोक कला में नीले रंग की उपस्थिति भी साबित करते हैं, जिस पर अंगिका के साहित्यकारों के मध्य अभी तक विवाद जारी है। मंजूषा कला में रंगों व आकृतियों को अपनी प्रतीकात्मकता है। ये आम तौर पर माना जाता है कि लाल या गुलाबी उत्सव का प्रतीक है, पीला रंग विवाह का प्रतीक है और हरा रंग विषदंश का प्रतीक है। इनके प्रतीकार्थ अनेक हैं। हरा रंग वंश वृद्धि का भी प्रतीक है। आकृतियों या पात्रों में बिहुला अक्सर खुले केश में दिखती है, उसके समक्ष एक सर्प होता है। विषहरी बहनें अपने नाम रूप प्रतीकों के साथ चित्रों पर उतरती हैं। विषहरी के रूप में मन के पंच विकारों की प्रतीकात्मक भी सामने आती है। पंच विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद
मंजूषा चित्रों के बॉर्डर लहरिया आकृतियों से बनाए जाते हैं जो बहुधा सर्प की लड़ियां होती हैं। इन्हें उपनाती गंगा या समुद्र माना जाता है। लोक गाथा में प्रयुक्त इन प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों को पूरा मनोयोग से मंजूषा की सबसे चर्चित चित्रकार चक्रवर्ती देवी ने कागज पर उतारा और आज उनमें थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उन चित्रों की असंख्य अनुकृतियां बनाई जा रही हैं। उन अनुकृतियों को देखकर मंजूषा चित्रकार और कला समाज इस कदर मंत्रमुग्ध है कि इस विषयों व पात्रों के संयोजन तथा प्रतीकों में जरा भी फेरबदल उन्हें उत्तेजित कर देता है। यथास्थितिवाद से इतर कुछ कलाकारों ने नए विषयों को भी अपने चित्रों पर जगह दी है या देने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर प्रयोग बाहरी प्रभाव में है। ये उस प्रभाव का ही असर है कि कलाकार अब अंगराज कर्ण की गाथा पर आधारित चित्र बना रहे हैं, तो विष्णु का विश्व रूप भी मंजूषा शैली में कागज पर उतरने लगा है धीरे धीरे। मंजूषा कला में आ रहे इन बदलावों पर अंगिका के साहित्यकार डॉक्टर अमरेंद्र कहते हैं, जो गतिशीलता का विरोधी है, परिवर्तन का विरोधी है, वो मृत्यु का पक्षधर है, जड़ता का समर्थक है। लेसन माली ने जब पहली बार मंजूषा पर चित्रों को उभारा होगा तब बेशक विषय वे ही होंगे जो आज भी हैं, लेकिन चित्र हूबहू ऐसे ही रहे होंगे, मुझे ऐसा मानने में संकोच है। नए कलाकारों को उन संदर्भों के बारे में ज्ञान नहीं है जो उन्हें नया गढ़ने के लिए प्रेरित करे। ये चिंता मंजूषा गुरु मनोज पंडित के इन शब्दों में स्पष्ट झलकती है कि वरिष्ठ एवं युवा कलाकार बिहुला विषहरी लोक गाथा के कथानक पर नवीन अवेशर करें, आकृतियां गढ़ें, नए बिंब और प्रतीक का निर्माण करें। आज जरूरत इसी बात की है। उपरोक्त दोनों ही कथनों के आलोक में लोक कलाओं के जानकार और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में प्रदर्श कला के प्राध्यापक रहे ओम प्रकाश भारती कहते हैं, इसका दायित्व किसका है, इसकी जवाबदेही किसकी है? फिर क्या वजह है कि मंजूषा कला के विद्वत्व जन अपनी चित्र कला की दुर्दशा देखने पर विवश है? क्या ये बेहतर नहीं होता कि वे मंजूषा कला और परंपराओं पर विमर्श करते जिसका लाभ युवा कलाकारों को मिलता? इससे वे मंजूषा कला में नवीन प्रतीक की रचना कर पाते। वर्तमान में रचे जा रहे मंजूषा चित्रों के संदर्भ में मुझे मंजूषा कला के वर्तमान का सत्य वही दिखता है जिसकी तरफ ओम प्रकाश भारती इशारा कर रहे हैं। वो इस रूप में भी है, मंजूषा चित्रों में प्रतीकात्मकता ठहरी दिखती है, बिंब ठहरे दिखते हैं। मिथिला कला की वर्तमान प्रवृत्तियां आज मंजूषा कला को अपना ग्रास बनाने पर आतुर है। यही वजह है बाजार उनके बीच भेद नहीं करता है और मंजूषा चित्रकला का मिथिला चित्रकला के छाया चित्रों में रूपांतरण हो जाता है, किसी को विचलित नहीं करता है। वरिष्ठ कलाकारों और कला मर्मज्ञों के बीच यह वाद विवाद का विषय नहीं बनता कि किस कला का समकालीन हो जाना और बाजार के बनाए मानदंडों पर रची जा रही है कला एक ही विषय है या अलग अलग, या किसी लोक कला के समकालीन हो जाने का अर्थ समकालिक नवीन प्रतीकों बिंबों की रचना व उनका प्रयोग नहीं है, जिनके जरिए एक लोक कलाकार अपने अपने समय और समाज से ज्वलंत प्रश्न करता है, उनके समक्ष नवीन चुनौतियां प्रस्तुत करता है। वे प्रश्न चाहे आर्थिक विषमताओं से उपजते हों या जातीय धार्मिक। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सरकार के समक्ष कला नीति का अभाव और उसके साथ साथ शिक्षा नीति में अभी भी कला का अभाव। ऐसे में यक्ष प्रश्न ये भी है कि मिथिला कला के लोक ने तो उसे कला और शिल्प रूप में स्वीकार कर लिया है, अंग क्षेत्र का लोक मंजूषा को बतौर कलाकार कितना स्वीकार करता है, और जो लोग इस लोक कला के रूप में स्वीकार करता है उसका स्वीकार कहीं जातीय व वर्गीय मानसिकता के क्षेत्रीय की खोल में तो लिपटा नहीं है? ये प्रश्न करना जरूरी है क्योंकि लोक कलाओं का वर्तमान इसकी गवाही देता है कि जब लोक कलाओं ने क्षेत्रीयता के दायरे से बाहर झांकने की कोशिश नहीं की, उनका दृष्टिकोण व्यापक नहीं हुआ है, उन्हें पहचान नहीं मिली है। गैर सरकारी संगठन दिशा, ग्रामीण विकास मंच और नाबार्ड ने इस लोक शिल्प को पुनर्जीवित और संरक्षित करने के लिए भागलपुर के सभी 16 ब्लॉकों में 3 साल का मंजूषा कला विकास कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम के तहत 50 गतिविधि आधारित समूह और बड़े पैमाने पर मंजूषा शिल्प विकसित किए गए हैं। एक तरीके से संरक्षण हो रहा है नाबार्ड के जरिए और हम अपने अपने लेवल पर सारी की सारी आर्ट फॉर्म्स जो कि बेहद मैजिकल हैं, बेहद मैग्निफिशेंट हैं, उन्हें साझे विरासत के माध्यम से संरक्षित करने का एक प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू।

0: कैसी हमारी परवाज हो गई। हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
7: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
6: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
7: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
6: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
8: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
9: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 88 40 98 123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
10: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
10: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
10: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
11: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
12: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
13: जिसकी धड़कन ने सबकी धड़कनों को बढ़ाया, जिसकी धड़कन ने सबकी धड़कनों को बढ़ाया। और किसी ने कहा, देखो शाम को कौन आया। पूरे दिन भर सुनने के बाद भी मन फिर से ये दोहराया, क्या? डेफिनेटली वही जिसे आप सुनना चाहते हैं।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
13: जी हाँ, दिन भर सुनने के बाद भी दिल बार बार मांगता है मोर। एंड यस, आरजे बीना इज विद यू फॉर गेटिंग यू इन द इवनिंग, दैट मेक्स योर इवनिंग फैंटास्टिक। तो आपकी उस इवनिंग में आरजे बीना आपको ले जाने वाली है, जहाँ नॉस्टैल्जिया होगा, जहाँ बॉलीवुड टॉक होगी, और जहाँ आपके साथ आरजे बीना की और आपकी हाँ जुगलबंदी होगी, यानी कि सवाल मेरे, जवाब आपके। वेरी गुड इवनिंग धर्मेश त्रिपाठी, सोनिया वेरी गुड इवनिंग। और भाई ये ईंट की दीवार चाइना दीवार है क्या, पता नहीं। फिलहाल के लिए आप सभी के साथ इस बेहतरीन सी शाम में आरजे बीना तो लाइव हैं ही, लेकिन आपके लिए मैं आपको ये बता दूं कि आज कुछ ऐसी बेस्ट, मैं कहें तो ऐसी बेस्ट मूवीज़ और वेब सीरीज़ को रिव्यू करने वाली हूँ, जिनके बारे में मुझे बताने में तो फ़क्र होगा ही, लेकिन आपको देखने के बाद उससे ज़्यादा फ़क्र होगा। सो बॉलीवुडिया इवनिंग में आ चुके हैं, तो फटाफट से अपनी अपनी प्रेजेंस लगा दें और ये बताइए कि इस वीक आपने कौन सी मूवी देखी और कौन सी नहीं देखी। फ़िलहाल तो अपकमिंग के बारे में बता दूँ, भाई आने वाली है आपके फौलादी हाथों की एक मूवी, ऐसी मूवी जो पैट्रियोटिज्म से तो भरी ही है, लेकिन ये भी बताएगी कि पार्टीशन का दर्द कितना गहरा था। जी हाँ, पार्टीशन से जुड़ी मूवी, सनी देओल प्रीति जिंटा एक साथ एक बड़े पर्दे पर आपको दिखने वाले हैं। एंड मुझे लगता है कि ये इस साल की एक अच्छी और मैं कहूँगी कि बेहतरीन एक पैट्रियोटिज्म से भरी हुई फिल्म होने वाली है। तो आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है, ये फिल्म जो है ये आपकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी या नहीं? मैं तो जानती हूँ कि अगर सनी देओल हैं तो कम से कम लोग सनी देओल को देखने के लिए इस मूवी को जरूर देखेंगे। फिलहाल मैं तो आपको ये बताऊंगी कि इस मूवी को, जहां तक मैंने इसके जो कहते हैं ना ट्रेलर को देखा है, इसके टीजर को देखा है, तो मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू चेंज द हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि हमने हिस्ट्री को जितना पढ़ा है उससे ज्यादा हमें देख के समझ आता है, तो हमारे दिमाग में जो हिस्ट्री है उसको बदलने के लिए ये फिल्म काफी होने वाली है। जी हाँ, मूवी का नाम है पार्टीशन नहीं बंटवारा, 1947। 1947 में भारत और पाकिस्तान का जो एक बंटवारा हुआ था, एक जो लकीर खींची गई थी, वो मात्र एक लकीर नहीं थी, वो मुझे लगता है खून से सनी एक रेखा थी, जिसमें ना जाने कितने परिवारों ने अपने परिवारों को खोया था, बलिदान दिया था। तो ये फिल्म तो मैं बिल्कुल देखने वाली हूँ, 15 अगस्त पर रिलीज़ हो रही है, तो ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है इसका। कोई भी कहीं भी हो, पर इस फिल्म को जरूर देखना, ठीक है? तो लीड रोल में आपको आपके फेवरेट एक्टर यानी कि सनी देओल दिख जाएंगे, साथ में आपको प्रीति जिंटा दिख जाएंगी, दोनों के साथ साथ आपके लिए कुछ ऐसे और भी कैरेक्टर्स हैं जो आपको शॉक करने वाले हैं इस फिल्म में। तो इंतज़ार करते रहिए बंटवारा 1947 का, क्योंकि ये बंटवारा ना सिर्फ बंटवारा होने वाला है बल्कि ये फिल्म आपके और हमारे लिए एक बड़ी फिल्म होने वाली है। ठीक है, तो इसमें आपको सनी और प्रीति की जो एक्टिंग है वो दिल मोह लेने वाली लगेगी। इसके साथ आपको शबाना आज़मी एक ऐसे अंदाज में दिखेंगी जिसका इंतज़ार आपने शायद कुछ दिनों से किया। वैसे शबाना आज़मी एक ऑलराउंडर एक्ट्रेस हैं जो लीड रोल से लेके साइड रोल से लेके एक नेगेटिव करेक्टर का भी भूमिका निभा चुकी हैं। ठीक है, इसी के साथ अली फजल, करण देओल, कनिका कपूर, ये सब आपको अलग अलग रोल में दिखने वाले हैं। तो चलिए इंतज़ार करते हैं इस फिल्म का। 14 अगस्त को रिलीज़ हो रही है सिनेमाज़ में। धड़कने बढ़ाते हुए एक इतिहास पे नज़र डालने का समय है। तो चलिए एक गाना सुनते हैं और आगे की इस वीक की और आने वाले वीक की जो मूवीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो कुछ लेटेस्ट रेन सॉन्ग्स सुनते हैं क्योंकि हल्की हल्की गोंडा शहर में बारिश भी हुई है। अगर आपने भी बारिश की बूंदें महसूस किए तो ज़रा मुझे भी बताइए, तो गाने आपकी और मेरी दोनों की वाइब मैच कराएंगे। मैं तो हल्का फुल्का भीगी हूँ, मतलब मेरा तो मन था कि थोड़ा भीग जाऊँ, लेकिन क्या करें, ये बारिश बिना कमबख्त गोंडा वालों के लिए थोड़ा सा नाराज़ सी मालूम पड़ रही है। कोई बात नहीं, होने तो नाराज़, ये नाराज़गी कब तक चलेगी ये तो बारिश से बात करने के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी ये रेन मैशअप आपके लिए।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: डिलीशियस
2: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
1: और क्या क्या है खास?
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए

खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड कोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं NVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
4: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में? क्या खास है वहाँ?
4: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है।

0: तुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
1: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

तो बैठेंगे बातें करेंगे, ये बात तो सही है, क्योंकि बहुत सही बात है कि आप सभी कहीं कोई बैठा है कहीं कोई बैठा है, लेकिन एक ऐसी जगह जहां हम सब बैठ के बात करते हैं वो है हमारा 89.6 FM। ये हमारे लिए एक कह सकते हैं कि गॉसिप पॉइंट भी है, जहां हम बातें करते हैं, दिल की शेयर करते हैं, अपनी बताते हैं, अपनी सुनते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। चैट रूम में देखती हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा आप लोग के बीच में, मतलब एक एक से एक बात को लेकर भसड़ चलती रहती है, अलग ही लेवल की बातें होती हैं, मज़ेदार लगता है। हाँ, कभी हंसी, कभी खुशियाँ, कभी गम, सब चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड जमी पर बातें करेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं एक ऐसी वेब सीरीज़ की जिसने Amazon Prime पे मचा रखा है धमाल, धमाल कमाल। जी हाँ, हंसी ठहाके से भरपूर और एक अच्छी वेब सीरीज जो कि पूरी पैकेज है, पैकेज बोले तो सब कुछ एक वेब सीरीज में अगर मिल जाए। मतलब कहते नहीं है कि अरे ये कुरकुरे तो टेस्टी भी है, क्रिस्पी भी है, हेल्दी भी है, मतलब सारी चीज़ें एक साथ। तो वैसे ही ये वेब सीरीज़ हास्य से भरपूर है, मतलब कॉमेडी मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत मतलब इमोशनल ब्रेक्स भी मिलेंगे, मज़ेदार वेब सीरीज है। नाम है आदर्श बाल विद्यालय, स्कूल का नाम लेकिन है वेब सीरीज़। 24 जुलाई 2026 को रिलीज़ हो चुकी है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे, और भाई क्या मज़ेदार वेब सीरीज़ है यार, मैंने देखा मेरा दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। कलाकार के मेनन, अर्चना पूरन सिंह, नवीन कस्तूरिया, अभिमन्यु सिंह, प्रसन्ना विष्ट, मतलब सब ने एकदम धमाकेदार इसमें एंट्री की है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग कुछ ऐसी चीज़ें बना देते हैं ना जिनको बार बार देखने का मन करता है, वैसी ही ये वेब सीरीज़ है। मतलब कितनी भी बार मैं इसके एपिसोड्स देखती हूँ ना, तो मेरा दिल कहता है यार फिर से चलो देखते हैं, यार फिर से देखते हैं। तो इसमें आपको दिखाया जाएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इस वेब सीरीज़ में एक स्कूल की हालत दिखाई जाती है जो कि एक जर्जर सरकारी स्कूल है, और उसकी शिक्षा प्रणाली भी जो है ना वो कॉमेडी ड्रामा की तरह है। टीचर पढ़ा रहे हैं लेकिन उस तरह नहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं रिसोर्सेज की कमी है तो कहीं एफर्ट्स की कमी, हर चीज़ दिखेगी, और ये रियलिटी है। दिल्ली के पास एक एरिया है जो कि मतलब आपके यूपी से छटा हुआ है थोड़ा सा, तो वहाँ पे ये स्कूल है जहाँ पे प्रधानाध्यापक हैं आपके ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, के मेनन, क्या गजब की बंदे ने एक्टिंग की है, मज़ा आ गया है, ठीक है। और स्कूल को सुधारने और इंग्लैंड की यात्रा जीतने की जुगत में लगे हैं। क्या है कि स्कूल में एक ये आता है कि जिसके स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा होगा उन्हें ट्रेनिंग के लिए कैम्ब्रिज भेजा जाएगा, या इंग्लैंड जहाँ भी भेजने का वो है वो भेजा जाएगा, और उन्हीं के स्कूल के प्रिंसिपल्स को, तो ये उसी दौड़ में लगे हैं कि हाँ कैसे पहुँच जाएँ। और अगले की बात करूँ तो जो खूबियाँ हैं वो इतनी हैं कि मैं कमियों

जाना ही नहीं चाहूँगी। लोगों ने बहुत पसंद किया है, जितने भी लोग देख रहे हैं अच्छी मतलब इसको कैटेगरी में रख रहे हैं, मतलब लोग अपने तरफ से रिव्यू अच्छा दे रहे हैं, तो मेरी तरफ से जब रिव्यू अच्छा है तो मतलब आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, मैं आपके 3-4 घंटे ख़राब नहीं करने वाली। तो मतलब आपके दिमाग में होगा कि अगर वेब सीरीज़ है तो काफ़ी लंबी भी होगी। तो देखिए वेब सीरीज़ हाँ थोड़ी बहुत लंबी होती है, ये बात सच है, पर ये भी बात बिल्कुल सच है कि वेब सीरीज़ आपको छोटे छोटे ब्रेक भी देती है। तो करीब 40-40 मिनट का, मतलब कोई 37 का है, कोई 38 का, ऐसे लगभग 40 मिनट के एक एक एपिसोड हैं और कुल 7 एपिसोड हैं, ठीक है। और सबकी अपनी अपनी एक्टिंग है यार, शुरुआत से ही ये जो पूरी की पूरी वेब सीरीज़ है, आपने नीलवटा सन्नाटा देखी होगी ना, मतलब लास्ट में आके पढ़ाई को ऐसा कनेक्ट किया जाता है, एजुकेशन को, एजुकेशन सिस्टम में जो छोटे मोटे बदलाव आ रहे हैं उनको कैसे एसिमिलेट किया जा रहा है, कैसे बच्चे अडॉप्ट करते हैं, कैसे टीचर को अडॉप्ट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो मुझे लगता है ये आपके लिए बनी है, यू कैन एन्जॉय इट, ठीक है। ज्ञानेश्वर की बात तो मैंने आपको बता दी, और आगे मैं और भी शिक्षकों की बात करूंगी। उनके स्कूल में जो शिक्षक हैं वो जोश में थोड़ी सी कमी आ चुकी है, जिसमें कि सबसे ख़ास चीज़ ये है कि स्कूल में अनुशासन जो है वो बहुत कम है, लापरवाह बच्चे जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं और उन्हीं को तैयार करना है। और साथ ही इलाके के जो नेता हैं जिनका नाम है गोल्डी, देवेन भोजानी है, क्या गजब एक्टिंग की है बंदे ने, उनकी चालाकी और उनका जो चालाक बिहेवियर है, उनकी जो सहयोगी हैं उर्मिला जो कि अर्चना पूरन सिंह बनी है, उनका जो अंदाज़ है वो स्कूल और इनके बीच में जो केमिस्ट्री बनाता है अलग ही लेवल का है। अगले मैं अगर बात करूँ तो निर्देशन की बात करें तो निर्देशन इसमें हिमांग गौर का है, तो वेब सीरीज़ को एकदम जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें चाहिए वो मिली हैं। ऐसा नहीं कि कहीं ब्रेक बहुत लंबा है, कहीं पे कोई चीज़ खींच रही है ना, हर चीज़ टू द पॉइंट, ऐसा लग रहा है कि रियल लाइफ में हम लोग बैठे हुए हैं और ये चीज़ हमारी आंखों के सामने घट रही है, तो बहुत बढ़िया है। और कहीं कहीं के पे अच्छी खासी हंसने वाली चीज़ें हैं, और चाहे डिप्रेशन हो, हर विषय को बहुत अच्छे से दिखाया है। मिड डे मील में मिलने वाली खीर का जो अभावग्रस्त बच्चों के लिए महत्व दिखाया है वो बहुत बढ़िया है, बच्चों को सजा देने और उन्हें संभालने के तरीकों पे जो सवाल है उनको दिखाया समझाया गया कैसे क्या कर सकते हैं। एक लड़की है जिसको नाम की गलती की वजह से साइकिल इनाम में नहीं मिलती, उसकी जगह लड़के को मिल जाती है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई। हाँ भाई, ये बात सच है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को मोटिवेशन के लिए बहुत सारे ऐसे प्राइज और फूड ये सारी चीज़ें सरकार दे रही है जिससे बच्चे मोटिवेट हो गए गवर्नमेंट स्कूल की तरफ रुख करें, पर बच्चे करते नहीं, इसके पीछे क्या रीज़न है तो मैं नहीं जानती। आगे मैं बात करूँगी, बच्चे जो हैं कुछ पैसों के लालच में बाहर चले जाते हैं कमाने, स्कूल को बंक करते हैं, पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं कि बच्चा पैसा कमा के ला रहा है, स्कूल पढ़ता तो उल्टा पैसे जाते ही और महीने का खर्च अलग निकलता, बच्चा जा रहा है तो महीने का 6,000-10,000 कमा के ला रहा है, तो ये बहुत बढ़िया दिखाया गया है, ये बिल्कुल सही बात है। अभी भी बहुत सारे ऐसे तबके हैं जहाँ बच्चों को, जब जैसे ही बच्चा 12-13-14 साल का होता है उसको बाहर पढ़ने के बजाय मतलब पढ़ाई के अलावा सब काम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, अरे अब घर रहो, खेती देखो, ये देखो, वो देखो, इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो प्रसन्ना बिष्ट की एक्टिंग बहुत अच्छी है इसमें, ठीक है, नवीन कस्तूरिया की भी, अन्नपूर्णा सोनी की भी, अभी अजीतेश गुप्ता की, इन सब ने भाई क्या समा बांध दिया है। तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगी, नहीं आपका देखने का मन नहीं करेगा क्योंकि सारी चीज़ें मैं बता दूंगी। तो इसको देखने के बाद आपको एक राहत की सांस लेने को मिलेगा कि हाँ स्कूल काम कर रहे हैं और हम लोग भी, आसपास के लोग भी, पेरेंट्स का बहुत योगदान है। मैं देखती हूँ आसपास आपके घर के पास भी प्राइमरी स्कूल होंगे, बच्चे स्कूल जाना ही नहीं चाहते। अब भाई आप स्कूल जाओगे, थोड़ा सा जेन्युइन बनोगे, बच्चा नहीं पढ़ रहा, कॉपी में काम नहीं मिल रहा, आप टीचर के पास जाओगे, प्राइवेट स्कूल में तो रोज पहुँचे रहते हो, लेकिन वहीं सरकारी स्कूल की जब बात आती है तो आप लोग बस नाम लिखवा के छुट्टी, क्यों भाई, आपको तो वहाँ और हक से जाना चाहिए।
तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप देखिए, एक स्मार्ट पेरेंट वही है जो प्रारंभिक शिक्षा में पैसे बचाता है। अगर हम प्रारंभिक शिक्षा में ही बच्चे के इतने पैसे उड़ा देंगे तो बात की हायर एजुकेशन के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। फिर आपको कहीं ना कहीं भेजना ही पड़ेगा, भले बच्चा सरकारी कॉलेज में पढ़े लेकिन भाई उसके रहने खाने का तो खर्चा उठाना ही पड़ेगा ना। तो आप 1 से लेकर 12 जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल दे रहा है वही तो सरकारी स्कूल भी तो दे रहा है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल प्राइवेट स्कूल की बजाय आपको सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। इसी वजह से तो सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करी, क्योंकि बच्चे जा ही नहीं, नामांकन ही नहीं है। अब हम सरकार पे उंगली ज़रूर उठा रहे हैं कि भाई सरकार ने स्कूल बंद कर दिए, आप बच्चा भी तो नहीं भेज रहे हो अपना। मुझे चैट रूम में दिखाएं कि आपके घर में आपके भाई बहन रिश्तेदार किसके किसके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं 1 to 12 की बात कर रही हूँ, प्लीज़ इस बात पे गौर फरमाइएगा। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं।

0: वेल डन शर्मा मैम।
1: सुर में गाना सीखिए।

की कुछ फिल्में भी हैं जो हमारे बॉलीवुड ने बनाई है, चाहे चौक डस्टर हो, चाहे नील बटा सन्नाटा हो, हिचकी हो, ये सारी फिल्में हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो छोटे मोटे बदलाव हैं उनको दिखाती हैं और ये भी बताती हैं कि शिक्षा आसान नहीं है बॉस, टीचर बनना भी आसान नहीं है और स्टूडेंट बनना भी आसान नहीं है भाई। एक स्टूडेंट बनने के साथ साथ हमें बहुत सारे चेंजेस को एक साथ झेलना पड़ता है। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना और अगले मूवी के लिए भी तैयार रहिए।

सबलू जी गुड इवनिंग, आशु जी गुड इवनिंग, धर्मेंद्र जी। तो आपको बता दूं कि अभी आप गाना सुन रहे हैं फ्रेंड फ्रेंड। तो भाई बता दूं कि ये जो गाना है ये स्पेशली आपकी मतलब एक मूवी आई है तेरा यार हूँ मैं। फिलहाल एक गाना आपको याद आ रहा होगा, तेरा यार हूँ मैं। नहीं ये वो वाले गाने से जुड़ जोड़ के मत देखिए, वो गाना था और ये फिल्म का नाम है तेरा यार हूँ मैं। ये 24 जुलाई को रिलीज़ हुई मूवी है और भाई रोमांटिक है, कॉमेडी है, ड्रामा है, जिसमें पारिश रावल हैं, अमरेंद्र कुमार हैं और आकांक्षा शर्मा हैं। और ओबियसली आकांक्षा और अमन के बीच में प्रेम की तो समीक्षा हो ही जाएगी। और अगर मैं बात करूं तो अगर मूवी की बात करूं तो मूवी बहुत खास नहीं है, ना तो हंसा पा रही है ना ही बहुत तगड़ा रोमांस दे पा रही है। लेकिन हाँ, मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो पारिश रावल की वजह से आप देख सकते हैं, क्योंकि पारिश रावल किसी भी कमज़ोर से कमज़ोर कहानी में जान डालने का काम करता है। अगर कहानी की प्लॉटिंग की बात करूँ तो इसमें संजू नागपुर में से मुंबई काम की तलाश में आता है। वह अपनी दिवंगत माँ के दोस्त विश्वनाथ यानी कि पारिश रावल के साथ रहता है। संजू को विश्वनाथ की बेटी अनु से प्यार हो जाता है, जो कि बहुत ही कॉमन है यार। कोई लड़का किसी के घर रहने जाता है, वहां अगर कोई लड़की सुंदर दिख जाती है तो प्यार तो होना ही है, ये बहुत आसान सा काम है। असली ड्रामा तब शुरू होता है जब अनु की शादी किसी और से तय हो जाती है। कहानी दोस्ती व परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती है, बोर करती रहती है। देखना चाहें तो देख लीजिए, ये गाना जो मैंने सुनाई है उसी फिल्म का था, ठीक है। कुल मिला के मेरे तरफ से इस फिल्म को मैं 10 में से 5-6 नंबर दूंगी, और 5-6 नंबर भी वो पारिश रावल के लिए। बाकी मुझे मूवी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मुझे स्टोरी तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। आपका देखने का मन है तो बिल्कुल देख सकते हैं। और अगली मूवी की बात करूँ जो कि 24 जुलाई को ही रिलीज़ हुई है, बता दूँ भाई आप लोग बुरा मत मानिए, भाई मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी जैसे कि आप देख पाएं, मैं आपके 2.5-3 घंटे बर्बाद नहीं करने वाली। अगली है दुल्हनिया ले आएंगे, सुना होगा ना कई बार, दुल्हनिया ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो दुल्हनिया को जो है ले आएंगे, अजीब सी भाई ले आएंगे। ये मूवी तो मेरे नाम से मतलब थोड़ा सा अलग ही लग रही है, ठीक है। तो फिलहाल कोई बात नहीं, जो भी है उसको हम समझेंगे, भावनाओं को समझेंगे, कभी कहना क्या चाहता है, परेशान मत होइए। हर सवाल का जवाब हूँ, मचाता धमाल हूँ, आपके साथ मौजूद हूँ, हर जबीना मेरा नाम है क्योंकि मैं लड़का नहीं हूँ फिलहाल के लिए मैंने एक कार्टून में सुना था ऐसा कि मतलब, तो फिलहाल दुल्हनिया ले आएगी मूवी का नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है। निर्देशन की बात करूं तो आकाशा आदित्य लामा की निर्देशन में फिल्म बनी है, 24 जुलाई को रिलीज हुई है। समाज की रूढ़िवादी सोच और 30 की पार कर चुकी लड़की की शादी के दबाव पर आधारित एक हल्की फुल्की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें खुशाली कुमार, महेश मांजरेकर और पीयूष मिश्रा एक साथ भूमिका दिखाते देखेंगे। फिल्म में मनोरंजन के साथ साथ एक सकारात्मक संदेश भी दिया जाता है कि थोड़ी पुरानी और अनुमानित जो चीज़ें हैं वो सही होती हैं, ठीक है। तो कहानी की जो कहानी है वो ये है कि 32 साल की नव्या जो कि खुशहाली हैं, वो शादी और समाज तथा रिश्तेदारों के अजीब दबाव के इर्द गिर्द परेशान है, मतलब ये कहानी इनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। और इसमें जो खुशहाली कुमार जो हैं वो एक गंभीर और सहज अभिनय के साथ साथ, जो महेश मांजरेकर हैं और पीयूष मिश्रा के साथ एक बढ़िया ड्रामा दिखाती है, आपको नज़र आएंगी। कहीं कहीं पे आपको हास्य और मज़ा भी आएगा, और कई जगह दूल्हों की लंबी कतार में पारिवारिक जो उलझने हैं वो अलग लेवल पे आपको एंटरटेन करेंगी। पुरानी यादें दिखाई जाएंगी, ओल्ड स्कूल फैमिली वाइब दिखाई जाएगी, और भारी भरकम एक्शन तो कहीं कहीं मिलेगा आपको, डार्क थ्रिलर मिल जाएगा। साफ सुथरी कहानी है, बढ़िया है, मतलब जेन्युइन मुद्दा है। आजकल लोग इस बात पे जो है ना बात नहीं करना चाहते कि मतलब अक्सर प्रेशर बना दिया जाता है लड़कियों पे। देखिए ज़माना बदल चुका है, इंसान थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो चुका है, आशा है उसको अपनी ज़िंदगी से, तो उन्हें पूरा करना चाहता है और एम्बिशियस भी है, अपने एम्बिशन को पूरा करना चाहता है, तो प्लीज़ उस पर दबाव ना बनाया जाए। ऐसा कुछ कहना चाह रही है फिल्म, मैं नहीं तो चलिए दुल्हनिया किसको लेके आएगी ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ दुल्हनिया किसी को तो लेके आएगी। तो अगली एक और फिल्म है जिसके बारे में आपको बताऊंगी,
लेकिन उससे पहले गाने, थोड़े से गाने।

भाई गानों के लिए मुझे सोचना भी पड़ता है कि कौन सी फिल्म के नए वाले गाने सुनाऊं, लेकिन फिलहाल मेरे दिमाग में एक गाना आ चुका है जिसको सुनाने का मेरा मन बिल्कुल कर चुका है, और नो डाउट बढ़िया वाला गाना ही सुनाऊंगी, लाडली फ्रॉम दुल्हनिया ले आएगी।

अब उस फिल्म को मैं रिव्यू करने जा रही हूँ जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। यानी कि आप लोग के मन में होगा ना कि मतलब कुछ ऐसा बताए आरजे बीना कि जो थोड़ा सा आपके लिए डिवोशनल भी हो। जी हाँ, तो मैं आज आपको एक ऐसी फ़िल्म के बारे में रिव्यू करने जा रही हूँ जिसको शायद हम लोग को देखना बहुत मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जो ईगरली वेट कर रहे होंगे इस मूवी के रिव्यू का, आरजे बीना कब रिव्यू करेंगी। जी हाँ, तो उस फिल्म का इंतज़ार जो हनुमान भक्तों को था स्पेशली, वो आ चुकी है। फिल्म का नाम है हनुमान अंश। टीजर 24 जुलाई को ही रिलीज हो चुका है और फिल्म का नाम बता चुकी हूं मैं, हनुमान अंश। नीम करौली बाबा का नाम तो सबने सुना होगा और बहुत सारे लोग दर्शन करने भी जाते हैं वहां पे, लेकिन किसी को शायद उनकी कहानी नहीं पता कि असल में क्या था, कैसे था। तो नीम करौली बाबा की कहानियां बहुत सारी हमने सुनी लेकिन पर्दे पर नहीं देखी। तो वक्त है इस पूरी कहानी को बड़े पर्दे पर देखने का, करीब से जानने का। तो ये है बाबा पर आधारित फिल्म जो कि रिलीज हो चुकी है आज। फिल्म का मकसद आस्था, विनम्रता और सेवा की भावना के सफर को पर्दे पर उतारना है। विशाल चतुर्वेदी की लिखित और निर्देशित इस फिल्म में शोभना डब्लू, सत्या विहान, एस हेगड़े, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी और गुलशन पांडे दिखने वाले हैं। इसे रागनी एस निर्माता जी सिंह और अनुप्रिया ए नागर और विशाल चतुर्वेदी ने प्रोड्यूस भी किया है। रिलीज से पहले मेकर्स ने फिल्म के टीजर को जब जारी किया तो बताया कि हाँ फिल्म ये कैसी है, थोड़ा बहुत मतलब पहले ही बता देता है ना इंसान कि कंट्रोवर्सी किसी तरह की ना हो। चलिए अब आगे बताती हूँ। फिल्म में जो हनुमान अंश है वो आस्था, विनम्रता, असीम प्रेम की यात्रा को दिखाते हुए एक संत की कहानी दिखाता है जिसे हम सभी जानते हैं नीम करौली बाबा के नाम से। आज भी ये कहानी सभी लोग के दिल में बसी है, भले पर्दे पर हम लोग देखने जा रहे हैं। उनकी शिक्षाओं को कई पीढ़ियों से लोगों ने अपने जीवन में उतारा है और अपने जीवन को संवारा है। फिल्म की कहानी के अनुसार बाबा को एक ऐसे संत के रूप में दिखाया है जो सत्ता, राजनीति, भौतिक सुख सुविधाएं और प्रशंसा से दूर हैं। उनका सरल संदेश ही इस कहानी का आध्यात्मिक आधार है। जैसे ही फिल्म का टीजर ऑनलाइन आया, कई लोगों ने विषय चुनने के लिए फिल्म बनाने वालों की तारीफ की और कुछ एक आध मतलब कहते हैं ना कि भीड़ में कोई एक आध तो होगा ही जो निंदा भी करेगा। फिल्म के बारे में बताऊं तो मेकर्स कहते हैं कि फिल्म जो है वो उनके गुरु यानी कि गुरु की तलाश में, एक गुरु की तलाश कैसे होती है वो हमें इस फिल्म में दिखेगी। हनुमान अंश सिर्फ एक कहानी नहीं है, फिल्म नहीं है, बल्कि एक तरह से ये कहते हैं कि चैरिटी या एक सेवा है जिसके माध्यम से ये काफ़ी लोगों तक अपने मैसेज को दे पाएंगे। मतलब जिन्हें बाबा का संदेश नहीं मिला नीम करौली बाबा का, वो संदेश दे पाएंगे। ये सेवा, विनम्रता, राम भक्ति, प्यार, इन सबको घर घर पहुंचाने की है। अगर बात करूं नीम करौली बाबा की तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इनके भक्त दुनिया भर में है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि फॉरेन कंट्रीज में। चाहे वो कोई मशहूर हस्ती हो, कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कलाकार हो, खिलाड़ी हो, लाखों भक्त हैं जो उनसे प्रेरित हैं। इनमें स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा जैसे नाम शामिल हैं जो बाबा के आध्यात्मिक प्रभाव से गहराई से जुड़ गए। स्टीव जॉब्स की का भारत आना और कैंची धाम से उनका जुड़ाव अक्सर उनके जीवन का एक अहम आध्यात्मिक मोड़ माना जाता है। वहीं जूलिया रॉबर्ट्स ने भी श्री नीम करौली बाबा की तस्वीर देखने के बाद हिंदू धर्म के प्रति अपना झुकाव जो है वो दिखाया।
मार्क जुकरबर्ग का कैंची धाम जाना और विराट कोहली अनुष्का शर्मा का भी यहाँ पे जाना काफी ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है और ये फिल्म इंडिया से ज्यादा बाहर भी देखी जाएगी ऐसा उनका मानना है। तो 31 यानी कि आज रिलीज हो चुकी है। जिनको बहुत ज़्यादा डिवोशनल फील होता है तो वो आज ही देख सकते हैं, कल भी देख सकते हैं, तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, ये फिल्म आपके लिए। तो सबसे पहले एक गाना जो हमें डिवोशनल फीलिंग देगा, मुझे बहुत पसंद है, अर्जबीना की तरफ से, सुनिए और सवालों के जवाब दीजिए और अपने नाम कीजिए बहुत सारे गाने। चैटरूम की तरफ रुख करते हुए देख लूं, मेरे साथ हैं अनिल शास्त्री जी, शुभ संध्या, कैसे हैं, और धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ काफ़ी देर से हैं, बिल्कुल। रफ़ी साहब की आज पुण्यतिथि भी है उनका, तो नगमा बिल्कुल बजेगा। अनोखी शर्मा गुड इवनिंग, और सविता शास्त्री जी भी हमारे साथ हैं, सभी का स्वागत, सभी का स्वागत। अनिल वर्मा सैदापुर से हैं, कमल नैन काफ़ी देर से हमारे साथ हैं। तो चलिए पहले एक डिवोशनल गाना सुनते हैं और इसके बाद रफ़ी साहब के जीवन पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, लेकिन वो प्रकाश सवालों के माध्यम से होगा, आप सवालों के उत्तर देंगे और अपनी पसंद के रफ़ी साहब के गाने सुनेंगे।

चलिए सवालों के कारवां की ओर रुख करते हैं और देखते हैं कि कौन क्या क्या बताता है। महेंद्र, दीपेन जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? अनोखी एंड इम्तियाज, शुभ संध्या, क्या हाल है आप सभी का? तो चलिए सबसे पहले तो सवाल की बात अगर मैं करूँ तो आज जैसा कि हमें अनिल जी ने भी बताया और मैं वैसे भी बात करने वाली थी, आज मोहम्मद रफ़ी साहब की आज पुण्यतिथि है और आप सभी अगर जाने तो एक ऐसे कलाकार जिसकी आवाज़ तो शायद ही कभी इस दुनिया से जा सकती है। उनके बारे में जितनी भी समीक्षा करें, जितना भी समझें जाने, वो कम होगा। भारतीय सिनेमा को एक अलग दुनिया की ओर ले गए। वो पार्श्व गायकों में अपनी एक अलग पहचान बना गए। उन्होंने 4 लंबे दशकों तक विभिन्न भाषाओं में हजारों गाने गाए, और हजारों गाने ऐसे नहीं, वो गाने जो सदाबहार रहेंगे, दुनिया के लबों पे बने रहेंगे। जन्म हुआ था उनका 24 दिसंबर 2024 1924 में। वो हिस्सा पंजाब का जो भी पाकिस्तान में है, भारत पाकिस्तान की सीमा पे पड़ता है, अमृतसर जिले के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ। बचपन में ही उनका परिवार लाहौर चला गया था, जहां एक फकीर के फकीराना गीतों और संगीतों से उन्हें गाने की प्रेरणा मिली थी। 13 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने मंच पर गाया था। बाद में साल 1941 में पंजाबी फिल्म गुल बलोच ने उन्हें करियर बनाने का मौका दिया था। गाने की अगर बात करें तो उन्होंने हर मिजाज का गाना गाया, चाहे वो रोमांटिक रहा हो, चाहे दर्द भरे गीत रहे हो, चाहे देशभक्ति, चाहे भजन, सब। मैं चाहूंगी कि आज के जो सवाल हों वो थोड़े रफी साहब से जुड़े हों। आप रेडी हैं तो फटाफट से आंसर करिए और अपनी पसंद के गाने उनके नाम सुनिए। आई होप आप लोग आंसर देने में एकदम परफेक्ट हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला सवाल आप लोगों से मैं करती हूँ, जो सबसे खास सवाल है वो है, एक संगीतकार थे, यानी कि एक कंपोजर थे जिनका नाम था नौशाद, उनके लिए मोहम्मद रफी ने एक गाना रिकॉर्ड किया था। वो पहला हिंदी फिल्म का गाना था। अब आपको बताना है उस फिल्म का नाम और उस गाने का नाम जो रफी साहब ने पहली बार हिंदी फिल्म सिनेमा में नौशाद जी के लिए रिकॉर्ड किया था। साल था 1944। अब आपको सोच के बताना है वो गाना और वो फिल्म कौन सी थी। तब तक के लिए हम सुनते हैं रफी साहब के गाने।

0: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारे। सारेगामा कारवां
1: जवाब देने वालों का भाई क्या कहना। सबसे पहले सही आंसर देने वाले हमारे लिसनर बन चुके हैं सबलू जी और आशु, दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आप दोनों की फरमाइश प्ले हो जाएगी। आप लोग कौन सा गाना सुनना चाहते हैं जल्दी से बताइए। और मेरा अगला सवाल जो है वो ज़रा सुनते जाइए क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर दे देंगे जल्दी से। फिलहाल मदहोश होने वाला मौसम तो है ही, फिलहाल मन तो करता है कि आज उड़ जाएं इस बहती हवा के साथ, पर क्या करें, अगर उड़ जाएंगे तो वापस घर कैसे आएंगे। अब आप लोग थोड़ा सा परेशान कम हो, सवाल का जवाब देने के लिए ज़रा ज़्यादा तैयार रहें। आई होप आप लोग रेडी हैं। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, आसान सा सवाल जो आपको मज़ा दिला देगा।

सवाल थोड़ा सा टेढ़ा लेकिन दुखद, दिल को परेशान करने वाला है, लेकिन आपसे जानना चाहती हूँ, मोहम्मद रफ़ी का आखिरी गाना किस फिल्म के लिए गाया गया था? मोहम्मद रफ़ी का आखिरी गाना किस फिल्म के लिए गाया गया था?

क्या बात क्या बात क्या बात, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। क्या बात है, ऐसे गाने फरमाइश करेंगे ना तो शाम ऐसे ही बीत जाएगी आपकी फरमाइशें सुनते सुनते। बढ़िया है, बहुत बढ़िया गाना। चलिए अगले उत्तर को देखते हैं किसने दिया। गुड इवनिंग गीता जी, कैसी हैं, कम दिखती हैं, आजकल बड़ी व्यस्त रहती हैं। तो चलिए देखते हैं अगला जवाब किसका है। आहा, बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिया है। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इतना एक्टिवली मतलब आंसर्स देते हैं, और आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यानी कि आसपास। गीता जी ने सबसे पहले आंसर दिया, अनिल जी ने दूसरे नंबर पे आंसर दिया, तो दोनों अपनी पसंद के गाने सुनेंगे। अनिल जी एंड गीता जी, जस्ट डिमांड योर फरमाइश अभी प्ले होगी। फिलहाल हम सुन रहे हैं आशु जी की फरमाइश का गाना, सुनिए एंजॉय करिए, और अगले सवाल को भी सुनते जी नहीं कहेंगे अरे यार जी बिना कैसी हैं आप, चली जाती हैं बिना जवाब दिए, मतलब बिना सवाल किए।

सन 1974 में मोहम्मद रफी का कौन सा गाना था जिसे फिल्म वर्ल्ड मैगजीन बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था? सन 1974 में मोहम्मद रफी का वो कौन सा गाना था जिसके लिए उन्हें फिल्म वर्ल्ड मैगजीन बेस्ट सिंगर का, ध्यान से सुनिए, फिल्म वर्ल्ड मैगजीन बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था? सोच के बताइए। किनारा मिल गया हूँ, ऐसे गाने फरमाइश करेंगे तो मैं बजने नहीं दूंगी, मैं ही गाऊंगी।

बहुत प्यारी सी फरमाइश है अनिल जी की। तो भाई ये फरमाइश तो प्ले होगी, लेकिन आंसर भी देख लेते हैं भाई, कौन सा आंसर है जो अभी जिसकी बात हो रही थी। सवाल मैंने किया था आप लोगों से कि फिल्म वर्ल्ड मैगजीन बेस्ट सिंगर अवार्ड 1974 में मिला था रफ़ी साहब को किस गाने के लिए। तो अच्छा, ये गाने की फरमाइश नहीं है, ये मुझे लगता है कि आप लोगों ने आंसर दिया है। मैंने सोचा फरमाइश भी कर दिया इसी समय। तो आंसर बिल्कुल सही है। सबसे पहले देने वालों की अगर बात करूं तो आंसर दिया है किसने, सही सही सही, मैम मेरा सॉन्ग पत्थर की सनम जी, गीता जी ने आंसर दिया है। फिर से अनिल जी ने आंसर दिया है और गीता जी ने तो मूवी का नाम भी बता दिया है। आहा, क्या बात है। तो दोनों ने आंसर दे दिए हैं और प्रीति जी ने भी आंसर दिया। तो अभी मैं गाना प्ले करूंगी, सबसे पहले अनिल जी का, गीता जी का, एंड देन प्रीति जी का। तो बहुत बढ़िया, आप लोग कोशिश कर रहे हैं और अगले सवाल के लिए भी बिल्कुल रेडी रहिए। अगला जो गाना है वो ये है कि सन 1948 में भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर मोहम्मद रफ़ी को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पदक दिया था, मेडल दिया था, वो मेडल कौन सा था? गोल्ड मेडल या सिल्वर या कॉपर, कौन सा मेडल था? आप ज़रा सोच के बताइए। फिलहाल फरमाइश है, मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया। अनिल जी की फरमाइश चलिए सुनते हैं पहले, फिर इसके बाद हम लोग सुनेंगे गीता जी की फरमाइश और देन प्रीति जी की फरमाइश। आंसर

होए क्या बात है, किसी रंग में रंग ले। तो चलिए भाई, मेरा सॉन्ग नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। हाँ, गीता जी की फरमाइश बड़ी अच्छी हुई है। तो चलिए सुनते हैं ये गाना और इसके बाद हम सुनेंगे प्रीति जी की फरमाइश का गाना। और भाई अब आखिरी सवाल का जो टाइम वो ख़त्म हो चुका है और बस आंसर और उनके आपको गाने सुनने को मिलेंगे। फिलहाल सिल्वर मेडल मिला था, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, सबलू जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है।

क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी। और चलिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अनिल जी का, प्रीति जी का, सबका आंसर, सबसे पहले सबलू जी का आंसर सही था। तो सबलू जी, आप फरमाइश कर सकते हैं, प्रीति जी की फरमाइश के बाद आपका गाना।

क्या बेहतरीन सी फरमाइश है। आहा, बिल्कुल नज़्म की तरह आप लोग की आवाज़ें, आप लोग के अंदाज दिल में घुल तो रहे हैं। तो चलिए अब अगले अगले अगले अगले अगले अगले गाने की ओर रुख करते हैं। और अगला गाना है प्रीति जी की फरमाइश का। प्रीति जी, कौन सी फरमाइश है आपकी मुझे मिल

हाथों के चंद, आहा क्या बात है, इतना बढ़िया गाना फरमाइश करते हैं आप लोग ना कि मतलब शाम की जो लकीरें हैं वो बदल जाती है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए सुनते हैं प्रीति जी की फरमाइश का गाना और इसके बाद लास्ट सॉन्ग होगा सबलू जी का। आंसर्स आप लोगों ने दिए लेकिन देखिए जो सही समय पे देगा उसी का गाना प्ले होगा। तो चलिए सुनते हैं हाथों।

तो वक्त है अब आप लोगों से विदाई लेने का, लेकिन चलते चलते एक आखिरी गाना आज की शाम के नाम। और आप लोगों ने बेहतरीन ट्रिब्यूट दिया, बहुत अच्छी फरमाइशें भी की, और मैंने जैसा कि कहा कि रफ़ी साहब की आवाज़ ना सिर्फ आवाज़ थी बल्कि एक जिंदा दिल पहचान थी जो हर उम्र के लोगों के एक एहसास बन के आई थी, और इसी तरह आती जाती आवाज़ें हमारी ज़िंदगी में इतिहास बन जाती हैं। तो आखिरी फरमाइश सुनिए सबलू जी की और मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे डॉक्टर लव के साथ आपके वाले शो गोंडा मैसेज।

वेलकम इन योर शो फरमाइश वीडियो आज सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन स्टे ट्यून्ड एवरीवन मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत

सो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल और क्या है आज की शाम में बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी बात और जज्बात, मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके और ये आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मुस्तफा जी सऊदी से, सोनिया तिवारी, अनिल वर्मा सैदापुर से, महेंद्र राजस्थान से, धर्मेश त्रिपाठी, धर्मेंद्र मोहन जी आवास विकास गोंडा से, सबलू सावंत मुंबई से, रानी गुप्ता मालवीय नगर से, राजेश सिंह जी प्रीति शुक्ला बहराइच से, प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, आशा मिश्रा जी लखनऊ से, विकास एंड शुभम लखनऊ से, अनिल वर्मा जी सैदापुर से, कार्तिक कश्यप, सबलू सावंत, रितेश साहू, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, चांदनी गोंडा से, अरमान पटेल नगर गोंडा से, रईस जी इम्तियाज अहमद गोंडा से, नागेश्वर धाकड़, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, आप सभी का स्वागत है और इंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में पहली पहली पहली पहली पहली फरमाइश है मुस्तफा जी की और मुस्तफा जी को सऊदी से सुनना है गाना, ताल से ताल मिला दिले बेचैन वे रस्ते पे नैन वे, जिंदड़ी बेहाल है सुर है ना ताल है और आजा सावरिया आ। और अगर सावरिया के आने के बाद भी ऐसा हाल हुआ फिर क्या करोगे? हर सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं दोस्तों। आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर।

दोस्तों यार, रहमान साहब की म्यूजिक की यही तो खासियत है, कानों में पड़ते ही सीधे रूह को छू जाता है। और जब अलका जी की और उदित नारायण जी की आवाजें एक साथ मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो जैसे ढलती शाम ने भी चुपके से मुस्कुरा दिया हो। सो ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा था, हमने फरमाइश एंजॉय की है मुस्तफा जी की, और मुस्तफा जी हैं सऊदी से। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। सोनिया तिवारी को सुनना है गाना ये गिला है आपकी निगाहों का। सो देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले में, और क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। सो एंजॉय करते हैं सिलसिला का ये गाना किशोर कुमार लता मंगेशकर जी की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ सोनिया तिवारी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो सविता दुबे जी और मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा। स्टे ट्यून्ड।

सिलसिला का ये गाना किशोर कुमार लता जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। चंदन तिवारी और नागेश्वर धाकड़, आप दोनों का स्वागत है। एंजॉय करते हैं अनिल वर्मा जी की फरमाइश। अनिल वर्मा जी को सैदापुर से सुनना है गाना, तेरी दो टकिया की नौकरी पर मेरा लाखों का सावन जाए हाय। तो लता जी की आवाज में एंजॉय करते हैं एक बार फिर से ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन सुपर डुपर हिट नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

वाह, लता जी की आवाज में रोटी कपड़ा और मकान का ये ओल्ड इज गोल्ड नगमा हमने एंजॉय किया है दोस्तों, और ऐसे ही फरमाइशों का सिलसिला चलता रहेगा। अगली फरमाइश है महेंद्र की राजस्थान से, उनको सुनना है गाना ये इश्क है क्या। सो गोपी किशन का कुमार सानुअल का याग्निक की आवाज में एंजॉय करते हैं एक और सुपर डुपर हिट नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

कुमार सानोलकर यानी की आवाज में हमने एंजॉय किया है इश्क कैसा रोग है अच्छा या बुरा ये वाला नगमा एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश और अगली फरमाइश हमारे पास में दोस्तों सबलू सावंत की मुंबई से सबलू सावंत को मुंबई से सुनना है गाना वादा ना तोड़ सो एंजॉय करेंगे ये वाला नगमा लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से आपका भी दिल से स्वागत है आपके अपने फरमाइशी की महफिल में और आपकी फरमाइशी गीत का आपके आरजे सिंपल को है बेसब्री से इंतजार सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश दोस्तों अगली फरमाइश है सबलू सावंत की और एंजॉय करेंगे ये सुपर डुपर हिट नगमा सिर्फ और सिर्फ हमारी लता जी की बहुत ही प्यारी सी बहुत ही सुरीली सी बहुत ही रोमांटिक सी आवाज में वाह व्हाट अ लवली सॉन्ग स्टे ट्यून्ड एवरीवन आई हैव थैंक यू सो मच सबलू

भी बंद किया जाए इस गाने को, स्टॉपेज लगाया जाए, ब्रेक लगाया जाए। वाओ, दिल खुश कर दिया आपने सबलु सावंत जी, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये फरमाइश थी सबलु सावंत की, मुंबई से हमने एंजॉय किया लता जी की आवाज में दिल चीर देने वाला नगमा दोस्तों, नो डाउट डेफिनेटली। और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अब अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी की, उनको भी सुनना है सदाबहार नगमा, एक सुनहरा नगमा, 90s का वो नगमा जिसके बिना 90 का दशक अधूरा था। दोस्तों एंजॉय करते हैं उदित।

राजा हिंदुस्तानी का ये नगमा उदित नारायण की आवाज में हमने एंजॉय किया है। दोस्तों बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले ये फरमाइश थी धर्मेश त्रिपाठी जी की, और उनका कहना है कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, गीत सुनाकर दिल को छू लिया।

रहेगा, आपने बहुत गलत शब्द का प्रयोग किया है, आपका एहसान नहीं। आपको तो कहना चाहिए और मेरे हिसाब से आपका साथ मेरा साथ आपको याद रहेगा और मुझे याद रहेगा। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, उनको सुनना है गाना आशा जी की और किशोर कुमार जी की आवाज में, स्वर्ग से सुंदर अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सुंदर हमने एंजॉय किया है। ये नगमा बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में। जी हाँ दोस्तों, भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम। सो एंजॉय करते हैं संग्राम का ये वाह वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ विकास और शुभम की फरमाइश पर जो की है लखनऊ से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, आई रियली लव दिस सॉन्ग। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो तबीश खान।

तुम हो हमारे साथ मगर जल रहे हैं हम, और भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश है मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की। उनको सुनना है गाना शिकार फिल्म का मोहम्मद रफी जी की आवाज में। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

शिकार करने को आए, शिकार होके चले। मोहम्मद रफी जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये ओल्ड स्कूल नगमा, मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि रफी साहब की आवाज में वो जादू, वो शोखी, वो कमाल है। रफी साहब की आवाज में वो जादू, वो शोखी, वो कमाल है। दशकों बाद भी हर दिल उनसे यूं ही बेहाल है। आज उनकी पुण्य तिथि पर सुरों के इस शहंशाह को दिल से नमन, जिनकी हर एक तान पर आज भी झूम उठता पूरा हिंदुस्तान है। सो चलिए एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में कार्तिक कश्यप की, उनको सुनना है गाना बहुत जताते हो चाहा हमसे। सो एंजॉय करते हैं अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाज में आदमी खिलौना है मूवी का ये नगमा, और इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और डेफिनेटली आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। सो जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं किया है, पेट पूजा करके फिर वापस आना और ढेर सारी खुशियां बिखेरेंगे, ढेर सारा सुकून बिखेरेंगे फरमाइशी की महफिल में। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी।

0: केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है। इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
1: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा। स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देश भर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु की सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए STF की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
3: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सल्लाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
5: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आनंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी, तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

वेलकम बैक इन योर शो फरमाइशी विद योर जस्ट सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

लोग दिल से चाहने वालों को कितनी आसानी से खो देते हैं ना। जब खो देते हैं तब एहसास होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया ने तो चुग लिया ना खेत, अब दोबारा से फसल थोड़ी है, फिर से तो बीज बोना पड़ेगा। वो फसल तो नहीं मिलेगी। सो वेलकम इन योर शो और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली परमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से। उनको सुनना है गाना बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। सो एंजॉय करते हैं आशु जी की परमाइश पे ये वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। इम्तियाज अहमद।

भद्रवी जी की पुण्यतिथि पर हमने एंजॉय किया है। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आशु मिश्रा जी की तरफ से था। ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रिब्यूट। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों रितेश साहू की। उनको सुनना है गाना रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा। एंड दोस्तों सच में आज मैं इतना मिस कर रही हूँ कि काश काश काश आज बहारी गजल मैं कवर कर रही हूँ, लेकिन कुछ काश बस काश होते हैं, इसीलिए तो वो काश होते हैं।

हमने इंजॉय किया है ये नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल शास्त्री जी की, उनको सुनना है मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में इस रंग बदलती दुनिया में गाना। से इंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। ये फरमाइश है अनिल शास्त्री की गोरख।

इस रंग बदलती दुनिया में हमने एंजॉय किया है। मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये सुनहरा सा नगमा। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से। अजय मिश्रा को सुनना है गाना दिल ले गया परदेसी, कोई रोकना था क्या होगा क्या होगा जरा सोचना था। वैसे दिल देने के पहले इंसान दिमाग से काम ले लेना तो दिल तो कभी टूटे ही ना, और दिमाग पे कभी इतना ओवरलोड।

क्या होगा होगा होगा मेरा सोचना था। हमने एंजॉय किया मिश ट्रॉपिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पे ये वाला गाना। और अजय दत्ता कितने बढ़िया बढ़िया गाने, आपकी प्लेलिस्ट सच में तगड़ी है, चोरी करने लायक है। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों नागेश्वर धाकड़ की, उनको सुनना है मोहम्मद रफी जी की आवाज में नगमा ना फनकार तुझसा तेरे बाद आया। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मोहम्मद रफ़ी, तो बहुत याद आया, एंजॉय करेंगे मोहम्मद अजीज़ जी की आवाज़ में। और ये ट्रिब्यूट है हमारे मोहम्मद रफ़ी जी के लिए हमारे नागेश्वर धाकड़ की तरफ से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

गाय किया है ये नगमा। ये ट्रिब्यूट था मोहम्मद रफ़ी जी के लिए नागेश्वर धाकर की तरफ से। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी जाते जाते कि मौसिकी, मौसिकी के आसमां पर वो ऐसा सितारा है, मौसिकी के आसमां पर वो ऐसा सितारा है जो कभी अस्त नहीं होता। और रफ़ी साहब आपकी आवाज़ कल भी हमारी थी, आज भी हमारी है और कल भी हमारी रहेगी। सो दोस्तों एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है निशा की पटेल नगर गोंडा से, उनको सुनना है गाना हाथों की लकीरों में। सो एंजॉय करते हैं उदित नारायण की आवाज में ये नगमा और इसी के साथ में लेना चाहूंगी अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए और आप सभी की तरफ से, आप सबकी तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल, बाय। दुआओं में याद रखना, सो मच ब्लेसिंग्स, सो मच केयर, सो मच लव टू यू गाइज। एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा, आई मीन निशा की फरमाइश।

मेरी गजल को मेरी जहां फकत गजल न समझ, एक आईना है जो हरदम तेरे मुकाबिल है, वो गुजरे जमाने की बातें, वो पुरानी यादें, गजल शेर व शायरी रात की महफिल, वाह क्या बात। तो अब आप भी बनिए ना इन महफिलों का हिस्सा, हर सैटरडे टू थर्सडे अपने आरजे मनु के साथ और फ्राइडे स्पेशल आरजे अदनान के साथ, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

मैं बज़्मे तसव्वुर में उसे लाए हुए था, जो साथ ना आने की कसम खाए हुए था। हम दिन भर लोगों के बीच में रहते हैं, हजारों बातें करते हैं, लेकिन क्या कभी खुद के लिए वक्त मिलता है? आज की शब हम आपको उस जगह ले चलेंगे जहां कोई भीड़ नहीं है, सिर्फ आप हैं और आपके तसव्वुर यानी कि कल्पनाओं की वो अंजुमन जिसे बरसों से आपने अपने दिल के किसी कोने में सजा रखा है। यहां हकीकत का दखल नहीं, सिर्फ ख्यालों की हुकूमत है। आदाब, इस्तकबाल करते हैं आपका आज के इस खास शो बहारे गजल में, आपके अपने आरजे अदनान। आज के इस शो का उन्वान है बज़्मे तसव्वुर यानी कि ख्यालों की महफिल। इसी तसव्वुर को कुछ अनवर शऊर साहब अपनी गजल में इस तरह पिरोते हैं कि मैं बज़्मे तसव्वुर में उसे लाए हुए था, जो साथ ना आने की कसम खाए हुए था। दिल जुर्मे मोहब्बत से कभी रह न सका बाज, हालांकि बहुत बार सजा पाए हुए था। हम चाहते थे कोई सुन ले बात हमारी, ये शौक हमें घर से निकलवाए हुए था। होने न दिया खुद पे मुसल्लत उसे मैंने, जिस शख्स को जी जान से अपनाए हुए था। बैठे थे शऊर आज मेरे पास वो गुमसुम, बैठे थे शऊर आज मेरे

और कई बार खुद भी ख्याल आता है कि ये तसव्वुर है क्या। तसव्वुर ना कारीगरी है, जहां हम अपनी यादों के धागों से उम्मीद की रेशम बुनते हैं। बज्म का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां अपने अजीज लोग इकट्ठा हों। और देखिए ना, इस महफिल में आपके अजीज आपके ख्याल हैं। इसी जगह हम हकीकत के उस नकाब को उतार देते हैं जो हमें दुनिया के लिए पहना हुआ है। यहां तो हम वो बनते हैं जो असल में होना चाहते हैं। एक साहब ने बड़ा ही खूब कहा था, वो तो तसव्वुर में भी आए तो महक उठे रूह, वो तो तसव्वुर में भी आए तो महक उठे रूह, सोचो अगर सामने होते तो क्या आलम होता। तसव्वुर की इसी कैफियत को सीमा शर्मा साहिबा अपनी इस खूबसूरत सी गजल में कुछ यूं पिरोती हैं कि लैला का अगर मुझको किरदार मिला होता, लैला का अगर मुझको किरदार मिला होता, मजनू सा कहानी को आधार मिला होता, सहरा में निकल जाता दरिया भी शराबों से, गर कल्पना को मेरी आकार मिला होता, पल भर की मोहब्बत में जान तक भी मैं दे देती, अफसोस नहीं होता गर प्यार मिला होता, होती ना महाभारत या कोई बगावत फिर, हकदार को जो उसका अधिकार मिला होता। अय्याश अमीरों के लड़के ना बिगड़ते गर, औरत को ना फिर कोई बाजार मिला होता, भूखे ना भटकते फिर दिन रात परिंदे ये, जो इनको शजर कोई फलदार मिला होता। और लिखती हैं कि मैं नूर जहां होती उस दौर की ऐसी माँ, मैं नूर जहां होती उस दौर की ऐसी माँ, गर मुझको जहांगीरी दरबार मिला होता।

नादानों कम निगाह रहा बेकमाल में, नादानों कम निगाह रहा बेकमाल में, किरदार जिंदगी पे बना एक सवाल में। हर इंसान के अंदर एक फनकार छिपा होता है और उस फनकार की एक जगह चाहिए होती है जहां उसे कोई टोकने वाला ना हो। वही पनाहगाह है बज़्मे तसव्वुर। बेशक जब हकीकत की दीवारें हमें कैद करने लगती हैं, जब दुनिया की जिम्मेदारियां हमें थका देती हैं, तब हम तसव्वुर यानी इसी हुजरे कमरे की तरफ आते हैं। यहां हम हकीकत की सरहदों को लांघ कर अपनी तन्हाई में आजाद होते हैं और यहां न कोई सही होता है न कोई गलत। यहां से बिला सुकून हमें जिंदा रखता है और हम खुद को तैयार करते हैं अगली सुबह को सामना करने।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
8: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
9: रात के इस मोड़ पर बज़्मे तसव्वुर और भी गहरी होने लगी है। एक अजीब सी कैफियत महसूस हो रही है ना? आप जानते हैं कि हम इस महफिल में बार बार क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ वो सब कुछ मुमकिन है जो जिंदगी ने हमसे छीन लिया। यहाँ बिछड़े हुए यार मिलते हैं, यहाँ वो मोहब्बतें मुकम्मल होती हैं जो अधूरी रह गई। और तो और, यहाँ के सपने पूरे होते हैं जिन्हें दुनिया ने नामुमकिन करार दिया था। ये तसव्वुर ही तो है जो हमें एक नई उम्मीद देता है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसका दरवाजा सिर्फ आपके पास है। आइए, ये खूबसूरत सी गजल आपको उसी तसव्वुर की दुनिया में ले जा रही है। गजल कुछ यूं है कि वो अदा फरेब महफिल, वो नजर बलाएं जा हैं, मुझे क्या यकीन आए कि वो मुझ पे मेहरबान हैं। कभी आंख से दिल तक, कभी दिल से जिगर तक, जो मिली है उस नजर से वो खलिश कहाँ कहाँ है। जो अधर में है बेकरारी, वही बेकली इधर है। ना सुकून दिल यहाँ है, ना सुकून दिल वहाँ है। तुझे बेरुखी मुबारक, मुझे गम पे गम दिए जा। मेरी हिम्मत सलामत, मेरा हौसला जवां है। मेरे होंठ सीने वाले, कभी तूने ये भी सोचा। वहाँ खामोशी से हासिल, जहाँ खामोशी जुबा है। हुए एक चमन में पैदा, मगर अपनी अपनी किस्मत। कोई खार बन के खटका, कोई हुस्न गुलिस्तां है। कोई बज़्म ये ना पूछे, ये मामला है दिल का। कि जहां कदम वो रख दे, वो जमी भी आसमां है। जहां कदम वो रख दे।

इस बज़्मे तसव्वुर में बस यार की बातें हैं, मिज़गां के कसीदे हैं, रुखसार की बातें हैं। वैसे तो वक्त ने इशारा कर दिया है अब आपसे विदा लेने का, लेकिन मुझे यकीन है बहारे गज़ल की ये महफिल आपके जहन में सजी रहेगी। जाने से पहले एक बात कि बज़्मे तसव्वुर को कभी वीरान मत होने दीजिएगा, चाहे दुनिया कितनी भी बेरहम क्यों ना हो जाए, अपने ख्यालों की, अपनी इस बस्ती की दुनिया को आबाद रखिएगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां आपकी रूह खुल कर सांस लेती है। अपने तसव्वुर हमेशा जिंदा रखिएगा ताकि जिंदगी में अंधेरा महसूस ना हो। और जाकिर खान जाकिर साहब लिखते हैं कि इस बज़्मे तसव्वुर में बस यार की बातें हैं, मिज़गां के कसीदे हैं, रुखसार की बातें हैं, होंठों के दरीचों पर दिलदार की बातें हैं, पर्दा भी है पर्दे में दीदार की बातें हैं, इजहार मोहब्बत का अंदाज निराला है, इनकार के लहजे में इकरार की बातें हैं, दिन रात तसव्वुर में तस्वीर तुम्हारी है, इस पार की दुनिया में उस पार की बातें हैं, यूं कैफ नुमाया है गजलों में मेरे जैसे, आफाक की वसअत में फनकार की बातें हैं, आंखों की मेरी पढ़कर साकी ने कहा हंसकर, ईफान जरा मुश्किल में ख्वार की बातें हैं, ये इश्क तुम्हें जाकिर किस मोड़ पे ले आया, जंजीर है पैरों में झनकार की बातें हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अगले हफ्ते इसी वक्त किसी नए मौजू के साथ आपसे।

नमस्कार श्रोताओं, रात गहरी है, हवाएं कुछ कह रही हैं और शायद आज भी कोई ऐसी कहानी आपका इंतजार कर रही है जिसे सुनने के बाद आप सो तो जाएंगे लेकिन चैन नहीं पाएंगे। मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम ज्ञानस्थली रेडियो पर अपना लेट नाइट हॉरर शो। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं, वो केवल एक भूत की कहानी नहीं है, वो एक माँ की कहानी है, एक ऐसे वादे की कहानी जो उसने अपने बच्चे से किया और जिसे निभाने के लिए उसे मृत्यु से भी लौटना पड़ा। लेकिन याद रखिए, आज जो भी आप सुनेंगे उसमें डर कम होगा और प्रेम शायद आपकी कल्पना से भी अधिक। कहानी का नाम है आखिरी लोरी। एक प्यारा सा घर, सुबह चिड़ियों की आवाज, रसोई में चाय उबाली जा रही है, घर हंसी से भरा हुआ है। आरती हंसते हुए अपने पति से कहती है, नीरज जरा जल्दी आइए, देखिए आपका बेटा फिर से शरारत कर रहा है। नीरज मुस्कुराते हुए कहता है, अरे अभी ये

की एक घंटी भी है। और हाँ, मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आरती उसे देखती रहती है, उसकी आंखों में खुशी भी है और जाने क्यों एक हल्की सी उदासी। शाम का समय था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। नीरज की माँ छोटे छोटे मोजे बुन रही थी। आरती उनके पास धीरे से आकर बैठ जाती है। कुछ देर दोनों चुप रहती हैं। फिर आरती धीरे से कहती है, अम्मा अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? माँ जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे बहू तू पूछ कर तो देख, तेरे लिए जान भी हाजिर है। आरती कहती है, माँ जी अगर मेरे बच्चे को मेरी जरूरत पड़े और मैं उसके पास ना रहूं तो? माँ जी तुरंत उसके मुंह पे हाथ रख देती हैं, चुप ऐसी बात कभी मत कहना, बच्चे के आने से पहले माँ ऐसी बातें नहीं करती। आरती मुस्कुरा देती है लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है, पता नहीं अम्मा पिछले कई दिनों से एक ही सपना बार बार आता है। मैं बहुत लंबा रास्ता चल रही हूँ, चारों ओर धुंध है, पीछे से कोई छोटा सा बच्चा बार बार मुझे माँ कहकर बुला रहा है। मैं मुड़ना चाहती हूँ लेकिन मुड़ नहीं पाती। माँ जी का चेहरा गंभीर हो जाता है, वो आरती का हाथ पकड़ लेती है, कहती है, आज से बहू ऐसे सपनों को यहीं छोड़ दो, भगवान तेरे घर आने वाले हैं, उन्हें ऐसी अशुभ बातें पसंद नहीं है। उसी समय हवा का एक तेज झोंका आता है, बरामदे में टंगी छोटी सी चांदी की घंटी अपने आप एक बार बजती है, टन। दोनों एक साथ उसकी ओर देखते हैं। हवा अचानक रुक जाती है। आरती बहुत देर तक उसे देखती है, फिर कहती है, अम्मा पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बहुत दूर बुला रहा है। प्यारे श्रोतागण, क्या ये केवल उसका एक वहम था या आने वाले समय की दस्तक? उस समय न आरती जानती थी न नीरज कि 24 घंटे के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, जिस दिन हमारी दुनिया बदलने वाली होती है उस दिन सब कुछ सुंदर लगता है। दूसरे दिन आरती रसोई में खीर बना रही थी। दादी कहती हैं, क्या बात है आज बहू? आरती कहती है, हमारे नन्हे मेहमान की फरमाइश है। दोनों हंसती हैं। नीरज अंदर आता है, अरे भाई क्या चल रहा है? आरती बोली, कुछ नहीं, आज जल्दी घर आना, हम साथ खाना खाएंगे और एक सरप्राइज भी है आपके लिए। नीरज कहता है, ठीक है। नीरज ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। आरती उसके माथे पर टीका लगाती है, फिर पता नहीं क्यों धीरे से कहती है, नीरज अगर मैं कभी पहले चली जाऊं तो मेरे बच्चे को अकेला मत छोड़ना। नीरज तुरंत रोक देता है, ऐसी बातें मत करो आरती, हम हमेशा साथ रहेंगे। आरती हल्के से मुस्कुराती है। शाम के समय तेज बारिश हो रही थी। अचानक आरती दर्द से नीचे झुक जाती है और कहती है, अम्मा दर्द हो रहा है। माँ जी भी घबरा जाती है। नीरज दौड़ते हुए कार निकालता है। तेज बारिश हो रही है, कार तेजी से दौड़ती है अस्पताल की ओर। आरती पीछे लेटी है, माँ उसका हाथ कस कर पकड़ लेती है। नीरज भी बार बार पीछे देखता है। आरती घबराओ मत, बस पहुंच गए। आरती कहती है, अगर मैं बच्चे को गोद ना ले पाऊं तो उससे कहना उसकी माँ उसको बहुत प्यार करती है। नीरज की आवाज भर्रा जाती है, आरती कुछ नहीं होगा तुमको, तुम उसे गोदी लोगी। अस्पताल आ जाता है, कार रुकती है, स्ट्रेचर आता है, चारों तरफ भागदौड़ है। नर्स चिल्लाती है, जल्दी पेशेंट की हालत बिगड़ रही है, ऑपरेशन थिएटर। आरती को अंदर ले जाया जाता है। नीरज का हाथ आरती के हाथ से छूट जाता है और दरवाजा धीरे धीरे बंद हो जाता है।

वो दरवाजा सिर्फ एक ऑपरेशन थिएटर का नहीं था, उसके उस पार एक माँ अपने सबसे बड़ा निर्णय लेने वाली थी और घड़ी धीरे धीरे उस समय की ओर बढ़ रही थी जो आने वाले वर्षों में ठीक 2:13 की ओर जा रही थी। एक ऐसा समय जो अगले 7 वर्षों तक हर रात किसी को वापस लेकर आने वाला था। अस्पताल में 2 लड़ाइयां चल रही थी, एक डॉक्टर जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी ओर एक माँ अपने बच्चे के लिए बराबर प्रार्थना कर रही थी। डॉक्टर मेहरा ने पूछा, ब्लड प्रेशर कितना है? नर्स बोली, 60/40 सर, बीपी लगातार गिर रहा है। डॉक्टर मेहरा बोले, 1 यूनिट और ब्लड, जल्दी जल्दी। आरती आधी बेहोशी में है, उसकी पलकों के कोने भीगे हुए हैं, वो बहुत मुश्किल से बोल पाती है। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा ठीक है। अरे आप घबराइए मत, हम आपको और बच्चे को दोनों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप झूठ अच्छा नहीं बोल पाते, मैं समझ रही हूँ। डॉक्टर मेहरा कुछ नहीं कहते, उनकी आंखें मॉनिटर पे टिक जाती है। आरती धीरे से उनका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है, डॉक्टर साहब, अगर ऐसा समय आ जाए कि आपको मुझ में और मेरे बच्चे में किसी एक को चुनना पड़े, तो आप प्लीज मेरे बच्चे को बिना सोचे बचाइएगा। डॉक्टर मेहरा चौंक जाते हैं, अरे ऐसी बातें मत सोचिए। आरती कहती है, नहीं डॉक्टर, मुझे सच पता है, मैं माँ हूँ, मुझे महसूस हो रहा है, आप वादा कीजिए आप उसे बचाएंगे, चाहे मुझे जान देना पड़े। डॉक्टर बेहरा की आंखें भर आती है, वे कुछ पल चुप रहते हैं, फिर बहुत भारी मन से कहते हैं, मैं वादा करता हूँ। आरती ने संतोष से आंखें बंद कर लिया, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ जाती है। नीरज ऑपरेशन थिएटर के बाहर टहल रहा था, बार बार दरवाजे की ओर देखता, माँ जी माला फेर रही थी। नीरज कहता है, माँ कुछ होगा तो नहीं? आज सुबह ही तो वो हंस रही थी, खीर बना रही थी, मुझसे लड़ भी रही थी, इतनी जल्दी इतना सब कैसे बदल सकता है? माँ जी कुछ उत्तर नहीं देती, सिर्फ माला फेरती रहती हैं। भगवान पे भरोसा करो बेटा। तब तक नर्स अंदर घबरा के डॉक्टर मेहरा से कहती है, सर हमें तुरंत निर्णय लेना होगा। डॉक्टर मेहरा की आंखें बंद हो जाती हैं, सिर्फ 2 सेकंड, लेकिन उन 2 सेकंड में एक परिवार का भविष्य तय करना है। उन्हें आरती का वादा याद आता है, उनकी आंखें, उनकी आवाज सब धीरे से कहते हैं, बच्चे को बचाइए। ऑपरेशन थिएटर में कुछ क्षण सन्नाटा छा जाता है और फिर पूरा कमरा एक नवजात शिशु के रोने की आवाज से गूंज जाता है। आरती बहुत धीरे से आंखें खोलती है, उसे अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, उसके होंठों पे मुस्कान आ जाती है। रो रहा है डॉक्टर साहब? हाँ बहुत जोर से, लेकिन बिल्कुल स्वस्थ है। आरती की आंखें बंद होने लगती है, वो अचानक डॉक्टर का हाथ पकड़ लेती है, इतनी मजबूती से कि डॉक्टर साहब भी चौंक जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने मेरा वादा निभाया। डॉक्टर मेहरा का सर झुक जाता है, आरती सब समझ जाती है, लेकिन वो रोती नहीं, वो मुस्कुराती है, इतनी शांत मुस्कान, डॉक्टर मेहरा जीवन भर उसे भूल नहीं पाते। आरती ने कहा, डॉक्टर साहब रोइए मत, आपने कोई गलती नहीं की, अगर माँ और बच्चे में कभी चुनाव करना पड़े तो हर माँ अपने बच्चे को ही चुनेगी, आज आपने भी वही किया जो मैं करती। डॉक्टर मेहता फूट फूट कर रो पड़ते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको नहीं बचा पाया। अरे नहीं डॉक्टर साहब, आपने मुझे नहीं खोया, आपने तो मेरी पूरी
दुनिया बचा ली, एक वादा कीजिए, अगर कभी मेरा बेटा पूछे मेरी माँ कहाँ है, तो उससे ये मत कहिएगा कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, उससे कहिएगा उसकी माँ ने उसे चुना था। और अगर कभी रात के 2:13 पर उसे मेरी जरूरत पड़े, तो भगवान से कहिएगा मुझे बस थोड़ी देर के लिए उसे भेज दे। डॉक्टर मेहरा का गला भर जाता है, वे दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। मैं वादा करता हूँ आरती, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। घड़ी धीरे धीरे 2:13 बजाती है। उसी क्षण आरती अपने बच्चे की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, मेरा लाल, तेरी माँ जा रही है, लेकिन हर रात 2:13 पर वो तेरे पास आएगी। मॉनिटर पे एक लगातार बीप चल रही है। बाहर बिजली तेजी से कड़क रही है, बारिश बहुत तेज हो गई है। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है, डॉक्टर मेहरा बाहर आते हैं। उनकी बाहों में एक नवजात शिशु है, लेकिन उसकी आंखों में 7 जन्मों का दुख। डॉक्टर मेहरा रूंधे गले से कहते हैं, नीरज जी, आपका बेटा बिल्कुल स्वस्थ है। नीरज मुस्कुरा देता है, मगर अगले ही पल पूछता है, और आरती? डॉक्टर मेहरा कुछ नहीं कह पाते, बस सिर धीरे से सर झुका देते हैं। नीरज की मुस्कान उसी पल हमेशा के लिए टूट जाती है। प्यारे श्रोतागण, जल्दी मिलेंगे आपसे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन गोंडा शहर की धड़कन।
1: प्यारे श्रोतागण, आरती की चिता की आग अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी और उसी घर में एक नन्ही सी जान अपनी माँ को ढूंढ रहा था। कभी कभी पहली रात सबसे लंबी होती है और खास तौर पे जब माँ साथ ना हो। नीरज घर में एंटर करता है अपने बच्चे को गोद में लिए। उसकी चाल में थकान है और एक खालीपन। माँ दरवाजे पे खड़ी है, हाथ में थाली जिसमें दीपक जल रहा है, लेकिन आज कोई स्वागत नहीं, कोई मुस्कान नहीं, कोई मंगल ध्वनि नहीं। आज उसी घर में आरती की तस्वीर सजी है। तस्वीर के सामने फूल रखे हैं। माँ धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं। वो दीपक तस्वीर के सामने रखती हैं, बहुत सावधानी से, जैसे जरा सी भी चूक से सब बिखर जाएगा। कुछ पल वो तस्वीर को देखती रहती है, फिर उनकी आवाज टूटती है। भर्राए स्वर में कहती हैं, बहू तू दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, सोचा था एक दिन माँ बनकर इस घर को हंसी से भर देगी, लेकिन तू तो अपनी सारी हंसी यहाँ छोड़कर चली गई। कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। नीरज वहीं खड़ा है, वो तस्वीर को देखना चाहता है, लेकिन इतना दर्द है कि वो देख ही नहीं पाता। उसकी नजरें बार बार झुक जाती है। रात गहरी हो गई। नवजात बच्चा लगातार रोता है। थोड़ी देर के लिए चुप होता है, फिर रोने लगता है। दादी माँ बच्चे को गोद में लेती हैं, धीरे धीरे झुलाती हैं, दूध पिलाने की कोशिश करती हैं, लोरी भी गुनगुनाती हैं, लेकिन बच्चा चुप ही नहीं होता। उसका रोना जैसे किसी को पुकार रहा हो। नीरज कमरे में टहल रहा है, धीरे फिर तेज फिर रुक के। वो बेचैन है, उसकी सांसें भारी हैं। कुछ देर बाद वो रुकता है और कहता है, माँ इसने शायद अपनी माँ की खुशबू पहचान ली है। इसे कैसे समझाऊं कि जिसे ये ढूंढ रहा है वो। नीरज आगे नहीं बोल पाता, उसकी आवाज रुक जाती है। कुछ पल वो बस बच्चे को देखता रहता है, फिर धीरे से उसे गोद में लेता है, सीने में लगाता है और रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तेरी माँ को नहीं बचा पाया। कमरे में सिर्फ बच्चे का रोना, माँ की और नीरज की सिसकियाँ रह जाती है। 2:12 हो गए। कमरे में एक अजीब सी शांति उतरने लगती है, जैसे हवा भी ठहर गई हो। बच्चा अभी भी रो रहा है, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। धीरे धीरे 2:13, चांदी की घंटी धीरे से बजती है। पूरे कमरे में मोगरे की खुशबू फैलने लगती है और बच्चा चुप हो जाता है, जैसे किसी ने उसे गोद में ले लिया हो। दादी चौंक जाती है, पूछती है, अरे नीरज ये क्या है, क्या तुमने घंटी बजाई है। पालना भी धीरे धीरे हिलने लगता है। माँ जी फुसफुसा के कहती हैं, हे राम। नीरज बहुत सावधानी से पालने के पास जाता है, अंदर झांकता है। उसका बेटा आरव अब रो नहीं रहा था, ऐसा लगता था जैसे मुस्कुरा रहा है। उसकी छोटी सी मुट्ठी धीरे धीरे खुलती है और फिर बंद हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी का हाथ उसने कस के पकड़ रखा है। और फिर कमरे में धीरे धीरे एक लोरी सुनाई दे जाती है, सो जा मेरे लाल, माँ यही है। आवाज बहुत हल्की है, लेकिन एक अजीब सी गर्माहट। माँ जी रोते हुए कहती हैं, बहू तू आ गई। नीरज भी कुछ नहीं देख पाता, लेकिन उसके कंधे पर एक हल्का सा स्पर्श महसूस होता है। वो पूछता है, आरती क्या सचमुच तुम हो। जैसे ही वो बोलता है, लोरी धीरे धीरे थमने लगती है। मोगरे की खुशबू भी हल्की पड़ने लगती है। पालना धीरे धीरे रुक जाता है और फिर कमरे में वही सन्नाटा। माँ और बेटे दोनों ही अभी इसी अनुभव में डूबे हुए थे कि दरवाजे के बाहर जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। धड़ाम धड़ाम, नीरज ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुसीबत में है। वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है, लेकिन किसी ने धीरे से उसके कान में कहा, बहुत ही परिचित आवाज, मत खोलो। नीरज का शरीर एकदम सख्त हो जाता है, उसकी सांसें रुक जाती है। वो ये आवाज पहचानता है, अरे ये तो आरती की आवाज है। वो तुरंत हाथ पीछे खींच लेता है, धीरे से शान स्वर में कहता है, आरती अगर ये तुम्हारी चेतावनी थी तो मैं समझ गया, मैं अब बिना तुम्हारी बातें सुने कोई दरवाजा नहीं खोलूंगा। प्यारे श्रोतागण, उस रात नीरज ने दरवाजा नहीं खोला और कभी कभी एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। उसे ये पता नहीं था कि अगर उसने वो दरवाजा खोला होता तो शायद उसका बेटा 7 साल का होने से पहले ही अपने पिता को खो देता, क्योंकि उस दस्तक के पीछे कौन था ये सच अभी आना बाकी था। सुबह हो गई, लेकिन उस घर में किसी को नींद नहीं आई। तभी पड़ोसी के रमेश जी का फोन आता है और वो पूछते हैं, नीरज भैया आपने दरवाजा तो नहीं खोला ना? नीरज कहता है, नहीं नहीं, क्यों, क्या हुआ? अरे आपके दरवाजे पर रात की आंधी की वजह से 11,000 वोल्ट का तार दरवाजे पे गिर गया था। अगर कोई बाहर निकलता तो दादी के हाथ से तो लोटा गिर जाता है। नीरज भी एकदम स्तब्ध रह जाता है। उसे याद आई आरती की आवाज, दरवाजा मत खोलना। वो आरती की तस्वीर की तरफ देखता है और फिर कहता है, आरती तुमने हमें बचा लिया। कुछ महीने बाद आरव धीरे धीरे घुटने के बल चलता है। घर में हंसी लौट आई, लेकिन एक चीज नहीं बदली। हर रात 2:13 पर घंटी और मोगरे की खुशबू और वो लोरी। पर अब कोई डरता नहीं। अगर कभी लोरी में देर हो जाए तो दादी माँ मुस्कुरा के कहती हैं, अरे भाई आज बहू को देर हो गई, और सब एक साथ हंसते हैं। एक दिन आरव चलने की कोशिश करता है और वो लड़खड़ाता है तो किसी ने जैसे उसको थाम लिया है, वो गिरता नहीं है। आरती, नीरज भावुक होके कहता है, देखो आरती तुम्हारा बेटा चलने लगा। उस रात की लोरी भी अलग थी। 2:13 पे खुशी से भरी हुई थी। चलना सीख गया मेरा लाल, अब दुनिया उसकी राह बने। उस घर में अब डर नहीं था, वहाँ थी एक माँ की दुआ, जो हर रात 2:13 पर अपने बच्चे को सुलाकर चली जाती थी। प्यारे श्रोतागण, जल्दी मिलेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन
1: प्यारे श्रोतागण, समय किसी का इंतजार नहीं करता। 7 वर्ष बीत गए। नन्हा आरव अब दूसरी कक्षा में पढ़ता था। दादी माँ के बाल पूरे सफेद हो चुके थे। नीरज की मुस्कान अब लौट आई थी, लेकिन रात के 2:13 पर हर रात सब जाग जाते थे, क्योंकि सबको पता था उस समय एक माँ अपने बेटे से मिलने आई है। आरव अब बहुत बातें करने लगा था। एक रात नीरज आरव के कमरे में बैठा था। आज उसने निश्चय किया कि वो अपने बेटे से सब पूछेगा। उसने कहा, बेटा एक बात पूछूं? हाँ पापा, पूछिए। जब मम्मी आती हैं, तो कैसे दिखती हैं? आरव ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, बिल्कुल फोटो जैसी, बस पापा थोड़ा ज्यादा मुस्कुराती हैं, और उनकी साड़ी से, उनके बालों से हमेशा मोगरे की खुशबू आती है। नीरज के हाथ कांप जाते हैं। वो तुमसे क्या बातें करती है बेटा?
2: बहुत सारी बातें पापा, कभी कभी तो आपकी बहुत शिकायत भी करती है।
1: दादी हंस पड़ती हैं। अरे भाई, हमारी बहू आज भी वैसे ही है लगता है। आरव कहता है, पापा, वो कहती है तुम्हारे पापा आज भी चाय में चीनी ज्यादा डालते हैं।
3: नीरज एकदम चौंक जाता है। ये बात सिर्फ आरती जानती थी।
1: कुछ देर बाद आरव बहुत गंभीर हो जाता है और कहता है, पापा मम्मी आजकल एक बात बार बार कहती हैं।
2: क्या? उन्होंने कहा अब समय आ गया है, आप लोग डॉक्टर अंकल से मिले।
3: डॉक्टर मेरा?
2: हाँ पापा, लेकिन क्यों? मम्मी कह रही थी 7 साल से एक इंसान मेरी वजह से हर रात रोता है, अब उसे आजाद करना है।
1: नीरज का चेहरा बदल जाता है। उसे पहली बार डॉक्टर मेहरा की भीगी आंखें याद आती है। ऑपरेशन थिएटर, वो झुका हुआ सर, वो टूटी हुई आवाज। क्या सचमुच डॉक्टर मेहरा किसी बात के लिए अपने को दोष दे रहे हैं? अगले दिन नीरज, दादी और आरव तीनों डॉक्टर मेहरा के घर पहुँचे। 70 वर्ष के डॉक्टर मेहरा झुके हुए कंधे, आँखों पर मोटा सा चश्मा, चेहरे पर गहरी थकान। उनके दीवार पर दर्जनों बच्चों की तस्वीर लगी है, लेकिन एक फ्रेम अलग रखा था, उसमें आरती की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर।
3: नीरज कहता है, डॉक्टर साहब आपने आरती की तस्वीर?
1: डॉक्टर मेहरा की आंखें भर आती है।
2: कुछ मरीज नीरज डॉक्टर की फाइल से निकल जाते हैं, लेकिन उनके दिल से नहीं निकलते। वे कुर्सी पर बैठते हैं, बहुत देर तक कुछ नहीं बोलते, फिर अचानक दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। आज मैं आपको एक सच बात बताने वाला हूँ, जो 7 साल से मेरे सीने पे पत्थर बनकर रखा है।
1: बाहर हवा चल रही है, अंदर एकदम सन्नाटा, और अचानक पूरे कमरे में मोगरे की खुशबू फैल जाती है। डॉक्टर मेहरा फुसफुसा के कहते हैं,
2: आरती तुम क्या यहीं हो?
1: दोस्तों, 7 वर्षों से दबा हुआ सच अब सामने आने वाला था। एक ऐसा सच जो एक डॉक्टर को अपराधी बना गया, एक पति को अधूरा, और एक माँ को हर रात 2:13 पर अपने घर लौटने के लिए मजबूर करता है। कहते हैं डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि भगवान की तरह उन्हें कभी कभी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिसका दर्द वे सारी उम्र अपने भीतर लिए फिरते हैं। डॉक्टर मेहरा कहते हैं, नीरज जी उस रात की पूरी कहानी मैंने कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन अब समय आ गया है। डॉक्टर मेहरा उस रात की पूरी घटना बताते हैं, कैसे ऑपरेशन के दौरान हालत अचानक बिगड़ गई, कैसे उन्हें कुछ ही पलों में एक कठिन निर्णय लेना पड़ा, और कैसे उस निर्णय ने उनकी जिंदगी बदल दी। उनकी आवाज में
2: पछतावा साफ था। उस दिन से नीरज मैंने अपने को माफ नहीं किया। नीरज और दादी माँ की आंखें नम थी। डॉक्टर मेहरा आगे बताते हैं कि ऑपरेशन के बाद कुछ क्षणों के लिए आरती को होश आया था। उन्होंने बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत गहरी बात कही थी। उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया बल्कि एक माँ की तरह अपनी आखिरी इच्छा जताई। उसने बस इतना कहा था कि डॉक्टर साहब जब भी उसका बच्चा उसे पुकारे उसे उसके पास आने दिया जाए। दादी माँ रो पड़ती हैं। कमरे में सिर्फ सिसकियों की आवाज आती है। डॉक्टर मेहरा घुटने के बल बैठ जाते हैं। कहते हैं 7 साल से मैं हर रात 2:13 पे जाग जाता हूँ। ऐसा लगता है आरती शायद मुझसे नाराज होगी। पर इतने में आरव मुस्कुराते हुए आता है और कहता है देखिए देखिए मम्मी आ गई हैं। फिर कहता है डॉक्टर साहब मम्मी कह रही हैं डॉक्टर अंकल अब रोइए मत, आपने कोई गलती नहीं की, आपने मेरा वादा पूरा करवाया, आप अपने आप को माफ कर दीजिए। डॉक्टर मेहरा की रुलाई फूट पड़ती है। वे तस्वीर के सामने सिर झुका देते हैं। मोगरे की तेज लेकिन मधुर खुशबू, घंटी की आवाज और कमरे में मौजूद चारों लोग एक साथ वही लोरी सुनते हैं, सो जा मेरे लाल। मगर अब किसी को किसी बात का डर नहीं था। श्रोतागण 7 वर्षों का बोझ एक पल पे उतर गया। एक डॉक्टर को माफी मिल गई, एक पति को उत्तर मिल गया, एक दादी को सुकून मिल गया, लेकिन एक माँ को अभी एक वादा पूरा करना था। जल्दी मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
4: चंपा, अब तुम भगवान से वो प्रार्थना करो जो बाबूजी किया करते थे।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: श्रोतागण, कभी कभी किसी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य भूत नहीं होता, प्रेम होता है। और प्रेम जब वचन बन जाए तब उसे मृत्यु भी नहीं रोक सकती। आइए सुनते हैं आखिरी लोरी का अंतिम अध्याय। डॉक्टर मेहरा के घर से वापस आने के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदल गया। अब कोई डर नहीं था। हर रात ठीक 2:13 पर सब कुछ एक तय क्रम से होने लगा। दादी उठती, दीपक जलाती, नीरज खिड़की खोल देता और आरव हल्की मुस्कान के साथ कहता, मम्मी मैं वेट कर रहा हूँ। और फिर वही परिचित संकेत, चांदी की घंटी की हल्की आवाज, टन मोगरे की खुशबू धीरे धीरे कमरे में फैल जाती और लोरी शुरू हो जाती। लेकिन उस रात कुछ अलग था। लोरी वही थी, घर वही था, पर उसके सुरों में एक गहरी विदाई का एहसास था। आरव धीरे से उठकर बैठ जाता है। वो मुस्कुरा रहा था लेकिन आंख में आंसू भी थे। नीरज ने पूछा, क्या हो गया बेटा तुमको? आरव कहता है, मम्मी कह रही है आज वो आखिरी बार आई है, दादी की आंखें भर आती है। नहीं नहीं बहू, इतनी मत, जल्दी मत जा। आरव कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, पापा दादी मम्मी कह रही हैं, अम्मा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो वहीं रहूँगी जहाँ आपने मुझे हमेशा रखा है, अपने आशीर्वाद में। नीरज धीरे धीरे उठता है, आरती की तस्वीर के सामने खड़ा हो जाता है। कुछ क्षण चुप रहता है जैसे शब्द खोज रहा हो, फिर शांत स्वर में बोलता है, आरती जब तुम आई थी मैंने तुम्हें जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, तुमने हर वादा निभाया, यहाँ तक कि वो भी जो मृत्यु के बाद का था, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें धन्यवाद नहीं कह पाया। आज कह रहा हूँ धन्यवाद, तुमने मुझे पिता बनना सिखाया, धन्यवाद मुझे माँ का प्रेम समझाने के लिए, और धन्यवाद उस रात के लिए जब तुमने हमारे घर की रखवाली की, मेरी जान बचाई। उसकी आवाज हल्की सी कांप जाती है। अब तुम निश्चित होकर जाओ, मैं तुम्हारे बेटे का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आरव भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जैसे उसके सामने खड़ा हो वो भी अपना छोटा सा हाथ आगे करता है। मम्मी आपने कहा था मैं पापा का सहारा बन जाऊं, तब आप चली जाएंगी। देखिए अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं पापा को दवा याद दिलाता हूँ, दादी का ध्यान रखता हूँ, मैं अब रोता नहीं हूँ, पढ़ाई अपने आप से करता हूँ। आप जाइए माँ, आराम करिए, मैं पापा का हाथ पकड़ूंगा माँ। इतना कहकर वो एक हाथ से नीरज का और दूसरे से दादी का हाथ पकड़ लेता है। तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। पहली बार और आखिरी बार आरती की आवाज साफ सुनाई देती है, बहुत शांत, बहुत स्नेह से। अम्मा अपना ध्यान रखिएगा, नीरज समय पे खाना खा लिया करना, और मेरे लाल याद रखना, माँ कभी दूर नहीं जाती, सिर्फ दिखाई देना छोड़ देती है। कुछ क्षण का मौन, फिर वही लोरी, सोचा मेरे लाल अब तेरा हर सपना तेरी माँ की दुआ है। लोरी धीरे धीरे दूर हो जाती है, मोगरे की खुशबू भी धीरे धीरे हवा में घुल जाती है। दीपक की लौ एक बार हल्की सी तेज होती है, फिर स्थिर हो जाती है। अगली रात घड़ी में फिर वही समय 2:13। तीनों जाग रहे हैं, लेकिन इस बार न घंटी, न लोरी, न मोगरे की खुशबू, घर पूरी तरह शांत। नीरज कहता है, माँ वो अपना वादा निभा के चली गई। उसके आंख में आंसू है लेकिन उनमें सुकून है। दादी माँ भी भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहती है, जा बहू अब चैन से रहना, तेरा घर तेरा लाल हम सब संभाल लेंगे। आरव खिड़की से आसमान की ओर देखता है, एक चमकीला तारा टिमटिमा रहा है। वो धीरे से हाथ हिलाता है और कहता है, गुड नाइट मम्मी। श्रोताओं, आखिरी लोरी यहीं खत्म होती है, पर उसका एहसास शायद कभी नहीं खत्म होगा। अगर माँ साथ है तो उसे गले लगा लीजिए, और अगर नहीं तो उसकी एक सीख आज भी जी लीजिए, क्योंकि माँ का प्रेम कभी जाता नहीं, बस एक अनसुनी लोरी बनकर साथ रहता है। मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे, आप सुन रहे थे 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो। अपनों का हाथ थामे रखिए, क्योंकि कुछ वादे मृत्यु भी नहीं तोड़ सकती। शुभ रात्रि।
0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: चेहरे पर मासूमियत, आंखों में अनगिनत ख्वाब थे, हर मुस्कान में जैसे हजारों जवाब थे। पर्दे पर आई तो चांद भी शर्मा गया, मधुबाला नाम ही सिनेमा का खूबसूरत गुलाब थी। संघर्ष की राह पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हर किरदार में अपनी आत्मा पूरी उतारी। दर्द दिल में था मगर चेहरे पर मुस्कान रहती थी, यही उनकी सबसे बड़ी और सच्ची अदाकारी थी।
3: प्रेम मिला, बिछड़ना भी मिला, फिर भी कभी शिकायत न की। जिंदगी ने जितनी परीक्षाएं ली उतनी ही शिद्दत से जी। कम उम्र में दुनिया छोड़ गई पर अमर हो गई, हर पीढ़ी के दिल में अपनी जगह हमेशा के लिए बना गई। मधुबाला हमें सिखाती है कि सुंदरता केवल चेहरे में नहीं होती, सच्ची पहचान इंसान के कर्मों और मुस्कान में होती है। वो आज भी हर दिल में एक चमकता सितारा है, भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और अमर धरोवर है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश।
4: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
3: आज लेकर के आ रहे हैं उस सिनेमा की खूबसूरत धरोहर के बारे में, जो कि आज भी हमारे दिलों में सिर्फ एक प्यार भरा जब नाम आता है तो प्यारी सी गुदगुदाहट सी होने लगती है। वो प्यारा सा नाम मधुबाला। मधुबाला के नाम से ही हमारे सामने हमारी एक बहुत ही प्यारी सी प्रकृति सामने आती है, एक खूबसूरत सी प्रकृति, एक खूबसूरत सा चेहरा, एक खूबसूरत सी आवाज, एक खूबसूरत सी अदाकारा। तो आइए चलते हैं आज की सफर में, हम इसी खूबसूरत सफर को लेकर के साथ में उनकी कई चीजों को, उनके कई बातों को आपके साथ आज हम शेयर करेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनकी महकती यादों के बारे में। तो आज का सफर होने वाला है भूले बिसरे गीत में मधुबाला को लेकर के। तो आइए सुनते हैं एक प्यारे से गीत को।

0: मधुबाला भारतीय सिनेमा की सबसे सुंदर, प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उनका असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने लगभग 22 वर्षों के फिल्मी करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और आज भी उन्हें भारतीय सिनेमा की अमर अभिनेत्री माना जाता है।
1: मधुबाला का बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता। उनके पिता की नौकरी छूटने के बाद पूरा परिवार मुंबई आ गया। परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली उल्लेखनीय फिल्म बसंत, जो कि 1942 में थी। बाद में निर्देशक किरदास शर्मा ने उन्हें नीलकमल 1947 में पहली बार मुख्य अभिनेत्री में अवसर दिया। तो आइए उन्हीं की फिल्म बसंत से एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा।

0: 1954 में आई फिल्म महल ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म का गीत आएगा आने वाला भी बहुत प्रसिद्ध हुआ और मधुबाला की लोकप्रियता पूरे देश में फैल गई। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सफल फिल्में दी। इन फिल्मों में उन्होंने रोमांस, कॉमेडी, ऐतिहासिक और गंभीर हर प्रकार की भूमिका निभाई।
1: मधुबाला केवल अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए ही नहीं जानी जाती थी, असल में उनका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर था, बल्कि अपने विनम्र स्वभाव, मधुर मुस्कान और सरल व्यवहार के लिए भी प्रसिद्ध थी। उन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा की वीनस कहा जाता था। वे समय की पाबंद, मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित थी। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाई। वो कहा जाता है ना कि सूरत से सुंदर सीरत होनी चाहिए, और मधुबाला की सीरत उनके व्यक्तित्व का दर्पण थी। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो कि मधुबाला के दर्पण में उनकी प्यारी सी छवि को दिखाता है।

हमारे भारतीय सिनेमा में प्रेम कहानियों का भी अपना ही दौर है। ऐसी एक प्रेम कहानी थी मधुबाला और दिलीप कुमार जी की, बहुत ही चर्चित। दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक मतभेदों और परिस्थितियों के कारण उनका रिश्ता टूट गया। बाद में उन्होंने 1960 से 61 के आसपास किशोर कुमार से विवाह कर लिया। तो आइए चलिए सुनते हैं मधुबाला जी का एक प्यारा संगीत।

मधुबाला का नाम आज भी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की सबसे चमकदार अभिनेत्रियों में लिया जाता है। उनकी फिल्म मुगले आजम में अनारकली का किरदार आज भी अभिनय की महान मिसाल माना जाता है। उनकी मुस्कान, मासूमियत और अभिनय ने उन्हें अमर बना दिया। अगर हम संक्षेप में यूं कहें कि मधुबाला का जीवन एक ऐसी कहानी है जिसमें संघर्ष, सफलता, प्रेम, पीड़ा और अमर विरासत सब कुछ समाहित है। उन्होंने बहुत छोटा जीवन जिया, लेकिन अपने अभिनय और व्यक्तित्व से भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ी। आइए सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत उनकी ऐसी अमर फिल्मों में से जो एक है।

0: प्यार किया तो डरना क्या। मुगले आजम फिल्म का ये गाना सिर्फ गाना नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक मील का पत्थर है। इसके पीछे दो सबसे बड़े किस्से बहुत ही मशहूर हैं। नौशाद और गीतकार शकील इस गाने की धुन को और बोल को तैयार कर रहे थे। दोनों पूरी रात जागते रहे लेकिन सही बोल नहीं मिल रहे थे। सुबह तड़के नौशाद को एक लोक गीत की पंक्ति याद आई, प्रेम किया क्या चोरी की। इसी को आधार बनाकर शकील ने तुरंत लिखा, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की।
1: आइए अब मैं आपको बताऊंगी इस गाने में, जो कि मधुबाला ने बहुत सारी चीजों को अपने ऊपर झेला, भारी जंजीरों का असली दर्द उन्होंने अपने ऊपर इस कदर से झेला था कि इस गाने और पूरी फिल्म में जब अनारकली यानी मधुबाला को जेल में दिखाया गया था तो उन पर असली और बेहद भारी लोहे की जंजीरें बांधी गई थी। मधुबाला उस समय दिल की गंभीर बीमारी से भी जूझ रही थी लेकिन उनके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी और उसके बावजूद इतनी प्यारी अदाकारा होने के साथ साथ इस गाने को आज भी जब भी हम लोग देखते हैं और सुनते हैं तो जरा सा भी फील नहीं कर पाते हैं, जरा सा महसूस नहीं कर पाते हैं कि इतनी भारी जंजीरों का दर्द उन्होंने कैसे झेला होगा। भारी जंजीरों के कारण उनकी त्वचा भी छिल गई थी और वे दर्द से तड़प रही थी लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने अपने चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आने दी। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को एक नए अंदाज में।

एक लड़की भीगी भागी सी। ये बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित और रोमांटिक बारिश के गानों में से एक है। इसके पीछे की कहानी काफी मजेदार है। किशोर कुमार हॉलीवुड और वेस्टर्न म्यूजिक के बहुत बड़े दीवाने थे। वे इस गाने के लिए कुछ अनोखा संगीत चाहते थे। उन्होंने संगीतकार एसडी वर्मन से जिद की। गाने की शुरुआत किसी वाग यंत्र से नहीं बल्कि गैराज के औजारों की आवाज से होनी चाहिए, और फिर वैसा ही हुआ। और जब ये गाना बना और सभी ने सुना तो बहुत ही लोकप्रिय हुआ।

आइए मेहरबान बैठिए जाने जा। ये सॉन्ग, ये गाना तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। और मेरे हिसाब से जब कभी कोई भी रोमांटिक कपल कहीं भी अगर घूमने जाते हैं और ये गाना ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गाना आज भी सभी के दिलों को गुदगुदा जाता है। इस गाने ने मधुबाला को उस दौर की सबसे बोल्ड अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया था। एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग रूप उनके देखे गए थे। फिल्म के निर्देशक शक्ति सावंत ने बताया था कि जब इस गाने की शूटिंग चल रही थी, तब मधुबाला एक ही दिन में दो विपरीत दुनिया जी रही थी। वे दिन के एक हिस्से में वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस पहनकर क्लब डांसर के रूप में आइए मेहरबान गाने पर थिरकती थी, और दिन के दूसरे हिस्से में वे मुगले आजम के सेट पर भारी अनारकली सूट पहनकर प्यार किया तो जाना क्या की शूटिंग कर रही होती थी। दो अलग अलग किरदारों को इतनी सहजता से निभाना उनकी महानता को दर्शाता है। तो आइए इस प्यारे से गीत को सुनते हैं, जो कि है हावड़ा ब्रिज फिल्म से।

0: मुस्कानों की वो रानी हर दिल की धड़कन थी, रूप पहले पर्दे पर उतारी जो जैसे चांद की किरण थी। हर अदा में जादू था, हर नजर में प्यार था। मधुबाला का नाम ही सिनेमा का त्योहार था। दर्द छुपा कर भी उन्होंने हंसना सीखा, हर किरदार में जीवन का रंग सजाया। वक्त ने बहुत कुछ छीना, फिर भी वो मुस्कुराती रही, अपनी कला से हर दिल में अपनी जगह बनाती रही।
1: मोहब्बत की कहानी थी, उसके संग अमर हो गई। हर गीत हर तस्वीर जैसे सुनहरी सहर हो गई। कम उम्र में चली गई पर यादों में बस गई, पीढ़ियों के दिलों में एक रोशनी बन गई। तो आइए दोस्तों, आज इस सफर को यही विराम देते हैं, लेकिन मधुबाला की मुस्कान के संग हम सभी उनको सलाम करते हैं, क्योंकि ये वो शख्सियत थी जिनके बहुत सारी ऐसे किरदारों को हमने अलग अलग रूप में देखा। जब वो सेट पे होती थी तब भी मुस्कुराते हुए काम करती थी, जब वो एक गंभीर बड़ी बीमारी के साथ जूझ रही थी तब भी उनके चेहरे पर हमेशा से मुस्कान हुआ करती थी। तो आइए दोस्तों, आज भूले बिसरे गीत को, इस महफिल को यही विराम देते हैं। मैं हूँ आपकी आज ख्वाहिश भूले बिसरे गीतों की ये शाम यही थम जाए। फिर मिलेंगे अगली महफिल में, तब तक आप सभी को शुभ रात्रि।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए?
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125707093 और 9696746006। कपड़ा फैक्ट्री

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 8840335484। अब सपने होंगे साकार।